शुभ प्रभात दोस्तों, एक नई सुबह, नई रोशनी और नए विचारों के साथ आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम दिव्य दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सकारात्मक सोच, मन की स्थिरता और दिन की शुरुआत शांति और ऊर्जा के साथ करने की। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, मन को हल्का कीजिए और हमारे साथ इस सुंदर सुबह की यात्रा शुरू कीजिए। और आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध मेहमान मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्य दर्शन।

0: नमः। दिव्य दर्शन के इस बहुत ही प्यारे से पवित्र प्रोग्राम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। वी हैव अवर गेस्ट हियर मिस्टर वेणुगोपाल सर। आई वुड सिंसियरली लाइक टू रिक्वेस्ट यू वेणुगोपाल सर टू प्लीज कम फॉरवर्ड एंड मीट अवर लिसनर्स आउट हियर। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, वेयर एग्जैक्टली आर यू, व्हाट डू यू डू, हु आर यू सर?
1: यस सर, सर आई एम ML वेणुगोपाल। आई बोर्न इन बेंगलुरु, आई स्टडीड इन बेंगलुरु। फॉर्चुनेटली आई एंटर्ड पब्लिक सेक्टर इन बेंगलुरु। couple of years back I got retirement in Bengaluru. Being a marketing man, I am doing 50% marketing work and remaining 50% I am enjoying my retired life.

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

0: कहिए कहिए ना,
1: सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा।
2: हेलो हेलो हेलो, माइक चेक 1 2 3, एनर्जी चेक, चाय रेडी, दिल रेडी। मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM।
1: ये है कैसा जादू, मेरे लिए तो सच भी भरम है। सुनिए
0: कहिए कहिए,
1: सुनिए सुनिए
0: कहिए।

तालियों के पीछे छुपी एक जिंदगी। विठाबाई नारायण गांवकर की कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे तनुषा और आप सुन रहे हैं बातें इधर की उधर की। दोस्तों, एक छोटा सा सवाल पूछूं, आपने कभी किसी स्टेज आर्टिस्ट को परफॉर्म करते हुए देखा है? लाइट्स, म्यूजिक, तालियां, सीटियां और स्टेज पर एक वो आर्टिस्ट जो इतनी एनर्जी के साथ परफॉर्म करता है कि लगता है इंसान की जिंदगी में शायद कोई दर्द है ही नहीं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जब पर्दा गिरता है, लाइट्स बंद होती हैं, ऑडियंस घर चली जाती है, तब उस

गांव में सुनाई देती थी, लेकिन जिसके संघर्ष की आवाज बहुत कम लोगों तक पहुंची। ये कहानी है विट्ठाबाई नारायण गांवकर की। तमाशा, नाम सुनते ही गलत फहमी क्यों? सबसे पहले एक बात क्लियर करते हैं। आज अगर हम किसी से भी कहें अरे यार तमाशा मत करो, तो इसका मतलब होता है ड्रामा मत करो, हंगामा मत करो। लेकिन महाराष्ट्र में तमाशा एक बहुत ही समृद्ध लोक कला है। ये सिर्फ डांस नहीं, सिर्फ गाना नहीं, सिर्फ एक्टिंग नहीं, ये तीनों का एक खूबसूरत संगम है। इसमें गीत है, नृत्य है, मजेदार डायलॉग्स हैं, हास्य है, समाज पर व्यंग है, और सबसे बड़ी बात, लोगों की जिंदगी की कहानियां हैं। आज नेटफ्लिक्स है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम रील्स हैं, लेकिन एक वक्त था जब गांव के लोग रात भर तमाशा देखते थे। पूरा गांव इकट्ठा होता था, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, सब लोग, और इसी दुनिया की एक चमकती हुई सितारा बनी हमारी विट्ठाबाई। एक छोटी सी लड़की जिसके पैरों में ताल थी। 1935, पंढरपुर, एक ऐसा घर जहां कला हवा में बसी हुई थी। विट्ठाबाई बचपन से ही तमाशा मंडली के बीच पली बड़ी। किसी ने उन्हें फॉर्मल एक्टिंग स्कूल नहीं भेजा, ना डांस एकेडमी, ना म्यूजिक कॉलेज। उनकी क्लासरूम थी मिट्टी, उनके टीचर्स थे सफर, उनका सिलेबस था जिंदगी। और धीरे धीरे एक छोटी सी लड़की महाराष्ट्र की सबसे बड़ी लावणी कलाकारों में से एक हो गई। लावणी सिर्फ एक डांस नहीं होता। आज जब हम लावणी का नाम सुनते हैं तो शायद सिर्फ डांस याद आता है, लेकिन असल में लावणी एक जबरदस्त स्टोरी टेलिंग का ट्रेडिशन है। एक गाने के जरिए प्यार की बात, राजनीति की बात, समाज की बात, मजाक भी, और कभी कभी तीखे कटाक्ष भी। एक लावणी परफॉर्मर सिर्फ डांसर नहीं होता, उसे गाना भी आना चाहिए, एक्सप्रेशंस भी आने चाहिए, डायलॉग भी, ऑडियंस को हंसाना भी और रुलाना भी। और विट्ठाबाई ये सब कमाल करती थी। कहते हैं जब वो स्टेज पर आती थी तो लोग अपनी जगह से हिलते भी नहीं थे। उनकी आवाज में इतना जादू था कि गांव के बुजुर्ग भी उन्हें सुनने आते थे। स्टेज उनका मंदिर था। एक आर्टिस्ट की पहचान सिर्फ उसकी पॉपुलैरिटी से नहीं होती, उसके डिसिप्लिन से होती है। विट्ठाबाई के बारे में एक बहुत ही मशहूर किस्सा सुनाया जाता है। लोग कहते हैं एक बार परफॉर्मेंस के दौरान उन्हें लेबर पेन शुरू हो गया। वो कुछ देर के लिए स्टेज से गईं और फिर लौटकर परफॉर्मेंस पूरी की। इस घटना के अलग अलग वर्जन्स मिलते हैं, लेकिन एक बात सब मानते हैं कि उनकी कला के प्रति जो समर्पण था वो बेमिसाल था। सोचिए हम में से कितने लोग सिर्फ एक हल्के से फीवर पे लीव ले लेते हैं, और कुछ लोग अपने दर्द को भी मुस्कान के पीछे छुपा देते हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभा देते हैं। तालियां और तन्हाई। दोस्तों एक बहुत अजीब बात है, स्टेज पर खड़े आर्टिस्ट को देखकर लगता है कि ये कितना सक्सेसफुल होगा, लेकिन हर सक्सेसफुल दिखने वाला इंसान फाइनेंशियली सिक्योर हो ये जरूरी नहीं। विट्ठाबाई को सम्मान मिला, पुरस्कार मिले, उनकी कला की तारीफ भी हुई, लेकिन जिंदगी के

आखिरी दिनों में उन्होंने आर्थिक संघर्ष भी देखा। यह हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है, रिस्पेक्ट और इनकम हमेशा एक साथ नहीं चलते। कभी कभी सबसे ज्यादा तालियां पाने वाला इंसान भी सबसे ज्यादा मुश्किलें झेल रहा होता है। हम फोक आर्टिस्ट्स को कितना जानते हैं? चलिए एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। अगर मैं पूछूं अमिताभ बच्चन, सब जानते हैं। लता मंगेशकर, सब जानते हैं। शाहरुख खान, सब जानते हैं। लेकिन कितने लोग हैं जो विट्ठाबाई नारायण गांवकर का नाम जानते हैं, या राजस्थान के मंगनियार गायक, या बॉल सिंगर्स, या पंडावनी सुनाने वाली कलाकार। हमारे देश में कितनी लोक कलाएं हैं जिन्होंने हमारी संस्कृति को जिंदा रखा है, लेकिन हम उनके नाम तक नहीं जानते। और शायद यही वजह है कि कई लोक कलाएं धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। लोक कला क्यों जरूरी है? क्योंकि बुक्स हिस्ट्री लिखती हैं, लेकिन लोक कला हिस्ट्री सुनाती हैं। ये हमारी ओरल ट्रेडिशंस हैं। एक गांव की बोली, एक शहर की कहानी, एक समाज की सोच, सब कुछ गाने और कहानियों के जरिए आने वाली पीढ़ी तक पहुंचता है। अगर लोक कला खत्म हो गई तो सिर्फ एक डांस फॉर्म नहीं, एक पूरी पहचान खत्म हो जाएगी। एक और छोटी सी सोच, कभी किसी स्ट्रीट म्यूजिशियन को देखिए, कभी किसी कठपुतली वाले को, किसी भैरूपिए को, किसी फोक सिंगर को। हो सकता है वो दुनिया के सबसे बड़े सेलिब्रिटी नहीं है, लेकिन हो सकता है वही इंसान हमारी संस्कृति का सबसे बड़ा रक्षक हो। तो दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ विट्ठाबाई की नहीं है, ये हर उस आर्टिस्ट की है जो तालियों के लिए नहीं, अपनी कला के लिए जीता है। वो स्टेज पर मुस्कुराता है, चाहे जिंदगी उसका कितना ही इम्तिहान ले रही हो। अगली बार जब आप किसी फोक परफॉर्मेंस को देखें तो सिर्फ एंटरटेनमेंट मत ढूंढिए, उसमें छुपा हुआ इतिहास देखिए, उसमें छुपी हुई मेहनत देखिए, और उस आर्टिस्ट को एक ताली जरूर दीजिए, क्योंकि हो सकता है वही ताली उसके लिए सबसे बड़ा इनाम हो। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे तनुषा। मिलते हैं फिर एक और कहानी के साथ, जहां हम ढूंढते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में छुपी हुई बातें, इधर की और उधर की। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: पति ने पत्नी को बोला, तुम बिल्कुल राजकुमारी जैसी हो। पत्नी बोली, थैंक यू सो मच, और बताओ क्या कर रहे हो। पति ने बोला, खाली बैठा था तो सोचा थोड़ा मजाक कर लूं।

जिंदगी एक ट्रेन है और हर इंसान एक मुसाफिर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं बातें इधर की उधर की। दोस्तों, कभी एक ट्रेन से लंबा सफर किया है? जैसे जयपुर से मुंबई, दिल्ली से कोलकाता, या फिर एक छोटा सा ओवरनाइट जर्नी। ट्रेन की एक बात मुझे हमेशा खूबसूरत लगती है, प्लेटफॉर्म पर कितने ही लोग खड़े होते हैं, कोई हंसता है, कोई रोककर किसी को विदा कर रहा होता है, कोई चाय लेकर भाग रहा होता है, कोई विंडो सीट के लिए लड़ रहा होता है, और फिर एक सीटी बचती है, ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ती है, और उसके साथ कुछ लोग पीछे रह जाते हैं, कुछ नए लोग हमारे कंपार्टमेंट में आ जाते हैं, और अचानक एक अनजान इंसान हमारे सफर का हिस्सा बन जाता है। कभी सोचा है हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है? एक ट्रेन जिसमें हर स्टेशन पर कोई ना कोई आता है और कोई ना कोई उतर जाता है। आज की बातें इधर की उधर की इसी खूबसूरत ट्रेन थ्योरी पर है। हम सब अपनी जिंदगी की ट्रेन हैं। सोचिए, अगर आपकी लाइफ एक ट्रेन होती तो ड्राइवर कौन होता? आप? इंजन कौन होता? आपके सपने? फ्यूल कौन होता? आपकी उम्मीदें? और ट्रैक्स? आपके डिसीजंस। लेकिन कंपार्टमेंट, उसमें बैठे हुए लोग होते आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके टीचर्स, नेबर्स, ऑफिस के कॉलीग्स, कभी कभी एक चाय वाला, एक ऑटो वाले भैया, या ट्रेन में मिला हुआ एक अनजान सा मुसाफिर। हर किसी का टिकट अलग होता है, हर किसी का डेस्टिनेशन अलग होता है, और इसी में जिंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती छुपी होती है। कुछ लोग एक स्टेशन के लिए आते हैं। याद कीजिए, स्कूल का कोई दोस्त जिसके बिना लंच नहीं होता था। आज पता भी नहीं है कि वो किस शहर में है, क्या कर रहा है। कॉलेज की बेंच पर वो पार्टनर जिसके साथ हर असाइनमेंट कंप्लीट होती थी। ऑफिस का वो कलीग जो जॉब चेंज कर गया, या फिर वो नेबर जिसके साथ बचपन की शामें गुजरती थी और उस वक्त लगता था कि ये रिश्ता हमेशा रहेगा। लेकिन जिंदगी ने उनका स्टेशन ला दिया और वो उतर गए। पर इसका मतलब वो इम्पोर्टेंट नहीं थे? बिल्कुल नहीं। हो सकता है उनका

रोल आपकी जीवन में सिर्फ उतना ही था, एक स्टेशन, एक चैप्टर, एक याद। कुछ लोग हमें सिखाने आते हैं। कभी किसी टीचर ने सिर्फ एक सेंटेंस बोला और वो पूरी लाइफ याद रह गया। कभी किसी स्ट्रेंजर ने एक छोटी सी हेल्प की और दुनिया पर भरोसा बढ़ गया। कभी किसी ने दिल तोड़ा और उस दर्द ने आपको मजबूत बना दिया। देखिए, हर पैसेंजर गिफ्ट लेकर नहीं आता, कुछ लोग लेसन्स लेकर आते हैं। और अगर सच कहूं तो लाइफ के सबसे बड़े टीचर्स कभी कभी वही होते हैं जिनसे हम दोबारा कभी नहीं मिलते। एक छोटी सी कहानी। एक बुजुर्ग आदमी रोज ट्रेन से सफर करता था। हर सुबह एक छोटी सी लड़की उसके पास बैठती। दोनों सिर्फ 10 मिनट साथ रहते। लड़की स्कूल जाती थी, बुजुर्ग अपनी दुकान जाता था। हर दिन वो लड़की एक नया सवाल लेके आती थी। दादाजी, आसमान नीला क्यों है? दादाजी, आप हमेशा मुस्कुराते क्यों हैं? एक दिन लड़की आना बंद हो गई, कई दिन तक आई ही नहीं। बुजुर्ग उदास हो गए। महीने बाद पता चला उसके पापा का ट्रांसफर हो गया। बस कहानी वहीं खत्म। लेकिन बुजुर्ग कहते हैं, उस बच्ची ने मुझे फिर से क्यूरियस होना सिखा दिया। देखा, 10 मिनट का रिश्ता और जिंदगी भर की सीख। और फिर आते हैं फॉरएवर वाले पैसेंजर्स। हर ट्रेन में कुछ लोग होते हैं जो एंड तक साथ चलने की कोशिश करते हैं, जैसे मम्मा, पापा, कोई भाई या बहन, जीवन साथी या एक सच्चा वाला दोस्त। ये वो लोग होते हैं जो सिर्फ खुशियों के स्टेशन पर नहीं, दुख के टनल में भी हमारे साथ बैठते हैं। जब ट्रेन धीमी पड़ती है तब भी, जब सफर बोरिंग लगता है तब भी, और जब जिंदगी पटरी से उतर जाती है तब भी। यही लोग सफर को आसान बना देते हैं। एक और सच, कभी कभी हम किसी को इतना पकड़ कर रखना चाहते हैं कि भूल जाते हैं उनका स्टेशन आ चुका है। हम कहते हैं मत जाओ, जिंदगी कहती है जाने दो। हर अलविदा हार नहीं होता, कभी कभी वो किसी और की कहानी का एक नया चैप्टर होता है। प्लेटफॉर्म पर रुकना मना है। ट्रेन अगर एक स्टेशन पर ही रुक जाए तो क्या होगा? सफर खत्म। इसी तरह अगर हम भी गुजरे हुए लोगों को पकड़ कर बैठ जाएं, तो नए लोग कैसे आएंगे? नए दोस्त, नए मौके, नई कहानियां, नए सपने। लाइफ हमें आगे बढ़ाने के लिए बनी है। पीछे देखना गलत नहीं, लेकिन वहीं रुक जाना शायद ठीक भी नहीं। एक और दिलचस्प ऑब्जर्वेशन। कभी ट्रेन में देखा है, दो अनजान लोग पहले एकदम चुप, फिर चाय शेयर करते हैं, फिर शायद चेंज शेयर करते हैं, फिर धीरे धीरे पॉलिटिक्स, क्रिकेट, बच्चों की बातें, और स्टेशन आते आते एक दूसरे को बोलते हैं, कभी जयपुर आओ तो जरूर आना, और फिर शायद कभी नहीं मिलते। लेकिन वो 2 घंटे की कॉन्वर्सेशन कभी कभी सालों तक याद रह जाती है। यही तो जिंदगी है। हर रिश्ता परमानेंट नहीं होता, लेकिन हर रिश्ता मीनिंगफुल हो सकता है। सबसे जरूरी मुसाफिर कौन है जानते हैं? आपकी ट्रेन में सबसे इंपॉर्टेंट पैसेंजर कौन है? माँ, पापा, पार्टनर, दोस्त? नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट पैसेंजर आप खुद हैं। अगर ड्राइवर ही थक गया तो ट्रेन कैसे चलेगी?
इसलिए खुद का ख्याल रखिए, अपने दिल को वक्त दीजिए, अपने सपनों को जिंदा रखिए और खुद से दोस्ती कर लीजिए, क्योंकि जब सब लोग अपने अपने स्टेशन पर उतर जाएंगे तब भी आपको अपने साथ ही सफर करना होगा। तो दोस्तों, जिंदगी की ट्रेन चलती रहेगी, दौड़ती रहेगी, भागती रहेगी। कुछ लोग मिलेंगे, कुछ बिछड़ेंगे, कुछ यादें बनेंगी, कुछ जख्म देंगे, कुछ मुस्कान देंगे और कुछ दुआ बनकर हमेशा साथ रहेंगे। इसलिए जो लोग आज आपकी ट्रेन में बैठे हैं उनकी कदर कीजिए, उनके साथ चाय पीजिए, हंसी बांटिए, नाराजगी कम रखिए और जब किसी का स्टेशन आ जाए तो उन्हें मुस्कुरा कर विदा कीजिए, क्योंकि हर अलविदा किसी नए मिलन की शुरुआत होती है। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर। मिलूंगी फिर एक और ऐसी ही खूबसूरत कहानी के साथ, जहां होंगी हमारे आपके बीच बातें इधर की उधर की। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: पति बोला, जज साहब मुझे अपनी बीवी से तलाक चाहिए। जज ने पूछा, पर क्यों? पति बोला, जज साहब जब से मेरी शादी हुई है, बीवी आई है, तब से वो कुछ भी बात नहीं कर रही है। जज बोला, एक बार फिर सोच लो, ऐसी बीवी बड़ी किस्मत वालों को मिलती है।

इंसान बदलते रहते हैं लेकिन डॉगीज का प्यार नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं बातें इधर की उधर की। आज की बात शुरू करते हैं एक और छोटे से सवाल से। अगर दुनिया के हर देश के लोग अलग भाषा बोलते हैं, अलग खाना खाते हैं, अलग कपड़े पहनते हैं, अलग परंपराओं को मानते हैं, तो क्या एक चीज है जो सबको एक जैसी दी है भगवान ने, जो सबको एक जैसी बना देती है? शायद मुस्कान, शायद एक आंसू, और शायद एक डॉगी के दुम हिलाने की खुशी। जी हाँ, एक नई रिसर्च ने दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर देखा कि चाहे जर्मनी हो, मंगोलिया हो, पेरू हो, मादागास्कर हो या इंडिया हो, इंसान और डॉगी के बीच का रिश्ता लगभग एक जैसा होता है। और सच कहूं, ये रिसर्च सिर्फ डॉग्स के बारे में नहीं है, ये इंसानियत के बारे में है। डॉग सिर्फ पेट नहीं होता। हम अक्सर कहते हैं कि ये मेरा पेट है, लेकिन जिस घर में डॉग होता है वहां लोग उसे पेट कम, फैमिली मेंबर ज्यादा मानते हैं। किसी के लिए वो बेटा है, किसी के लिए वो बेस्ट फ्रेंड है, किसी के लिए वो वॉकिंग पार्टनर है, और किसी बुजुर्ग के लिए वो उसके अकेलेपन का साथी है। एक डॉग को शायद फर्क नहीं पड़ता, आप डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, इंजीनियर हैं, आरजे हैं, करोड़पति हैं या स्टूडेंट हैं, उसके लिए आप उसके इंसान हैं। रिसर्च ने क्या बताया? साइंटिस्ट्स ने सिर्फ सिटीज के पैम्पर्ड पेट्स को नहीं देखा, उन्होंने हंटिंग डॉग्स को भी देखा। गांव के डॉग्स, जंगल के पास रहने वाले डॉग्स, वर्किंग डॉग्स और उनके ओनर्स, उन्होंने गेम्स खिलाए, सिग्नल्स देखे, कम्युनिकेशन देखा, और एक बात सामने आई, डॉग्स हर जगह अपने इंसान की तरफ देखते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं और मुश्किल में उस पर भरोसा करते हैं। सोचिए, लैंग्वेज अलग, कल्चर अलग, लेकिन प्यार की लैंग्वेज एकदम सेम। एक छोटी सी कहानी। एक बार एक छोटा सा बच्चा अपने पापा से पूछता है, पापा, डॉग्स इतनी जल्दी दोस्त कैसे बन जाते हैं? पापा मुस्कुरा कर कहते हैं, बेटा, क्योंकि वो पहले तुम्हारा बैंक बैलेंस नहीं पूछते, ना सरनेम, ना रिलीजन, ना स्टेटस, ना फॉलोअर्स, बस एक बार प्यार से बुलाओ तो मान जाते हैं, और तुम उनके लिए अपने हो। कभी कभी लगता है हम इंसानों को रिलेशनशिप मैनेजमेंट डॉग से सीखना चाहिए। ट्रस्ट का सबसे खूबसूरत रूप, आपने नोटिस किया होगा, डॉग्स जब डरे हुए होते हैं तब सबसे पहले अपनी ओनर की तरफ देखते हैं, जैसे पूछ रहे हो, सब ठीक है ना, हम सेफ है ना। रिसर्च में भी यही देखा गया, अगर कोई अजीब या नई चीज सामने आती है तो डॉग अपने ह्यूमन का रिएक्शन देखकर डिसाइड करता है कि डरना है या नहीं। सोचिए कितना गहरा भरोसा है ये। और फिर भी हम कहते हैं डॉग सिर्फ जानवर हैं। नहीं दोस्तों, वो भरोसे का दूसरा नाम है। लेकिन सोचिए, डॉग की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? उसकी लॉयल्टी, उसका प्रेजेंस, जज ना करना, माफ कर देना, खुशी से मिलना, हमेशा खुशी से मिलना। और अगर हम भी अपने रिश्तों में थोड़ी सी लॉयल्टी, थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ा सा अनकंडीशनल प्यार ले आएं, तो कितनी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। एक और खूबसूरत बात, रिसर्च में लगभग हर कंट्री के ओनर्स ने कहा कि उन्हें अपने डॉग्स के साथ रहना अच्छा लगता है, और ज्यादातर लोगों को यकीन था कि मुश्किल के वक्त में उनका डॉग ही उनकी रक्षा करेगा। सोचिए, एक जानवर जिसने कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया,
कभी प्रॉमिस नहीं किया, कभी कभी कसमें नहीं खाई, फिर भी वो निभा देता है। एक दिल को छू लेने वाली सोच। हम इंसान अक्सर कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन डॉग को देखिए, उसके पास एक्सपेंसिव गिफ्ट्स नहीं होते, ना सरप्राइज पार्टीज, ना मोटिवेशनल स्पीचेस, वो बस आपके पास बैठ जाता है और कभी कभी बस किसी का साथ ही उसके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होता है। उसकी सरप्राइज पार्टी होती है, उसके एक्सपेंसिव गिफ्ट्स होते हैं। दोस्तों, हर रिलेशनशिप में तीन चीजें जरूरी होती हैं, ट्रस्ट, टाइम और प्रेजेंस। डॉग ये तीनों बिना मांगे दे देता है। शायद इसीलिए हजारों सालों से इंसान और डॉग का रिश्ता दुनिया का सबसे पुराना और सबसे मजबूत रिश्ता माना गया है। रीसेंट रिसर्च भी इसी बात को और मजबूत करती है। आपके घर में अगर कोई डॉग है तो आज घर जाकर उसके सर पर प्यार से हाथ जरूर फेरिएगा, और अगर नहीं है तो अगली बार किसी स्ट्रीट डॉग को एक प्यार भरी नजर से जरूर थोड़ा सा पानी या थोड़े से बिस्किट्स दीजिएगा। हो सकता है उसके लिए वो छोटी सी मेहरबानी हो, लेकिन आपके लिए वो इंसानियत का सबसे बड़ा एहसास बन जाएगा। क्योंकि दुनिया बदल सकती है, शहर बदल सकते हैं, जुबान बदल सकती है, लेकिन डॉग की आंखों में अपने इंसान, अपने ह्यूमन के लिए जो प्यार होता है वो हर जगह एक जैसा रहता है। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे तनुषा, मिलूंगी फिर एक और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए और याद रखिए, कभी कभी सबसे अच्छे दोस्त बोलते कम हैं, लेकिन समझते बहुत ज्यादा हैं। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: टीचर ने पूछा, तुम पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं देते? छात्र ने कहा, सर क्योंकि पढ़ाई सिर्फ दो वजहों से की जाती है। टीचर ने कहा, अच्छा जनाब, तो कौन सी हैं ये दो वजहें, जरा बताना। तो छात्र ने कहा, या तो डर से या शौक से। मैं बिना वजह कोई शौक रखता नहीं और डरता तो मैं अपने बाप से भी नहीं।

तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ। रेडियो टांटिया भील, आपके झाबुआ की आवाज। आइए दोस्तों, मिलवाते हैं पश्ताना दुर्रानी से, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बीते हुए कुछ दिनों पहले कातार की राजधानी दोहा में अफगानिस्तान के भविष्य पर एक सम्मेलन हुआ था। इस जलसे को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने काबुल के निजाम से जब ये कहा कि अपने देश में लड़कियों की तालीम और महिलाओं की नौकरी करने पर उसने जो अपमानजनक पाबंदी लगा रखी है उसे वो फौरन वापस ले और स्कूल की कक्षाओं से लेकर उन तमाम ओहदों पर औरतों की भागीदारी सुनिश्चित करें जहां से निर्णायक फैसले होते हैं, तो पश्ताना दुर्रानी की मुहिम की याद हो आई। अपनी जान पर खेलकर वो अफगान लड़कियों तक ज्ञान की रोशनी बिखेर रही हैं। अफगानिस्तान के कांधार इलाके के जलमई दुर्रानी एक तरक्की पसंद कबायली नेता थे जो लड़कियों की तालीम की बढ़ चढ़कर हिमायत करते थे। जाहिर है, कट्टर पंथियों को उनकी ये बात ठीक नहीं लगती थी। उन्हें कई बार खामोश रहने को कहा गया, लेकिन जलमई दुर्रानी लगातार मुखर रहे, बोलते रहे। ऐसे में जब मुल्क गृह युद्ध में चल रहा हो और लंबा खींचा ही जा रहा हो और कांधार इलाके पर तालिबान का पूरा नियंत्रण हो गया हो, तो दुर्रानी परिवार के सदस्यों के पास देश छोड़ने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। वो भागकर पाकिस्तान जा पहुंचे, जहां क्वेटा में उन सबको शरण मिली। करीब 27 साल पहले क्वेटा के ही एक शरणार्थी शिविर में पश्ताना का जन्म हुआ। उनके पिता अच्छी तरह जानते थे कि इस तरह की जगहों में इन खानाबदोश जिंदगियों को अब इज्जत का मुकाम सिर्फ पढ़ाई लिखाई से ही मिल सकता है। लिहाजा उन्होंने अपनी नई नस्लों की शिक्षा को लेकर वो पहले से कहीं ज्यादा संजीदा हो उठे। उन्होंने अब

दोस्तों, रेडियो सुनना इतना जरूरी क्यों है, आइयो बताता हूं। प्रकृति ने हमें बनाया ही ऐसा है। जब हम कुछ सुनते हैं तो उसकी छवि, उसकी पिक्चर अपने दिमाग में बनाते हैं। तो रेडियो सुनने से हम तमाम क्रिएटिविटी को, अपनी रचनात्मकता को मजबूत करते हैं, अपने दिमाग में पिक्चर्स बनाते हैं, छवियां बनाते हैं और खुश होते हैं। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, खुशी से संतुष्टि मिलती है और संतुष्टि से खुशी मिलती है, परंतु फर्क बहुत बड़ा है। खुशी थोड़े समय के लिए संतुष्टि देती है और संतुष्टि हमेशा के लिए खुशी देती है।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: कौवे ने मटके से पूछा, देखो अगर तुम आग में तपाकर बनाए जाते हो फिर भी इतनी गर्मी में अपने अंदर पानी को कैसा ठंडा रख पाते हो? मटके ने कहा, तू पानी पीले का लिए ज्यादा पंचायत मत कर।

एक बार एक राजा ने इतना ज्यादा सुरक्षित महल बनवाया कि उसमें किसी भी दुश्मन के घुस सकने की कोई आशंका ही ना रहे। उस राजा ने पूरी दुनिया को जीतना चाहा था, तो जाहिर सी बात है उसके बड़े सारे दुश्मन भी थे। अब क्योंकि पूरी दुनिया में दुश्मन हो गए थे तो स्वाभाविक है भय डर भी बढ़ गया था। डर बढ़ा तो सुरक्षा की जरूरत पड़ गई, इसलिए उसने ये मजबूत जबरदस्त अभेद्य महल बनवाया। इस महल में एक ही दरवाजा था, खिड़कियां भी नहीं थी, कहीं कोई हवा भी न घुस जाए, कहीं कोई जगह न रह जाए जिससे कोई भी दुश्मन कभी भीतर आने की सोच भी सके। इस बड़े सारे महल में एक ही दरवाजा था और इस दरवाजे पर हजारों नंगी तलवारों का पहरा भी लगा दिया गया। अब पड़ोस के राजा उस बहुत ही सुरक्षित महल को देखने आए, बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, वाह, बहुत आनंदित हुआ, मैं भी ऐसा ही महल बहुत जल्द बनवाता हूं। यह बिल्कुल सुरक्षित है, इसमें तो कोई खतरा लगता ही नहीं। जब पड़ोस का राजा विदा ले रहा था तो मेजबान राजा से उसने कहा, आपने सचमुच बड़ा कमाल का काम किया है, कोई राजा कभी इतना सुरक्षित महल कभी नहीं बनवा पाएगा। तभी सड़क किनारे एक बूढ़ा फकीर जोर जोर से हंसने लग गया। राजा ने पूछा, अबे पागल, तू हंस क्यों रहा है बे? फकीर ने कहा, हुजूर, एक भूल रह गई इस महल में, और तो सब ठीक है मगर एक ही दरवाजा है, यही गलती हो गई। भाई, इससे भी तो दुश्मन भीतर जा सकता है ना, इसलिए आप भीतर जाएं और इस दरवाजे को भी बंद करा दें, चिनवा दें, तो आप बिल्कुल सुरक्षित हो पाएंगे, फिर कभी कोई दुश्मन घुस ही नहीं सकेगा कहीं से भी। राजा ने कहा, अबे पागल, अगर मैं इस दरवाजे को भी चिनवा दूं और भीतर हो जाऊं तो ये महल नहीं मेरी कब्र बन जाएगा। फकीर ने कहा, कब्र तो ये बन ही गया है, सिर्फ एक दरवाजा ही तो बचा है। एक दरवाजा है, दुश्मन नहीं तो कम से कम मौत तो इस एक दरवाजे से भीतर आ ही जाएगी। आप ऐसा करें कि भीतर हो जाएं, फिर मौत भी नहीं आ पाएगी। सम्राट ने कहा, जाने का सवाल ही नहीं, मौत के आने से पहले ही मैं मर जाऊंगा। फिर फकीर ने कहा, तो फिर ठीक से समझ लीजिए, जितने ज्यादा दरवाजे थे इस महल में उतना ही जीवन था आपके पास, जितने दरवाजे कम हुए उतना जीवन कम हो गया। अब एक दरवाजा बचा है तो थोड़ा सा ही जीवन बचा हो गया, इसको भी बंद कर दीजिए, वो भी खत्म हो जाएगा। इसलिए कहा कि एक भूल रह गई है इसमें, और वो जोर जोर से हंसने लगा। दोस्तों, जितनी हम सुरक्षा ढूंढते हैं उतनी ही असुरक्षा का अनुभव करते हैं। असुरक्षा यानी कि इनसिक्योरिटी का जो अनुभव है वो सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी की खोज से ही पैदा होता है। ये एक दुष्ट चक्र है। असुरक्षा से बचने की जो आकांक्षा है वही असुरक्षा पैदा कर देती है। इसलिए असुरक्षा से राजी हो जाओ, एक्सेप्ट कर लो, स्वीकार कर लो, मान लो कि आप असुरक्षित हैं। अचानक ही पाओगे कि असुरक्षा गायब हो गई। इसका मतलब ये नहीं कि आप सड़क पर जाएं और मुसीबत को बुलावा दें। इसका मतलब सिर्फ इतना है, सावधान रहें लेकिन हर समय डरे रहने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, ख्याल रखिएगा।

0: दोस्तों, जिस तरह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे भोजन की जरूरत होती है, अच्छे पौष्टिक तत्वों की जरूरत होती है, उसी तरह से हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे विचारों की जरूरत होती है। इसलिए कहा भी गया है कि लगातार अच्छे विचारों को, अच्छे संगीत को सुनते रहिए, और जब आप सुनेंगे तो उनकी अच्छी पॉजिटिव सकारात्मक छवियां बनाएंगे अपने दिमाग में। तो दिमाग मेहनत करेगा, दिमाग की एक्सरसाइज होगी, व्यायाम होगा और वो स्वस्थ रहेगा। इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, ये चीज आपको किसी और माध्यम में नहीं मिलेगी। गोल चबूतरा। आज जिस्म है, कल याद हो जाएंगे, मैं तो कब का आगे बढ़ गया हूं। वक्त से कहो मेरे साथ चले, आज नहीं है मेरा, ये बात सच है, लेकिन जरा जरा सा वो मेरे शेरों में रह गया है।
1: उठ सबके कदम, देखो रम पम।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: पड़ोस की औरतें आपस में बातें कर रही थी। बहन, बाकी तो सब ठीक है, लेकिन अगर हम चांद पर जाकर बस जाएंगे तो करवा चौथ कैसे मनाएंगे?

शब्द ही जीवन को अर्थ दे जाते हैं और शब्द ही जीवन में अनर्थ कर जाते हैं। दोस्तों, रेडियो सुनने का एक और फायदा बताता हूं। रेडियो अच्छे सकारात्मक गीत, संगीत और विचारों के साथ आपके दिमाग की, आपके मस्तिष्क की व्यायाम शाला है। आप रेडियो बिना उसकी तरफ देखे हुए सुन सकते हैं। अपने काम करते रहिए और रेडियो सुनते रहिए, है ना मजेदार रेडियो के साथ।

रेडियो टांटिया भील, आपके झाबुआ की आवाज। हम सभी सफल होना चाहते हैं ना? यह बात और है कि हम सभी के लिए सफलता के मायने अलग अलग होते हैं। क्यों? कोई बहुत अमीर होना चाहता है, कोई बहुत प्रसिद्ध होना चाहता है, कोई बहुत पावरफुल होना चाहता है, कोई बहुत इंटेलिजेंट बनना चाहता है, कोई बहुत बड़ा लेखक बनना चाहता है, कोई बहुत बड़ा म्यूजिशियन, कोई बहुत बड़ा दार्शनिक, कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन। लेकिन हम सभी अपनी सफलताओं के पीछे भागते तो रहते हैं ना? ये जरूरी नहीं है कि क्या चाहते हैं हम, क्या सफलता पाना चाहते हैं हम। कई बार जिंदगी में सफलता की परिभाषा ढूंढते हुए, डेफिनेशन ढूंढते हुए बहुत सारा वक्त गुजर जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। बड़े आश्चर्य की बात है, काफी अच्छी पकी हुई उम्र के लोगों से भी अगर हम पूछें कि सफलता के मायने क्या हैं आपकी नजरों में, तो शायद वो भी ठीक से बता ना पाए। बड़ी मजेदार बात है, हम इंसान इंडिविजुअली बहुत भयंकर झूठे होते हैं, बहुत अच्छा झूठ बोलना जानते हैं, खास करके अपने आप से। अब ये बात आपको कुछ अजीबोगरीब सी लगेगी, हम अपने आप से झूठ बोलते हैं? जी हां, देखिए ना, कभी किसी भी सवाल का जवाब सीधे सीधे तौर पर सच्चाई से देते हैं क्या हम? सोच के देखिए, दिल के अंदर झांकने वाली बात है ये, किसी को मत बताइए। आप किसी के लिए आंसरेबल नहीं है, आप खुद को और अपने ऊपर वाले को आंसरेबल हैं। चिंता ना करिए, कोई आपको जज नहीं करेगा। तो जरा कोशिश कीजिए, सफलता के मायने आपकी निगाह में क्या हैं? थोड़ा विचार करें। मैं दोबारा कहना चाहूंगा, किसी को ना बताएं। एक बार किसी नौजवान ने सोक्रेटिस से पूछा, सफलता का रहस्य क्या है? सोक्रेटिस उसका सवाल सुनकर मुस्कुराए और फिर उससे कहा, तुम कल मुझे नदी के किनारे मिलो, वहीं पर मैं तुम्हें बताऊंगा कि सफलता का रहस्य क्या है। अगले दिन नौजवान जब सोक्रेटिस से मिला तो उन्होंने उसे अपने साथ नदी की तरफ बढ़ने को कहा। आगे बढ़ते बढ़ते पानी जब नवयुवक के गले तक जा पहुंचा, तभी अचानक सोक्रेटिस ने उसका सर पकड़कर पानी में डुबो दिया। उन्होंने उसको तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि वह नीला नहीं पड़ गया। सोक्रेटिस ने उसका सर पानी से बाहर निकाल दिया और बाहर निकलते ही नौजवान ने सबसे पहले हांफते हांफते तेजी से सांस लेना शुरू किया। सोक्रेटिस ने उसी समय उससे पूछा, जब तुम पानी के अंदर थे तब तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत महसूस हो रही थी? तुम क्या चाहते थे? लड़के ने उत्तर दिया, केवल सांस लेना। सोक्रेटिस ने स्नेह से उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, यही सफलता का रहस्य है। जब तुम सफलता को उतनी ही गहराई से चाहोगे जितनी शिद्दत से तुम सांस लेना चाहते थे, तो वह तुम्हें मिल जाएगी। यही कामयाबी पाने का सबसे बड़ा फॉर्मूला है। यह तो बात हुई फॉर्मूला की, जिससे हमें सफलता मिलेगी। लेकिन सवाल अभी भी वहीं का वहीं है, हमारी नजर में सफलता के मायने क्या हैं? हमारी नजर में सफलता की परिभाषा क्या है? हमारी नजर में सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं, किसी के साथ डिस्कस करने की भी कोई जरूरत नहीं। हमें अपने अंदर झांकना है और सच जरूर बोलना है अपने आप से, और हमें ईमानदारी से यह ढूंढना है कि हमारी परिभाषा क्या है सक्सेसफुल होने की। बहुत सारी अमीरी, अल्टीमेट फिटनेस, बहुत सारे अच्छे संबंध, बहुत सारी इंटेलिजेंशिया, शांति, पीस, क्या आप मेरे साथ हैं इस डेफिनेशन को ढूंढने के लिए? क्या है सफलता?

0: तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूं समीर, कल मिलते हैं।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे भावना और आप सुन रहे हैं रेडियो टंट्याभील 90.8 एफएम झाबुआ की आवाज। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम आप सभी के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जीवन परिचय लेकर आए हैं, तो चलिए सुनते हैं हम उनका जीवन परिचय।
5: मैं एक गहरा कुआं हूं इस जमीन पर, बेशुमार लड़के लड़कियों के लिए के उनकी प्यास बुझाता रहूं। उसकी बेपनाह रहमत उसी तरह जर्रे जर्रे पर बरसती है जैसे कुआं सबकी प्यास बुझाता है। इतनी सी कहानी है मेरी, जैनुल आबदीन और आशी अम्मा के बेटे की कहानी, उस लड़के की कहानी जो अखबारें बेचकर अपने भाई की मदद करता था, उस शागिर्द की कहानी जिसकी परवरिश शिव सुब्रमण्य आयर और अय्यादुराई सोलोमन ने की, उस विद्यार्थी की कहानी जिसे पंडले मास्टर ने तालीम दी, एमजी के मैनन और प्रोफेसर साराभाई ने इंजीनियर की पहचान दी, जो नाकामियों और मुश्किलों में पलकर साइंसदान बना, और उस रहनुमा की कहानी जिसके साथ चलने वाले बेशुमार काबिल और हुनरमंद लोगों की टीम थी। मेरी कहानी मेरे साथ खत्म हो जाएगी क्योंकि दुनियावी मानों में मेरे पास कोई पूंजी नहीं है। मैंने कुछ हासिल नहीं किया, जमा नहीं किया, मेरे पास कुछ नहीं और कोई नहीं, न बेटा न बेटी न परिवार। मैं दूसरों के लिए मिसाल नहीं बनना चाहता, लेकिन शायद कुछ पढ़ने वालों को प्रेरणा मिले कि अंतिम सुख रूह और आत्मा की तस्कीन है, खुदा की रहमत उनकी वरासत है। मेरे पड़दादा अबुल, मेरे दादा पकीर और मेरे वालिद जैनुल आबदीन का खानदानी सिलसिला अब्दुल कलाम पर खत्म हो जाएगा, लेकिन खुदा की रहमत कभी खत्म नहीं होगी क्योंकि वो अमर है, लाफानी है।
6: मैं शहर रामेश्वरम के एक मिडिल क्लास तमिल खानदान में पैदा हुआ। मेरे अब्बा जैनुल आबदीन के पास न तालीम थी न दौलत, लेकिन इन मजबूरियों के बावजूद एक दानाई थी उनके पास और हौसला था, और मेरी माँ जैसी मददगार थी आशी अम्मा। उनकी कई औलादों में एक मैं भी था, बुलंद कामत माँ बाप का एक छोटे से कद वाला मामूली शक्लो सूरत का लड़का। अपने पुश्तैनी मकान में रहते थे हम, जो कभी 19वीं सदी में बना था, काफी वसी और पक्का मकान था रामेश्वरम की मस्जिद स्ट्रीट में। मेरे अब्बा हर तरह के ऐशो आराम से दूर रहते थे, मगर जरूरियात की तमाम चीजें मुयसर थी। सच तो यह है कि मेरा बचपन बड़ा महफूज था, मादी तौर पर भी और जज्बाती तौर पर भी, मटेरियली एंड इमोशनली। रामेश्वरम का मशहूर शिव मंदिर हमारे घर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर था। हमारे इलाके में ज्यादा आबादी मुसलमानों की थी, फिर भी काफी हिंदू घराने थे जो बड़े इत्तेफाक से पड़ोस में रहते थे। हमारे इलाके में एक बड़ी पुरानी मस्जिद थी जहां मेरे अब्बा मुझे हर शाम नमाज पढ़ने के लिए ले जाया करते थे। रामेश्वरम

अब्बा के असूलों पर चलने की कोशिश की है। मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ कि हमसे ऊपर भी एक आला ताकत है, एक महान शक्ति है जो हमें मुसीबत, मायूसी और नाकामियों से निकालकर सच्चाई के मुकाम तक पहुँचाती है। मैं करीब 6 बरस का था जब अब्बा ने एक लकड़ी की कश्ती बनाने का फैसला किया, जिसमें वो यात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी का दौरा करा सकें, ले जाएं और वापस ले आएं। वो समंदर के साहिल पर लकड़ियां बिछाकर कश्ती का काम किया करते थे। एक और हमारे रिश्तेदार के साथ अहमद जलालुद्दीन, बाद में उनका निकाह मेरी आपा जोहरा के साथ हुआ। अहमद जलालुद्दीन हालांकि मुझसे 15 साल बड़े थे, फिर भी हमारी दोस्ती आपस में जम गई थी। हम दोनों हर शाम लंबी सैर को निकल जाया करते थे। मस्जिद गली से निकलकर हमारा पहला पड़ाव शिव मंदिर हुआ करता था, जिसके गिर्द हम उतनी ही श्रद्धा से परिक्रमा करते थे जिस श्रद्धा से बाहर से आए हुए यात्री। जलालुद्दीन ज्यादा पढ़ लिख नहीं सके उनके घर के हालात की वजह से, लेकिन मैं जिस जमाने की बात कर रहा हूँ, उन दिनों हमारे इलाके में सिर्फ वही एक शख्स था जो अंग्रेजी लिखना जानता था। जलालुद्दीन हमेशा तालीम याफ्ता पढ़े लिखे लोगों के बारे में बातें करते थे, साइंस की इजाद, मेडिसिन और उस वक्त के लिटरेचर का जिक्र किया करते थे। एक और शख्स जिसने बचपन में मुझे बहुत मुतासर किया, वो मेरा कजन था, मेरा चचेरा भाई शमसुद्दीन। उसके पास रामेश्वरम में अखबारों का ठेका था और सब काम अकेले ही किया करता था। हर सुबह अखबार रामेश्वरम रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से पहुंचता था। सन 1939 में दूसरी आलमगीर जंग शुरू हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। उस वक्त मैं 8 साल का था। हिंदुस्तान को इत्तेहादी फौजों के साथ शामिल होना पड़ा और एक इमरजेंसी के से हालात पैदा हो गए थे। सबसे पहली दुर्घटना ये हुई कि रामेश्वरम स्टेशन पर आने वाली ट्रेन का रुकना कैंसिल कर दिया गया और अखबारों का गठ्ठा अब रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच से गुजरने वाली सड़क पर चलती ट्रेन से फेंक दिया जाता। शमसुद्दीन को मजबूरन एक मददगार रखना पड़ा जो अखबारों के गठ्ठे सड़क से जमा कर सके। वो मौका मुझे मिला और शमसुद्दीन मेरी पहली आमदनी की वजह बना। हर बच्चा जो पैदा होता है वो कुछ सामाजिक और आर्थिक हालात से जरूर असरअंदाज होता है और कुछ अपने जज्बाती माहौल से भी। उसी तरह उसकी तरबियत होती है। मुझे दयानतदारी और सेल्फ डिसिप्लिन अपने अब्बा से वरासत में मिला था और माँ से अच्छाई पर यकीन करना और रहम दिली। लेकिन जलालुद्दीन और शमसुद्दीन की सोहबत से जो असर मुझ पर पड़ा, उससे सिर्फ मेरा बचपन ही महज अलग नहीं हुआ बल्कि आइंदा जिंदगी पर भी उसका बहुत बड़ा असर पड़ा। फिर जंग खत्म हो गई और हिंदुस्तान की आजादी बिल्कुल यकीनी हो गई। मैंने अब्बा से रामेश्वरम छोड़ने की इजाजत चाही। मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स रामनाथपुरम जाकर पढ़ना चाहता था। शमसुद्दीन और जलालुद्दीन मेरे साथ रामनाथपुरम तक गए मुझे श्वार्ट्स हाई स्कूल में दाखिल कराने के लिए। जाने क्यों वो नया माहौल मुझे रास नहीं आया। रामनाथपुरम बड़ा मसरूफ शहर था और करीब 50,000 की आबादी थी, लेकिन रामेश्वरम का सुकून और इत्मीनान कहीं नहीं था। घर बहुत याद आता था और घर लौटने का कोई मौका मैं छोड़ता नहीं था। श्वार्ट्स हाई स्कूल में दाखिल होने के बाद एक 15 साल लड़के के तमाम शौक जो हो सकते थे मेरे अंदर जाग उठे। मेरे टीचर अय्या दुराई सोलोमन बेहतरीन रहबर थे, गाइड उस नौजवान जहन के लिए जिसके सामने जिंदगी की बेशुमार मुमकिनात खुलने वाली थी। रामनाथपुरम के उस अरसे कयाम में उनसे मेरा रिश्ता उस्ताद शागिर्द या गुरु शिष्य से भी आगे निकल गया। अय्या दुराई कहा करते थे, जिंदगी कामयाब होने और नतीजे हासिल करने के लिए 3 ताकतों पर काबू पाना बहुत जरूरी है, ख्वाहिश, यकीन और उम्मीद। अय्या दुराई सोलोमन जो बाद में रेवरेंट हो गए कहा करते थे, इससे पहले कि मैं चाहूं कुछ हो जाए, ये जरूरी है कि मेरे अंदर उसकी पूरी शिद्दत से ख्वाहिश हो और यकीन हो कि वो होगा। मैं अपनी जिंदगी से अगर मिसाल दूं तो मुझे बचपन से ही आसमान के इसरार और परिंदों की परवाज हमेशा हैरान करती थी, फैसिनेट करती थी। समंदर में कुंजों और बगलों को ऊंची उड़ाने लगाते देखता था तो उड़ने को जी करता था। मैं एक सादा लोग गांव ही का लड़का तो था, लेकिन मुझे यकीन था कि एक दिन मैं जरूर उन कुंजों की तरह बुलंद उड़ाने लगाऊंगा, बुलंदी पर प्रवास करूंगा। और हकीकत यह है कि रामेश्वरम से उड़ने वाला मैं पहला लड़का था। श्वार्ट्स स्कूल में तालीम खत्म

0: مغربی یعنی ویسٹرن ملکوں کو پہلے تو حیرت ہوئی، پھر غصے کا اظہار کیا اور پابندی لگا دی انڈیا کے لیے کہ وہ ایسی کوئی چیز باہر کے ملکوں سے نہ خرید سکیں جو ان کے میسائل پروگرام میں استعمال ہو سکتی ہو، یا عام ترقی یافتہ ملکوں کو پریشان کر دیا۔ اگنی کی ٹیم میں 500 سے زیادہ سائنسدان شامل تھے۔ اگنی کی پرواز 20 اپریل 1999 طے پائی تھی۔ لانچ کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں اور حفاظت کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ لانچ کے وقت آس پاس کے تمام گاؤں خالی کرا دیے جائیں۔ اخبارات اور دوسری میڈیا نے اس بات کو بہت اچھالا۔ 20 اپریل پہنچتے پہنچتے تمام ملک کی نظریں ہم پر ٹکی ہوئی تھیں۔ دوسرے ملکوں کا دباؤ بڑھ رہا تھا کہ ہم اس تجربے کو ملتوی کر دیں یا خارج کر دیں، لیکن سرکار مضبوط دیوار کی طرح ہمارے پیچھے کھڑی رہی اور کسی طرح ہمیں پیچھے نہیں ہٹنے دیا۔ پرواز سے صرف 14 سیکنڈز پہلے ہمیں کمپیوٹر نے رکنے کا اشارہ کیا۔ کسی ایک پرزے میں کوئی خامی تھی، وہ فوراً ٹھیک کر دی گئی، لیکن اسی وقت ڈاؤن رینج اسٹیشن نے رکنے کا حکم دیا۔ چند سیکنڈز میں کئی رکاوٹیں سامنے آ گئیں اور پرواز ملتوی کر دی گئی۔ اخبارات نے آستینیں چڑھا لی، ہر بیان نے اپنی اپنی طرح کی وجوہات نکال لی۔ کارٹونسٹ سدھیر دار نے ایک کارٹون شائع کیا جس میں ایک خریدار کچھ سامان دکاندار کو واپس کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، اگنی کی طرح وہ بھی نہیں چلی۔ ایک کارٹون میں دکھایا گیا کہ سائنسدان کہہ رہا ہے، سب ٹھیک تھا، سوئچ بٹن نہیں چلا۔ ہندوستان ٹائمز کے کارٹون میں ایک نیتا رپورٹر کو سمجھا رہا ہے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، یہ بڑی امن پسند اہنساواد کی مثال ہے، اس سے کوئی مرے گا نہیں۔ قریب 10 روز دن رات کام چلا میسائل کی درستی پر، اور آخرکار سائنسدانوں نے ایک نئی تاریخ طے کی اگنی کی پرواز کے لیے۔ مگر پھر وہی ہوا، 10 سیکنڈ پہلے کمپیوٹر نے رکاوٹ کا اشارہ کیا، پتا چلا ایک پرزہ کام نہیں کر رہا ہے۔ پرواز پھر ملتوی کر دی گئی۔ ایسی بات کسی بھی سائنسی تجربے میں ہو جانا عام بات ہے، غیر ملکوں میں بھی بہت بار ہوتا ہے، لیکن امید سے بھری ہوئی قوم ہماری مشکلیں سمجھنے کو تیار نہیں تھی۔ ہندو اخبار میں کیشو کا ایک کارٹون چھپا جس میں ایک دیہاتی کچھ نوٹ گنتے ہوئے کہہ رہا تھا، میسائل کے وقت گاؤں سے ہٹ جانے کا معاوضہ ملا ہے، 2-4 بار اور یہ تجربہ ملتوی ہوا تو میں پکا گھر بنوا لوں گا۔ امول بٹر والوں نے اپنے ہورڈنگ پر لکھا، اگنی کو ایندھن کے لیے ہمارے بٹر کی ضرورت ہے۔ اگنی کی مرمت کا کام جاری رہا۔ آخرکار ایک بار پھر 22 مئی کی تاریخ اگنی کی پرواز کے لیے طے پائی۔ اس کی پچھلی رات ڈاکٹر اروناچلم، جنرل کے این سنگھ اور میں ڈیفنس منسٹر کے سی پنت کے ساتھ چہل قدمی کر رہے تھے۔ پورے چاند کی رات تھی، ہائی ٹائٹ کا وقت تھا اور لہریں گرج گرج کر خدا کی عظمت کا نام لے رہی تھی۔ کل اگنی کی پرواز کامیاب ہوگی یا نہیں، بار بار یہی سوال ہمارے دماغ میں گونج رہا تھا۔ ڈیفنس منسٹر نے ایک لمبی خاموشی کو توڑتے ہوئے پوچھا، کلام، کل اگنی کی کامیابی منانے کے لیے کیا چاہتے ہو تم؟ میں کیا چاہتا تھا؟ کیا تھا جو نہیں تھا میرے پاس؟ اپنے خوشی کے اظہار کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اور اچانک مجھے جواب مل گیا، ہم 1 لاکھ پیڑوں کی کونپلے لگائیں گے، میں نے کہا، اور ان کے چہرے پر رونق آ گئی۔ تم اپنی اگنی کے لیے دھرتی ماں کا آشیرواد چاہتے ہو، بولے، کل یہی ہوگا، انہوں نے پیشن گوئی کی۔ اگلے دن صبح 7:10 پر اگنی لانچ ہوئی۔ قدم قدم صحیح نکلا، میزائل نے جیسے ٹیکسٹ بک یاد کر لی ہو۔ जैसे सबक याद कर लिया था। हर सवाल का सही जवाब मिल रहा था। लगता था एक लंबे खौफनाक ख्वाब के बाद एक खूबसूरत सुबह ने आंख खुली है। 5 साल की मशक्कत के बाद हम इस लॉन्च पैड पर पहुंचे थे। इसके पीछे 5 लंबे सालों की नाकामयाबी, कोशिशें और इम्तिहान खड़े थे। इस कोशिश को रोक देने के लिए हिंदुस्तान ने हर तरह के दबाव बर्दाश्त किए थे, लेकिन हमने कर दिखाया जो करना था। मेरी जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा था वो मुट्ठी भर सेकंड्स, 600 सेकंड की वो परवाज जिसने हमारी बरसों की थकान दूर कर दी, बरसों की मेहनत को कामयाबी का तिलक लगाया। उस रात मैंने अपनी डायरी में लिखा, अग्नि को इस नजर से मत देखो, ये सिर्फ ऊपर उठने का साधन नहीं है, न शक्ति की नुमाइश है, अग्नि एक लौ है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में जल रही है। इसे मिसाइल मत समझो, ये कौम के माथे पर चमकता हुआ आग का सुनहरी तिलक है। '1990 के रिपब्लिक डे पर देश ने मिसाइल प्रोग्राम की कामयाबी का जश्न मनाया। मुझे पद्म विभूषण से नवाजा गया और डॉक्टर अरुणाचलम को भी। 10 साल पहले पद्म भूषण की यादें एक बार फिर हरी हो गई। रहन सहन मेरा अब भी वैसा ही था जैसा तब था। 10x12 का एक कमरा किताबों से भरा हुआ और कुछ जरूरत का फर्नीचर जो किराए पर लिया था। फर्क इतना ही था कि तब यह कमरा त्रिवेंद्रम में था, अब हैदराबाद में। वेटर मेरा नाश्ता लेकर आया, इडली और छाछ, और आंखों में एक खामोश मुस्कुराहट मुबारकबाद की। मैं अपने हमवतनों की इस नवाजिश से छलक गया। मैं जानता हूं कि बहुत से साइंसदान और इंजीनियर मौका मिलते ही वतन छोड़ जाते हैं, दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं ज्यादा रुपया कमाने के लिए, ज्यादा आमदनी के लिए। लेकिन ये आदर, मोहब्बत और इज्जत क्या कमा सकते हैं जो उन्हें अपने वतन से मिलती है? 15 अक्टूबर 1991 में 60 साल का हो गया। मुझे अपने रिटायरमेंट का इंतजार था। चाहता था कि गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोलूं। ये वो दिन थे जब मैंने सोचा कि अपनी जिंदगी के तजुर्बे, मुशाहदे और वो तमाम बातें कलम बंद करूं जो दूसरों के काम आ सकें। एक तरह से अपनी स्वाने उम्री लिखूं, अपनी जीवनी। मेरे ख्याल में मेरे वतन के नौजवानों को एक साफ नजरिए और दिशा की जरूरत है। तभी यह इरादा किया कि मैं उन तमाम लोगों का जिक्र करूं जिनकी बदौलत मैं ये बन सका जो मैं हूं। मकसद ये नहीं था कि मैं कुछ बड़े बड़े लोगों के नाम लूं, बल्कि ये कि कोई शख्स कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। मसले, मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा हैं और तकलीफें कामयाबी की सच्चाइयां हैं। जैसा कहा है किसी ने, खुदा ने यह वादा नहीं किया कि आसमान हमेशा नीला ही रहेगा। जिंदगी भर फूलों से भरी राहें मिलेंगी। खुदा ने यह वादा नहीं किया कि सूरज है तो बादल नहीं होंगे, खुशी है तो गम नहीं, सुकून है तो दर्द नहीं होगा। मुझे ऐसा कोई गुरूर नहीं कि मेरी जिंदगी सबके लिए एक मिसाल बनेगी, मगर यह हो सकता है कि कोई मायूस बच्चा किसी गुमनाम सी जगह पर, जो समाज के किसी माजूर हिस्से से ताल्लुक रखता हो, ये पढ़े और उसे चैन मिले, ये पढ़े और उसकी उम्मीद रोशन हो जाए। हो सकता है ये कुछ बच्चों को नाउम्मीदी से बाहर ले आए और जिसे वो मजबूरी समझते हैं वो मजबूरी ना लगे, उन्हें यकीन रहे कि वो जहां भी हैं खुदा उनके साथ है। काश हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती हुई लौ को पर लग जाए और उस लौ की परवाज से सारा आसमान रोशन हो जाए।
1: दोस्तों, आज हमने जाना डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन परिचय। ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए सुनते रहिए रेडियो टंटाभील 90.8 FM छावों की आवाज आरजे भावना के साथ।
2: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
3: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
2: और लाइट बिल के
3: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
4: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
1: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
6: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं झाबा की आवाज पर रेडियो टंट्याभील 90.8 FM, आप ही के रेडियो साथी आरजे राकेश के साथ। तो दोस्तों, आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे फाइलेरिया रोग के बारे में। फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसे हाथी पांव बीमारी भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं फाइलेरिया बीमारी के बारे में विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी।
1: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
7: हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है फाइलेरिया। फाइलेरिया एक ऐसा रोग है जिसके संक्रमण होने के बाद उसके लक्षणों का पता कभी कभी 10 से 12 वर्षों में चलता है। इस बीमारी से बचाव ही इसका इलाज है। और वो आसान सा बचाव क्या है? साल में एक बार खाई जाने वाली फाइलेरिया से बचाव की गोली। और इस विषय पर हमें आज जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आई हुई हैं डॉक्टर सारिका सिंह। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब तकनीकी सलाहकार हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश से। और डॉक्टर साहब, हम फाइलेरिया विषय पर बात कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे सबसे पहले आपको बताएं कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनसे पता चल सकता है कि कोई व्यक्ति फाइलेरिया से संक्रमित है।
8: जी, फाइलेरिया रोग जो है वह परजीवी कृमि से होता के फैलने से होता है। इसके जो मुख्यतः लक्षण होते हैं वह शरीर में, मनुष्य के शरीर में, शरीर के कुछ अंगों में जैसे कि पैर है, हाथ है, उनके अंडकोश हैं, उसमें सूजन आने लगती है। वह सूजन इस प्रकार होती है कि हाथी के पाँव के समान लगती है, इसलिए उसको हाथी पाँव भी कहा जाता है। इसमें शरीर में लालपन भी आ जाता है, इसमें फीवर आ जाता है, बुखार आता है और त्वचा भी निकलने लगती है शरीर से।
7: जी, तो ये सारे तमाम सारे लक्षण हैं और जैसा कि आपने बताया इसे बोलचाल की भाषा में हाथी पाव भी कहते हैं। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि फाइलेरिया रोग कैसे होता है और उसके बाद ये फैलता कैसे है।
8: जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह परजीवी कृमि से होता है। जो फाइलेरिया के कीटाणु हैं वह संक्रमित मनुष्य को, अगर कोई मच्छर क्यूलेक्स होता है, अगर काटता है तो वह उसको संक्रमित करता है। फिर उस संक्रमित मच्छर अगर फिर से वह किसी मनुष्य को काटता है तो वह उनको संक्रमित करता है। इस प्रकार से यह चक्र चलता रहता है।
7: यानी कि आपके कहने के आधार पे क्यूलेक्स नाम का जो मच्छर है वो इस बीमारी का वाहक है। डॉक्टर साहब, ऐसा कहा जाता है कि जो विसंगतियां हमारे शरीर में आ जाती हैं फाइलेरिया रोग की वजह से, हाथों पैरों में या शरीर के किसी अंग में सूजन, क्या वो कभी ठीक हो पाती हैं?
8: एक बार जब विसंगति आ जाती है, जैसे कि शरीर में सूजन आ जाती है हाथ या पैर हो, तो वह पूरी तरीके से नहीं सही हो सकती है। इसलिए इसका बचाव ही एकमात्र उपाय है।
7: जी जी जी, जान लेना चाहिए कि जो फाइलेरिया से बचाव की गोली इस उन्मूलन अभियान में खिलाई जाती है उसका जरूर सेवन करें। और जी बताइए
8: आकांक्षा जी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये अभी जड़ से नहीं खत्म कर सकते हैं, इसका बचाव ही एकमात्र उपाय है। तो इसको, लेकिन अगर ये एक बार फाइलेरिया ये हो गया है किसी को, तो वह चिकित्सा परामर्श लेके, इसके लिए हमारे पास दवाइयां उपलब्ध हैं सरकारी अस्पताल में, उनसे वो चिकित्सा उपचार लेके वह दवाइयां खा सकते हैं। साथ में ये हमारी सरकार जो है यहाँ पे हाइड्रोसिल के ऑपरेशंस भी होते हैं जिनसे कि वह दूरी दूर होता है उससे। जी
7: डॉक्टर साहब, फाइलेरिया उन्मूलन का जो अभियान चलाया जाता है हमारे प्रदेश में, हमारे दर्शकों को बताइए कि वो कब से कब तक चलाया जाता है और इसके अंतर्गत जो गोली खिलाई जाती है क्या वो किसी एक निश्चित स्थान पर खिलाई जाती है?
8: ये हमारा जो ये फाइलेरिया अभियान होता है, उन्मूलन अभियान होता है, इसको मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं। हमारे यहाँ प्रदेश में यह दो चरणों में चलता है, एक फरवरी में और एक नवंबर में। ये दो तो हमारे खत्म हो चुके हैं, लेकिन अगले वर्ष फिर से यह शुरू होगा। इसमें स्वास्थ्यकर्मी सभी ग्रामीण और शहरी इलाकों में घर घर जाकर फाइलेरिया की गोली निःशुल्क देते हैं और अपने सामने खिलाते हैं। यह एक साथ खिलाया जाता है, सार्वजनिक रूप से खिलाया जाता है, इसलिए इसका उन्मूलन के लिए यही प्रयास है।
9: जी बिल्कुल, और हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम चाहेंगे कि जब भी उनके घर पे उन्मूलन के लिए गोलियां खिलाने के लिए कार्यकर्ता पहुंचे, वो इस गोली का सेवन जरूर करें। डॉक्टर सिंह के मन में जरूर एक बात आ रही होगी कि यदि किसी को बुखार है या कोई और छोटी मोटी सीजनल परेशानियां चल रही हैं, तो क्या तब भी वो इस गोली का सेवन कर सकते हैं?
8: जी, ये दो वर्ष से कम बच्चों को नहीं दिया जाता है, गर्भवती महिलाओं को नहीं दिया जाता है, और अगर वह किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं तो उनको नहीं दिया जाता है। बाकी सभी प्रकार के व्यक्ति खाना चाहिए, सभी उम्र के व्यक्तियों को खाना चाहिए।
10: जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो फाइलेरिया से बचाव की गोली है, ये क्या फाइलेरिया ग्रसित व्यक्ति ही खा सकता है या स्वस्थ व्यक्ति को भी खानी चाहिए?
9: जी बताइए डॉक्टर।
8: ये संक्रमित और असंक्रमित दोनों प्रकार के व्यक्ति खा सकते हैं और इनको साल भर में एक बार अवश्य सेवन करना चाहिए।
9: जी डॉक्टर साहब की तरफ से ये भी हमारे कार्यक्रम की तरफ से आपको जरूर जाननी चाहिए कि यदि फाइलेरिया हो चुका है तो दवाओं के माध्यम से इसे उसी स्टेज पर रोका जा सकता है, इसलिए बचाव की गोली खानी जरूरी है आप सभी के लिए। और डॉक्टर साहब, इसी के साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या फाइलेरिया से बचाव की गोली जब भी हमें किसी को संक्रमित व्यक्ति है वो भी खा ले या सिर्फ जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वही खाएं, दोनों के लिए कितनी फायदेमंद है ये?
8: ये दोनों के लिए फायदेमंद है। अगर कोई संक्रमित है इससे तो वह उसी स्थान पे उसको दूरगामी प्रभावों से रोका जा सकता है, और इसको नहीं है उसको उसके बचाव के लिए ये उपाय है हमारे लिए,
9: तो दोनों को ही खानी चाहिए।
8: और अगर किसी को गंभीर बीमारी है, अगर उनको कोई भी शक है कि हम ये खाएं या ना खाएं, तो वह हमारे निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर जाके वो वहां पे उनके चिकित्सा उपचार ले सकते हैं और उनसे परामर्श ले सकते हैं,
9: अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं।
8: जी
9: और डॉक्टर साहब, एक
11: क्या फाइलेरिया की दवाई एक बार खा लेने से साल में पूरे साल इससे बचा जा सकता है?
9: बताइए
8: जी नितिन जी, एक बार अगर आप सेवन इसका कर लीजिए तो इनके दूरगामी प्रभावों से बचा जा सकता है।
9: आज हम बात कर रहे हैं फाइलेरिया विषय पर और हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तकनीकी सलाहकार डॉक्टर सारिका सिंह जी। और डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो उन्मूलन का अभियान है, इसमें जन सामान्य से किस तरह के सहयोग की अपेक्षा हम कर सकते हैं?
8: ये जब अभियान चलता है, हम सभी से यही बोलेंगे कि आप कृपया उनका सेवन अवश्य करें। जब हमारे स्वास्थ्यकर्मी उनके घर जाते हैं तो उनका सहयोग, उनमें सहयोग प्रदान करें और अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करें, इसका सेवन करना बहुत आवश्यक है जिससे हम इनका उन्मूलन कर सकें।
9: जी, और डॉक्टर साहब, एक चीज और बहुत जरूरी जानकारी है जो इससे रिलेटेड हमारे दर्शकों को जरूर मिलनी चाहिए कि क्या फाइलेरिया रोग किसी खास वातावरण, मौसम या उम्र में ही होता है?
8: नहीं, इसके फाइलेरिया के जो कीटाणु हैं वह किसी उम्र या वातावरण से संबंधित नहीं है, या किसी भी समय और किसी भी मौसम में हो सकता है और किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है। यह विशेषता इसके जो कीटाणु हैं वह शरीर में जो रक्त प्रवाह है उसमें वह रात में 10 बजे से लेके 2 बजे तक ज्यादा परिलक्षित होते हैं। अच्छा। तो जब किसी का कोई भी अगर किसी को जांच करानी होती है तो वह उनका जो ब्लड का सैंपल है वह रात में ही लिया जाता है।
9: अच्छा। जी रात के 10 बजे से 2 बजे तक
8: वह सबसे ज्यादा दिखते हैं। जी,
11: और मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि क्या फाइलेरिया की कोई होम्योपैथिक दवा भी है?
9: जी बताइए।
8: इसके लिए मैं आपसे यही आग्रह करूंगी कि आप अपने निकट के चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए और वहां पे आप चिकित्सकीय सलाह लीजिए।
9: जी
6: श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमने फाइलेरिया रोग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त किया। श्रोताओं, हमने जाना है फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें हमारे नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहिए और इसकी गोली को अवश्य खाना चाहिए। तो श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनते रहिए रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज़ पर।
12: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
13: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: हैं मेरा गांव मेरी धरोहर योजना के विषय में। मेरा गांव मेरी धरोहर MGMD भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। इसका उद्देश्य देश के गांवों की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं, रीति रिवाजों, कला और इतिहास का डिजिटल दस्तावेजीकरण और मानचित्रण करना है। देश के सभी गांवों की सांस्कृतिक पहचान, लोक कला और पारंपरिक ज्ञान का एक विस्तृत डिजिटल डेटाबेस तैयार कर ग्रामीण क्षेत्रों की अमूर्त सांस्कृतिक संपत्तियों और ऐतिहासिक धरोहरों को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना तथा सांस्कृतिक पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना है। हमारे गांव की मिट्टी में हमारे बुजुर्गों की मेहनत की खुशबू है। इन गलियों में हमारे बचपन की यादें हैं, गांव की चौपालों में पीढ़ियों की कहानियां हैं और इन खेतों में हमारे अन्नदाता का पसीना है। हमारी लोक परंपराएं, हमारे गीत संगीत, हमारे त्यौहार और रीति रिवाज, यह केवल बीते समय की निशानियां नहीं है बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अनमोल विरासत है। हमारे गांव की हर पुरानी दीवार एक कहानी कहती है। हर तालाब, हर कुआं, हर पेड़ और हर ऐतिहासिक स्थान अपने भीतर इतिहास समेटे हुए। हमारी संस्कृति, हमारी चौपाल की कहानियां, हमारे त्योहारों की रौनक, हमारे लोकगीतों की मिठास और हमारे बुजुर्गों का पारंपरिक ज्ञान, यही तो हमारी असली विरासत है। इन्हें बचाना केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं, यह हमारा सौभाग्य है। तो आइए हम भी अपने गांव की धरोहर को सुरक्षित रखने में सहयोग करें और इस सुंदर पहल का हिस्सा बनें।
1: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहु वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमरता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
2: किसान साथियों, स्वागत करते हैं आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आज हम खेती बाड़ी के इस कार्यक्रम में जैविक बाजार संभावनाएं अपार, जी हाँ किसान साथियों, आज का हमारा जो विषय है, जो बिंदु है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, वो है जैविक बाजार संभावनाएं अपार। किसान साथियों, आप सभी जानते हैं कि आज का जो हमारा दौर है वो जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की तरफ हमारे सारे किसानों ने है, हमारे किसानों का रुख है, जो कहीं ना कहीं जैविक खाद्यान्नों पर और जैविक खाद्यान्नों की जो आवश्यकता है वो काफी बढ़ चुकी है और सभी आज के अधिकतर जो हमारे उपभोक्ता हैं वह जैविक विधि से उपजाए हुए उत्पादों को अधिक से अधिक मात्रा में ले रहे हैं। तो किसान साथियों, आज के इस जैविक बाजार संभावनाएं अपार कार्यक्रम में हम जानेंगे कैसे हम भी इसमें सहभागी हो सकते हैं, कैसे हम हमारी खेती में बदलाव लाकर इनका लाभ ले सकते हैं। तो आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं।
3: जैविक बाजार की अगर बात की जाए, लगातार अब इसका दायरा जो है बढ़ता जा रहा है, किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है और इसी वजह से अपार संभावनाएं जो है अब किसानों को इसमें नजर आ रही हैं। किस तरीके से संभावनाएं यहाँ पर हैं हमारे किसानों के सामने, उस पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए ये रिपोर्ट।
4: जब भी जैविक खेती की बात होती है तो हम यही समझते हैं कि रासायनिक उर्वरकों, रासायनिक कीटनाशियों आदि के बिना की जाने वाली खेती, जिसमें गोबर की खाद हो, केंचुआ खाद हो, नीम आदि के बने कीटनाशी हो, मिश्रित खेती हो आदि आदि, अगर यही जैविक खेती है तो हम जैविक या जीवन की खेती के मर्म को समझने में असफल रहे हैं। थोड़ा गहराई में जाएं तो शायद जैविक खेती या जीवन की खेती की नई परिभाषा समझ में आएगी। प्रचलित हरित क्रांति में आधुनिक विज्ञान के सहारे जो प्रयोग हुए उनमें मशीनों व रसायनों को महत्वपूर्ण माना गया, जिसमें जीने का अर्थ आवश्यकता, समझ व श्रम जैसी वास्तविकताओं की सही जानकारी के अभाव में ये मान लिया गया कि कम से कम लागत व कम से कम श्रम देकर अधिक

0: हम उत्पादन करना ही विकास है। अब इसमें प्रकृति के साथ संबंध को समझना और इसके साथ जीना तो दूर की बात रही, बस केवल इस पर ध्यान दिया गया कि संपूर्ण प्रकृति के संसाधनों को मनमानी पूर्वक इस्तेमाल कैसे किया जाए। इस प्रकार मात्रात्मक रूप से उत्पादन में जो वृद्धि हुई उससे किसान और कृषि दोनों ही दिशाहीन होकर भारी संकट में हैं। फसल प्रणाली तथा खेती के संसाधन सभी लाभोन्मादी बाजार के कब्जे में हैं। उत्पादन तो बढ़ा लेकिन भुखमरी, कुपोषण, बेरोजगारी के साथ साथ भ्रष्टाचार जिस प्रकार बढ़ा है उससे तो यही लगता है कि प्रत्येक कार्य योजना असफल है। आर्थिक असंतुलन व प्राकृतिक स्तर पर जल प्रदूषण व विकिरण ने गहरे सवाल मानव जाति के सामने खड़े किए हैं। एक तरफ धरती की तबाही तो दूसरी तरफ मंगल ग्रह पर बसने की ललक ने यह स्पष्ट किया है कि मानव ने अभी तक इस धरती के साथ जीना कैसे है इसे नहीं समझा है। इसलिए यह आवश्यकता है कि खेती करने से पहले प्रकृति की उत्पादन व्यवस्था एवं उसके साथ जीने के संबंध को स्पष्ट रूप से जाना जाए। उत्पादकता प्रकृति की सहज व्यवस्था है, मानव उसमें भागीदार होकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयासरत है। उपयोगी भोजन, हवा, पानी से प्रकृति सजी हुई है, जिसमें सभी वनस्पतियां एवं जीव जगत परंपरागत रूप से अपना अपना जीवन जी रहे हैं। लेकिन प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ इकाई यानी मानव जीने में सफल नहीं है, ये प्रश्न संपूर्ण मानव जाति के सामने है। जैविक खेती के संदर्भ में मिट्टी की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए प्राकृतिक उत्पादन व्यवस्था का स्वरूप भूमि में उर्वरता बढ़ाना होना चाहिए। जंगल में मांसाहारी व शाकाहारी दोनों प्रकार के शरीरधारी जीव हैं, जिनसे हर प्रकार का सह अस्तित्व सजा हुआ है। मानव जाति को उसका अध्ययन करने की आवश्यकता है। मांसाहारी कम खाते हैं तथा उनकी प्रजनन दर भी कम है, साथ ही शाकाहारी ज्यादा चरते हैं तथा उनकी प्रजनन दर भी ज्यादा है, इसलिए कभी मांसाहारियों को भोजन का संकट नहीं रहता। साथ ही मांसाहारी के शरीर, मांस व मल की गंध से अनेक कीड़ों और बीमारियों का नियंत्रण भी होता है, जिससे वनस्पतियां रोग मुक्त रहती हैं। खेती करते समय भी किसान भाइयों को इसी सह अस्तित्व पूर्ण प्राकृतिक व्यवस्था को समझने की आवश्यकता है। खेती में कृत्रिम रसायनों का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रकृति विरोधी है, इससे मिट्टी का अपना संसार विकृत होता है, जिससे धरती की उर्वरता में कमी आती है। भूमि में जीवांश बढ़ाने के लिए कुछ बातों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसे अवशेष अपघटन क्रिया के नियम, विविधता में अवशेषों की उपलब्धता, तैयार किए गए कार्बनिक खादों व अन्य उपयोगी पदार्थों के प्रयोग, भूमि को कार्बनिक आच्छादन कर दबा कर रखना और हरी खाद के प्रयोग। आज हमारी भूमि में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो रही है। जिस प्रकार प्रकृति में विविधता है, ठीक उसी प्रकार जमीन के अंदर जीवाणु भी विविधता में रहते हैं। ये विविधता प्राकृतिक ऐश्वर्य है, लेकिन एकल फसल प्रणाली से इस विविधता में भारी कमी आई है। यही कारण है कि भूमि में पर्याप्त विविधता में अवशेष उपलब्ध नहीं रहते, जिससे सूक्ष्म स्तर पर विविधता में जीवाणु भी उपलब्ध नहीं रहते। अब जैविक खेती को हम प्रकृति के साथ अपने सह अस्तित्व के रूप में देखें व समझें तो नई व सार्थक परिभाषा निकल कर आएगी। ये खेती संभव है और हमें इसे संभव बनाना होगा, वरना प्रकृति का नाश कर खड़े किए गए तथा कथित विकास का अंत पूरी मानव सभ्यता के अंत के साथ ही होगा। इसे रोकना हम सब की जिम्मेदारी है।
1: तो ये रिपोर्ट आपने देखी, जाना किस तरीके का बाजार है हमारे किसानों के सामने। अगर वो इस बाजार का रुख करते हैं तो उनके लिए काफी लाभ का सौदा साबित हो सकता है, और यही जानकारी जो है अब लगातार किसानों को दी भी जा रही है। हम भी उसी जानकारी को आज यहाँ पर उसके पहलू जो हैं उन तमाम पहलू पर चर्चा करेंगे और इसी के लिए हमारे साथ खास मेहमान जो हैं वो स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कृष्ण चंद्रा जी, निदेशक हैं राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद कृषि मंत्रालय की ओर से। इसके साथ साथ यहाँ आज हम डॉक्टर चंद्रा से जानेंगे तमाम उन योजनाओं के बारे में जो हमारे किसानों के हितों के लिए चलाई जा रही हैं, खासतौर से जैविक खेती पर केंद्रित हैं, और उसके बाद किस तरीके से एक बाजार जो है किसानों को जैविक का वो मिलना चाहिए, इसकी तमाम जानकारी इनसे हम लेंगे। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं मनु चौधरी जी जो जैविक उद्यमी हैं, और किसानों की एक समस्या रहती है कि कैसे उनको बाजार का जो रुख है वो करना होगा, कैसे उनका जो उत्पाद है बाजार तक पहुंचेगा। सरकार ने भी इस समस्या पर गौर किया, उसके बाद अलग अलग राज्यों में अलग अलग संस्था जो हैं वो खोल दी गई हैं। वहीं से मनु चौधरी जी भी हैं पश्चिम बंगाल, उसके साथ साथ पूरे देश में किस तरीके से जैविक उत्पादों का बाजारीकरण हो रहा है, कैसे किसानों को फायदा पहुंच सकता है, इसकी तमाम जानकारी इनको है। वही जानकारी आज किसानों के लिए हम यहाँ उनके साथ साझा करेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं हरेंद्र राणा जी जो कि एक सफल उन्नत किसान है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें हरेंद्र राणा जी उससे पहले भारतीय वायुसेना में इंजीनियर पद पर कार्यरत रहे हैं। उसके बाद भी इन्होंने जो पढ़ाई की एक बात कही जाती है, जो पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, उसके बाद इन्होंने पढ़ाई की और 3 डिग्री इन्होंने MBA में यहाँ पर हासिल की हैं। उसके बाद एक नई नौकरी, उसके बाद आखिर की जब बात की जाती है, क्योंकि एक किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं हरेंद्र राणा जी, और वहीं ये पहुँचे यानी अब सफलतापूर्वक खेती किसानी कर रहे हैं, दूसरों के लिए एक मिसाल बन चुके हैं। इनसे भी इनका आज अनुभव आपके साथ हम साझा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से जैविक बाजार में अपार संभावनाएं बाकी किसानों को भी नजर आ सकती हैं। सबसे पहले डॉक्टर कृष्ण चंद्रा आपसे हम यहाँ जानना चाहेंगे, अगर जैविक की बात कही जाती है, धीरे धीरे एक हम कह सकते हैं योजनाएं अब आ चुकी हैं किसानों के लिए, और अब एक अच्छी खासी जो संख्या है किसानों की वो हो चली है जैविक खेती की ओर।
2: जी बिल्कुल, ये सच है कि इधर 2 सालों में जो जैविक के ऊपर काम किया गया है और भारत सरकार ने जो योजनाएं बनाई है बहुत ही सफल योजना है, और हम कहेंगे पूर्ण योजना है, संपूर्ण योजना है जो कि टोटल किसान के लिए डिवोटेड है जी। और उसका रिजल्ट अब आना शुरू हो गया है। जब 2 साल पहले ये योजना चालू की गई थी परम्परागत किसी विकास योजना के नाम पर, उस समय कोई भी किसान हमारे मंत्रालय से जुड़ा हुआ नहीं था। आज की डेट में हमारे पास करीब 10 लाख किसान ऑल ओवर इंडिया जुड़ चुके हैं
1: जी।
2: और एक आपको मालूम है कि हमारा PGS इंडिया पिछले साल लॉन्च किया गया था, PGSindia.NCUF.gov.in, उसमें आप पूरा देख सकते हैं कि कितने किसान जुड़े हुए हैं। आज की डेट में 1 लाख से ऊपर किसान 6 महीने में जुड़ गए हैं
1: जी।
2: तो और उन सभी किसानों का डिटेल आप उसमें देख सकते हैं। तो ये शो करता है कि जो स्कीम हमारी चल रही है, जो सरकार ने स्कीम चलाई थी, वो किसानों के लिए कितनी बेनिफिट है और किसान कितने आगे आके इसमें जुड़ रहे हैं। तो एक ये स्कीम बहुत सक्सेसफुल चल रही है जिसमें कि आपका बाजारीकरण से लेके आपका उनका ब्रांडिंग तक दिया गया है
1: जी।
2: दूसरी स्कीम हमारी एक नॉर्थ ईस्ट के लिए चल रही है, वैल्यू चेन स्कीम, उसका भी फायदा आना अभी बाकी है, लेकिन किसान उसके साथ भी जुड़ना शुरू हो गए। और इनडायरेक्ट में बहुत सारी स्कीमें चालू की गई हैं, जैसे जैविक स्कूल को सपोर्ट करना वो चालू किया गया है, और ये देखा यह जा रहा है कि किसान कुछ तो हमारी स्कीम से आ रहे हैं, अब कुछ अपने आप इससे जुड़ने लगे, क्योंकि इनडायरेक्ट में भी सरकार बहुत फायदा दे रही है। जैसे हम लोगों ने प्रमाणीकरण की सुविधा मुफ्त में दी है
1: जी।
2: तो उसका बेनिफिट ये हो रहा है कि जो किसान को हमारी स्कीम में जुड़ा है, नहीं जुड़ा है, उसके बाद भी उसको प्रमाणीकरण मिल जाता है, मुफ्त में प्रमाणीकरण मिल रहा है, तो उससे और किसान इसमें आ रहे हैं। फिर बाजारीकरण के लिए भी जो किसान अपना प्रोडक्ट लाता है तो उसको बेचने के लिए हम लोग मदद करते हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण चीज की गई जो आज तक नहीं हुआ है
1: जी,
2: कि किसानों के पहली बार किसानों को सरकार ने प्लेटफॉर्म दे दिया है,
1: बिल्कुल एक मंच जो है सरकार की तरफ से वो दिया गया।
2: तो वो अपना प्रोडक्ट लाके अपने विलेज के नाम पे, अपने नाम पे लाके वो बाजार में ला सकता है और बाजार में दे रहा है। इसी के सीरीज में बहुत सारी शॉप्स खोली जा रही हैं,
1: बिल्कुल एक हम कह सकते हैं चरणबद्ध तरीके से अब एक नई शुरुआत हो चुकी है। और किसानों तक तो ये कैसे पहुंची, राणा जी आपसे हम जानना चाहेंगे, अगर बात कही जाती है जैसा कि यहाँ डॉक्टर कृष्ण चंद्रा ने हमें बताया काफी संख्या में जो किसान हैं वो जुड़ चुके हैं, आपका अनुभव कैसा रहा जैविक खेती करने से पहले और उसके बाद?
3: इसमें मुकुल जी सबसे पहले तो नमस्कार आपको, आपके सभी टीम को जी। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ कृष्ण चंद्रा जी का, जिन्होंने एक रास्ता खोला किसानों के लिए, उसी रास्ते के द्वारा मैं भी आज एक किसान के रूप में खड़ा हो पाया हूँ
1: जी।
3: उससे पहले जो हम खेती करते थे उसमें भी उतनी ही मेहनत लगती थी, लेकिन जो आउटकम था वो जस का तस रह जाता था
1: जी।
3: जब से भारत सरकार की कृषि मंत्रालय के द्वारा जो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद में है
1: जी,
3: वहाँ हमने संपर्क साधा और उसके द्वारा जब हमने खेती करने का मन बनाया तो हमारे जीवन में एक ऐसा मिरेकल आया कि जो हमने कभी सोचा भी नहीं था
1: जी।
3: और जो हमारा इनपुट्स की प्रॉब्लम थी, खर्चा कहीं हो जाता था और लास्ट में जो कैलकुलेशन निकलती थी वो जस की तस रह जाती थी
1: जी।
3: आज की तारीख में हम देखते हैं कि हमारा प्रोडक्शन तो बढ़ा है, ये तो एक बात है, उसके साथ साथ हमारी जो भूमि की जो कंडीशन थी जो दिनों दिन खराब होती जा रही थी, उसमें कई फैक्टर्स आ जाते हैं, उसमें बहुत तेजी के साथ सुधार होना शुरू हुआ है।
1: यानी वहां भी सुधार देखने को मिल रहा है।
3: जी
1: जी बिल्कुल। तो देखिए कितने फायदे हैं जैविक खेती के हम कहते हैं, लेकिन जैविक बाजार की जब खासतौर से बात कही जाती है तो ये एक बड़ा हम बाजार मान सकते हैं। मनु जी आपसे हम जानना चाहेंगे, अगर हम हमारे किसानों को अगर बताएं, जैसे कि अब हम लगातार बात कर रहे हैं कितने किसान हैं जो इससे जुड़ चुके हैं, लेकिन एक समस्या रहती है किसानों के सामने कि उन्होंने जैविक खेती तो कर ली, उत्पाद उनके सामने आ गया, लेकिन उस उत्पाद से उनको मुनाफा कैसे होगा, कैसे उसको बाजार तक पहुंचाएं।
4: डेढ़ साल पहले जब मैं संपर्क में आया नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग के और किशन चंद्र सर से, तो मेरे लिए बड़ा आश्चर्य सा विषय था कि किस तरह से हम चीज़ों को किसानों से खरीद के बाजार तक लाएं
1: जी।
4: क्योंकि पहले हमें जब इस उद्योग में हम लोग थे, जब इस बिज़नेस में थे, तो पहले हमें बीच में किसी ट्रेडर का या किसी बीच में कोई मिडल मैन को हमें रखना पड़ता था और जिसके थ्रू हम किसानों से चीज़ों को खरीदते थे
1: जी बिल्कुल।
4: लेकिन जब यह सरकार का यह नया स्कीम निकला PKVY परंपरागत कृषि विकास योजना, इस स्कीम के तहत जब नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग ने बताया कि ये स्कीम कैसे चलेगा, तो हम लोग अपना इसके अंदर में फॉरसाइटनेस देखे कि यहाँ इसमें किसान का काफ़ी भलाई हो सकता है
1: जी।
4: तो क्लस्टर बनाना किसान का, क्लस्टर ग्रुप तैयार होना, एक एक ग्रुप में 50 या 60 किसानों का ग्रुप को पहले तैयार करना
1: जी,
4: वो ग्रुप को एक साथ खेती कराना, जब वो यूनिफॉर्म खेती कर रहे हैं बाजार का क्या डिमांड है उसके बेसिस पे खेती करना, तो जब ये खेती उस तरह से हो रही है बाजार के डिमांड के बेसिस पे
1: जी,
4: तो इस खेती में क्वांटिटी एंड क्वालिटी दो एस्पेक्ट है जो बाजार को चाहिए। क्वालिटी एस्पेक्ट पे जब खेती हो रही है, क्वालिटी माने जैविक के स्तर पे, तो बाजार उसका उचित दाम देता है, उचित मूल्य देता है
1: जी,
4: जो किसानों तक पहुंचता है। तो ये बीच के अंदर का जो ब्रिज है, ये ब्रिज को तैयार करने का पूरा प्रयास हम लोग कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, एक माध्यम बनकर,
4: माध्यम बनकर हम लोग इसमें पूरा प्रयास कर रहे हैं
1: जी,
4: और इससे किसानों को काफ़ी फायदा है। पर्टिकुलरली मैं पश्चिम बंगाल का आपको उदाहरण देता हूँ। पश्चिम बंगाल क्षेत्र में तीन तरह का हम लोगों ने अभी एक्सपेरिमेंटल मोड पे तैयार किया है
1: जी,
4: तीन तरह का चावल को हमने, जो जिला स्तर या ग्राम स्तर पर वो चावल है
1: जी,
4: किसानों द्वारा पैदा किया जाता है, गोविंदभोग, तुलाई पांजी और ब्लैक राइस
1: जी,
4: और कालोनिया। अभी इन चावल के बारे में शायद कोई जानते भी नहीं, जब कस्टमर को इसके जो बाजार है, जब उसको इसकी बेनिफिट समझ में आई
1: जी,
4: और जो किसान इसकी खेती करते थे पहले 200 किलो 400 किलो अपने सिर्फ खुद के कंजम्पशन के लिए खेती करते थे, जब उनको अभी उचित मूल्य मिलना शुरू हुआ तब वे उसको खेती करना बढ़ाना शुरू किया।
1: यानी उत्पादन भी ज्यादा है और मांग भी अब देखने को मिल रहा है।
4: मांग भी देखने को मिल रहा है
1: जी, बिल्कुल बदलाव जो है वो यहाँ लगातार हमें देखने को मिल रहा है। डॉक्टर कृष्णा, आप भी इस बात से सहमत होंगे, अगर खासतौर से हम बात करते हैं परंपरागत कृषि विकास योजना की, एक उद्देश्य जो इसमें रखे गए थे, अभी तक कहाँ तक लगता है आपको कि इसकी सार्थकता जो है योजना की वो अभी हो पाई है?
2: देखिए हम तो ये कहेंगे ये बहुत बढ़ चढ़ के रिस्पॉन्स है और बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। अगर हमारे गाजियाबाद के बगल में, जो कि सेंटर बगल में लोकेटेड है, पहले हमारे साथ दो साल के पहले कोई किसान नहीं था, 20 किसान से चालू हुआ,
1: बिल्कुल
2: आज हमारे पास 10,000 किसान है। अब अगर आप जाएं मेरठ साइट तक तो 10,000 किसान है, 1,00,000 किसान हमारे पास इनडायरेक्ट जुड़ चुके हैं
1: जी।
2: और सबसे बड़ी मतलब प्राउड की बात यह है कि जितने भी हमारे ये रीजनल काउंसिल खोले गए हैं और भारत सरकार ने जितने लोगों को अपॉइंट किया है
1: जी,
2: इसके लिए सबसे बड़ी मतलब हमारा जो विजन है हमारे कृषि मंत्री जी का है, श्री राधामोहन साहब ने, जो उन्हें फर्स्ट डे से उन्होंने कहा था कि किसान को मेन बेनिफिट मिलना चाहिए,
1: बिल्कुल
2: जो कि हम आज सोच रहे हैं, उन्होंने 2 साल पहले कहा था, और उनका यह व्यू था कि आप कुछ भी करें लेकिन किसान के पास में बेनिफिट जाए। आज की डेट में हम बता सकते हैं जो जो भी इस स्कीम के साथ जुड़ा है, स्कीम ना होने के बाद भी जैसा मैंने बताया कि लोगों को प्रमाणीकरण मिल रहा है, जो भी किसान जुड़ रहे हैं अगर वो ऑर्गेनिक में है, फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, तो उनको 10% मिनिमम मार्केट रेट से अधिक मिलता है
5: जी।
2: और अगर उनका जैविक पूरा उत्पाद है तो 30% तक उनको अकाउंट में पैसा जा रहा है।
1: बिल्कुल, जैविक उत्पाद की आपने यहाँ बात कही और हम अक्सर देखते हैं बाजार का जब रुख करते हैं तो जैविक उत्पाद जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन पहचान कैसे की जाए, क्योंकि उपभोक्ता तक जब तक असली एक जैविक उत्पाद नहीं पहुंचेगा शायद मांग जो है उतनी ज्यादा निकल कर नहीं आएगी, कैसे पहचान हो सकती है?
2: देखिए, प्रमाणीकरण बताया आपको, प्रमाणीकरण जैसे आपके मनु जी बैठे हुए हैं ये प्रमाणीकरण भी कर रहे हैं
5: जी,
2: ये प्रमाणीकरण के साथ साथ बाजारी भी कर रहे हैं, तो प्रमाणीकरण के लिए ये लोग किसानों को जोड़ते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन करने के बाद उन जब उनका प्रोडक्ट, एक सबसे बड़ी चीज है ये सर्विसेज दे रहे हैं, सर्विसेज में दे रहे हैं कि किसान कैसे क्या उगाए, जैसे इन्होंने बताया कि पूरा क्लस्टर में कर रहे हैं, तो क्या है कि जब जैविक आपके मंच से कई प्रोग्राम हुए, बहुत सारे किसानों ने पूछा कि भाई हम अकेले कर रहे हैं और हमको बाजार नहीं मिल रही, यही देखा गया कि अकेले अगर आप कर रहे हैं तो इतनी क्वांटिटी नहीं होती तो बाजार नहीं मिलता, तो वो उस समस्या को खत्म करने के लिए क्लस्टर में बेस में काम किया गया, तो किसानों को जोड़ा जाता है, जुड़ने के बाद जब वो किसान आता है इसमें तो उनको तो मालूम नहीं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, वो उसकी सर्विसेज जीरो दे रहे हैं,
1: सारी जानकारी नहीं मान सकते किसान को दी जा रही है,
2: उस पे एक लोगो दिया गया जो भारत सरकार की तरफ से है, पीजीएस इंडिया, पीजीएस ग्रीन, अगर आप पहले साल दूसरे साल कर रहे हैं तो पीजीएस ग्रीन लगाते हैं उसके अंदर, तो उससे वो इंडिकेट करता है कि ये ऑर्गेनिक है, और उसके नीचे एक नंबर दिया जाता है, उसको यूआईडी नंबर हम लोग बोलते हैं, तो उस यूआईडी नंबर से कोई कंज्यूमर अगर देखना चाहे कि ये प्रोडक्ट कहाँ से आया है, किस किसान ने बेचा है, तो वो अपना पोर्टल पर जाके उसको चेक कर सकता है, तो ये सुविधा दी गई। इससे बड़ी चीज कहती है, जब ये लोग प्रोडक्ट अपना पैकिंग करते हैं, कर्जी करने के बाद मार्केट में भेज रहे हैं, उससे पहले हर एक प्रोडक्ट का, हर एक बैच का ये लोग उसका रेजुअल टेस्टिंग करते हैं,
1: तमाम जो मानक है उनको देखा जाता है। मनु जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि किसान है, उनके यही जहन में बार बार आता है कि चलिए उत्पाद तैयार हो गया लेकिन मानकों पर वो खरा उतरे तभी आगे जाएगा, तो किस तरीके जो मानक है वो अभी तक तय किए गए हैं कि किसानों को ज्यादा मुश्किल भी ना हो और उनका जो उत्पाद है उसका भी अच्छा दाम उनको मिल सके?
4: देखिए, जब हम लोग इस कार्यक्रम को शुरू किए पीके भीवाई स्कीम में, पीजीएस का जब हम लोग कार्यक्रम शुरू किए, तो शुरुआती दौर पर किसान बोले कि आप तो जैविक उत्पाद को ही खरीदेंगे
5: जी,
4: तो जब हमने उनको समझाया कि भारत सरकार जो ये योजना जो शुरू की, कृषि मंत्रालय द्वारा जो ये योजना है, ये योजना ऐसा नहीं है कि पहले साल की खेती को हम लोग नहीं खरीदेंगे
5: जी।
4: नॉर्मली अभी तक जो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन चल रहा था, पहले जो जैविक सर्टिफिकेशन की जो क्रिया थी,
5: बिल्कुल,
4: उसमें क्या था कि 3 साल आपको जैविक पूरे खेती करनी होगी तभी जाके आपको प्रमाण पत्र मिलेगा कि आप जैविक कर रहे हैं
5: जी।
4: तो पहले 2 साल की खेती का क्या हो, तो किसानों को पहले 2 साल उन्होंने मेहनत करा, जैविक
1: डर रहता था, शायद डर रहता उपज ना आ पाए,
4: जिसके वजह से वो डर से जैविक की तरफ अपने आप को ले उस तरफ झुकाव उनका नहीं होता था
5: जी।
4: लेकिन जब ये स्कीम आया, पीके वीवाई का स्कीम आया, जिसमें पीजीएस ग्रीन जो सर अभी बोले हैं, पीजीएस इंडिया ग्रीन और पीजीएस इंडिया ऑर्गेनिक, ये स्कीम के तहत में ऐसा है कि बड़ा खूबसूरत तरीके से इसको डिजाइन किया गया कि पहला साल जो उपज होगा किसानों का
5: जी,
4: वो पहला साल का उपज में पीजीएस इंडिया ग्रीन दिया जाएगा, जहां रेसिडुअल टेस्टिंग होगी
5: जी।
4: और चूंकि पहले साल खेती होता है, जिस तरह से हम लोग एलोपैथिक और होम्योपैथिक दवाई खाते हैं, जो इंसान के शरीर में एलोपैथिक दवाई खाने का जो आदि है
5: जी,
4: तो रातों रात वो होम्योपैथिक में जा नहीं सकते, उसी तरह से हमारी जमीन जो है माता है
5: जी,
4: तो जमीन के अंदर में रातों रात इतने दिनों तक जो केमिकल द्वारा जमीन पे जो खेती की गई, उसको अगर हम लोग जैविक की तरफ झुकाव की तरफ ले जाएंगे, तो हो सकता है उसके अंदर में केमिकल का अंश हो, और अगर वो अंश हो तो हम लोग उसको पहले सर्टिफिकेशन करते हैं पीजीएस ग्रीन का
5: जी।
4: पहले साल का जो उत्पाद है वो अंश को जाते जाते ऐसा माना जाता है कि 3 साल लग जाता है, तो पहले 2 साल हम लोग उसको पीजीएस ग्रीन का सर्टिफिकेशन लोगों देते हैं, ताकि किसानों को एटलीस्ट जो है उचित दाम मिले। तो नॉर्मली अभी आ जाते हैं हम लोग कितने दाम उस पे देंगे, जो नॉर्मल केमिकल जो कर रहा है किसान
5: जी,
4: जो उनका प्रोडक्ट है उसका जो दाम है मिनिमम, उससे हम लोग 10-15%।
1: बिल्कुल मनु जी, लेकिन जो दाम में फर्क हम देखते हैं ये किस वजह से आता है? एक हमारा साधारण उत्पाद हुआ, अगर जैविक उत्पाद है वहां हम देखते हैं जो बाजार में अभी शायद उपलब्ध है, वहां एक दाम भी काफी ज्यादा उनके हमें लगते हैं।
4: सर, इकोनॉमिक्स का एक थ्योरी है कि हायर द सप्लाई लोअर द प्राइस
5: जी,
4: जितना ज्यादा उत्पाद बढ़ेगा उतना कम उसका दाम होगा। उसी तरह से वही थ्योरी अप्लाई होता है एग्रीकल्चर में
5: जी।
4: तो चूंकि उत्पाद जो है अभी जैविक उत्पाद, अभी हम लोग 2 साल से ये जो नया परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत किसान अभी इसके तरफ

0: अब किए हैं, अब 125 करोड़ जनता में अगर 10 लाख किसान अभी तक जुड़े हैं
1: जी।
0: इतने कम समय में, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और ये आगे भी जुड़ेगी। तो जितना ये किसान इसमें जुड़ेंगे और जितना ज़्यादा इसका उत्पाद बढ़ेगा, इसका दाम दिन प्रतिदिन कम होता जाएगा जैविक प्रोडक्ट का।
1: बिल्कुल, दाम कम होगा जैसा आपने कहा,
0: जी
1: और उन 10 लाख किसानों में से एक किसान हमारे साथ भी यहाँ मौजूद
0: जी
1: हैं। राणा जी, आपसे हम समझना चाहेंगे, जब आपने शुरुआत की जैविक खेती की, उसके किस तरीके परिणाम जो हैं अभी तक आपको मिले हैं?
2: मुकुल जी, हमने जैविक खेती जब शुरुआत किया था तो सबसे पहले राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र से जब संपर्क हुआ हमारा,
1: जी
2: तो वहाँ से हमने एक वेस्ट डिकम्पोजर नाम का प्रोडक्ट उपलब्ध करवाया था,
1: जी
2: और उसको लेकर के जो भी गाइडलाइंस उनके द्वारा दी गई थी उसी के अनुसार उसे तैयार किया था। और
1: जी
2: उस खेती करने में सबसे बड़ी चीज़ क्या आती है कि आपका बीज संस्कारित होना चाहिए, आप अपनी फसल के साथ में फर्टिलाइजर डालते हो,
1: जी
2: आप अपनी जब फसल बढ़ती है तो उस पर स्प्रे करते हो पेस्टिसाइड और दूसरी चीज़ों को मारने के लिए, फिर उसके बाद में मंडी की तरफ मुंह करते हो।
1: जी
2: तो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र से हमको जो वेस्ट डिकम्पोजर मिला
1: जी
2: उसमें हमको कई फायदे मिले। पहला फायदा तो हमको ये मिला कि जो बीज हम बोने जा रहे हैं
1: जी
2: उसी के द्वारा हम संस्कारित कर सकते हैं बीज को। दूसरी चीज, जब हम फसल बो दिए तो जो आपको मैन्योर चाहिए,
1: जी
2: जैसे कि खेतों में पुरानी जड़ रह जाती है या पुराना DAP पड़ा हुआ है या पुराना आपका गोबर पड़ा हुआ है, जो
1: जी
2: भी आपका वेस्ट पड़ा हुआ है, ये जो वेस्ट डिकम्पोजर है राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र से बहुत प्रचुर मात्रा में हमारे लिए उपलब्ध है। और इसने एक काम बहुत अच्छा किया है कि
1: जी
2: जो भी आपका वेस्ट है उसको बहुत जल्दी डिकम्पोज करता है और उसको एक ऑर्गेनिक मैन्योर में कन्वर्ट कर देता है।
1: बिल्कुल, ये तमाम फायदे हम मान सकते हैं जो उत्पाद देखिए लगातार तैयार हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ये वही उत्पाद हैं जो बाजार की तरफ जाते हैं और इनसे काफी मुनाफा हमारे किसानों को आगे मिल सकता है। आगे भी हम यहाँ जानेंगे और किस तरीके से हमारे किसान जो हैं उनको मुनाफा हो सकता है, कैसे उनका उत्पाद बाजार तक पहुंचेगा और कहाँ उनको संभावनाएं अपार दिखाई देंगी। लेकिन
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनू रेडियो, आपड़ी बातें।
4: किसान साथियों, चर्चाओं का सिलसिला यूं ही बना रहेगा, यहां पर वक्त हो चला है एक छोटे सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद पुनः मुलाकात होगी, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांटिया भील 90.8 FM के साथ झाबुआ की आवाज।

0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम।
1: आपड़ू रेडियो आपड़ी बातें। ब्रेक के बाद एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका किसान साथियों खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आप लगातार सुन रहे हैं जैविक खेती के फायदे और कैसे जैविक खेती करके हमें अधिक से अधिक लाभ मिल सकता है। किसान साथियों, चर्चा का सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं इसमें कुछ और एक्सपर्ट की राय।
2: पर अभी तक आपने जाना किस तरीके एक शुरुआत जो है वो हमारे किसान कर सकते हैं, लेकिन और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, आइए जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट।
3: जैविक खेती यानी प्रकृति के संग जीना। जैविक खेती की ओर आज पूरी दुनिया की नजर है। यूरोप में तो जैविक उत्पादों की मांग में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। हालांकि किस कारण से जैविक उत्पादों के दाम अधिक हैं, ये थोड़ा समझ से परे है, क्योंकि कई मामलों में जैविक खेती से उपज पहले से अधिक हो रही है। जैविक खेती के द्वारा ही विश्व में धान और आलू की प्रति एकड़ सबसे अधिक उपज लेने का रिकॉर्ड भारत में ही बना है। फिर भी जैविक के खिलाफ प्रचार भी काफी हो रहा है, जिसमें उत्पादन में गिरावट आना प्रमुख है। भारत में करीब 86% छोटे व सीमांत किसान हैं। इनकी खेती की लागत में कमी करने में जैविक या प्राकृतिक कृषि की अहम भूमिका है। मिश्रित खेती, उचित दूरी, दलहनी फसलों को फसल चक्र में शामिल करना, हरी खाद, केंचुआ व गोबर खाद, जैविक कीटनाशी, कीटों का जैव नियंत्रण आदि किसानों के बीच जिस तेजी से लोकप्रिय होना चाहिए था वैसा हुआ नहीं।
2: इस रिपोर्ट में आपने जाना कि कैसे जो हमारे किसान हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन चुनौतियां उनके सामने भी हैं और वही चुनौती कहीं ना कहीं हमारे जो कृषि मंत्रालय उसके सामने भी रही होगी। डॉक्टर कृष्ण चंद्रा, आपसे हम जानना चाहेंगे, अब तक हमने बात की कि अगर उत्पाद है कैसे वो बाजार तक पहुंचेगा, लेकिन वो किसान जिसकी शुरुआत करना चाहते हैं, जैसा आपने कहा कि जो किसान है एक डर उनमें शुरू में रहता है, लेकिन अब अगर आपकी स्थिति की हम बात करें तो क्या लगता है वो जो डर है सभी किसानों के जहन से अब निकल चुका है, अभी भी जो किसान है थोड़ा सा एक डर बाकी है उनमें कि आखिर वो अगर जैविक खेती की शुरुआत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है?
4: अब काफी हद तक इसमें डर कम होगा, क्योंकि सबसे बड़ा रीजन है कि अब डिमांड बढ़ने लगी है
2: जी। तो
4: कंज्यूमर हमारा है वो जैविक उत्पाद ढूंढना शुरू कर दिया, और किसानों को भी मालूम है कि हम अगर ये केमिकल खेती करते हैं तो इसके नुकसान काफी हैं, उनकी सेहत खुद को नुकसान हो रहा है, तो ये सब उनके में जागरूकता है। अगर जैसे ही उनको कहीं लिंक मिलता है, सोर्स मिलता है, तो वो इसके तरफ झुकाव हो जाता है
2: बिल्कुल। लेकिन जो किसान इसको करना चाहते हैं जैसा आप भी हमें जानकारी दे रहे हैं, उनको किन बातों का ख्याल रखना होगा, या एक मानकों की अगर हम बात करते हैं कौन से वो मानक है जब भी किसान को अगर वो चाह रहे हैं कि अब वो जैविक खेती की शुरुआत करें?
4: जी देखिए, मानक इसमें अभी जो गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है
2: जी,
4: तो ये हमारे पहले पास जैसे थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन था, अभी पीजीएस और थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन दोनों को एक कर दिया गया
2: जी।
4: तो एक्सपोर्ट के लिए अलग है और हमारा जो डोमेस्टिक के लिए पीजीएस कर दिया गया, लेकिन दोनों के जो स्टैंडर्ड है वो एक कर दिए गए
2: जी।
4: अभी एफएसएसआई से मीटिंग भी हुई थी, तो एफएसएसआई भी इसमें एग्री की है, और इसके बहुत जल्दी आपको नॉर्म्स दिखाई देंगे कि अब आगे आने वाले प्रोडक्ट के ऊपर एक एफएसएसआई का आपका लोगो होगा, साथ में पीजीएस या थर्ड पार्टी का एक लोगो साथ में होगा
2: जी।
4: जो कि एफएसएसआई का काम क्या होगा कि आपको मालूम है कि जो मार्केट में प्रोडक्ट, आपको आप भी पहले रेस कर चुके हैं कि जो मार्केट में प्रोडक्ट है वो जुनून है कि नहीं, उसमें कुछ केमिकल है कि नहीं, वाकई में ऑर्गेनिक है कि नहीं
2: जी।
4: ये सब दुविधा थी, तो उसको खत्म करने के लिए एफएसआई काफी आगे आ गई है, और वो आप सैंपल लेके टेस्टिंग करेंगे अपने लैब में और उसके बाद ही प्रोडक्ट आपका मार्केट में बिकता रहेगा
2: बिल्कुल।
4: तो इससे क्या है कि कंज्यूमर में अवेयरनेस आएगी, कंज्यूमर में एक फेथ जमेगा और डिमांड ऑलरेडी बढ़ रही है, तो किसान जो पहले नहीं चाहता था अब वो जुड़ना शुरू हो गया है। और जो हम लोग एजुकेट करते हैं कि आप जो जैविक खेती करें, पहले था कि जैविक खेती कर रहे हैं तो वो ट्रेडिशनल तरीके से कर रहे हैं, हम लोग उसमें बोलते हैं कि नहीं, आप साइंटिफिक मेथड है, जैसे राणा जी ने बताया कि ये डिकम्पोजर यूज करिए। तो सबसे बड़ी समस्या होती है कि आपके जो इनपुट है उसकी कॉस्ट कैसे कम की जाए।
2: बिल्कुल,
4: जब तक आप इनपुट कॉस्ट नहीं कम कर रहे और पूरे इनपुट नहीं दे पाएंगे फसल को, तब तक आपकी फसल का उत्पादन अच्छा नहीं आएगा। आज की डेट में अगर आप साइंटिफिक तरीके से करते हैं तो उसमें देखा गया है कि उत्पादन में कमी बहुत कम रह जाती है। और दूसरा जो है, जो हम लोग अब जो दे रहे हैं कि एक फसल चक्र पूरे साल भर का, उसमें करीब 11 क्रॉप ले रहे हैं, तो 11 क्रॉप लेने से क्या है कि जो हर 11 क्रॉप का एक तो आपको उत्पाद मिल रहा है, और उससे आपका बाजार भी मिल रहा है, साथ साथ आपके जो इनकम है वो करीब 4 लाख के आसपास पर एकड़ पड़ जाती है
2: जी।
4: तो ये अगर आप कंपेयर करें उससे केमिकल से तो करीब 4 गुना है
2: जी।
4: तो ये इसको देखते हुए किसान काफी जुड़ रहा है और इस इनको प्रैक्टिकल दिखाने के लिए हम लोगों ने कुछ विलेज अडॉप्ट कर रखे हैं
2: जी।
4: तो किसान वहां आते हैं, रुकते हैं, 20-25 दिन को ट्रेनिंग दी जाती है,
2: प्रशिक्षण उन्हें दिया
4: जाता है और प्रैक्टिकल दिखाया जाता है
2: जी।
4: तो कैसे कर रहे हैं, हमारे कैंपस में भी हम लोग अपना लगाते हैं, वहां भी दिखाते हैं और जहां कहीं भी किसान चाहता है ग्रुप में अगर है तो वहां हम अपने टीम भेजते हैं, वो जाके वहां पर सिखाते हैं
2: जी
4: कैसे आप इसको खेती करें। तो ये सब चल रहे और ये भी तय बात है कि हमारे 70% किसान है तो पहुंच हमारी इतनी नहीं है, लेकिन अब केवी केस को भी गवर्नमेंट इन्वॉल्व कर रही है, केवी केस को भी देने आ रही है कि आप एक विलेज अडॉप्ट करें,
2: यानी धीरे धीरे दायरा को
4: दायरा बढ़ा रहे हैं और ये मतलब ये हमारे मंत्रालय से ये सब पॉलिसी बन चुकी है
2: जी।
4: तो बहुत जल्दी आपके हर केवी के जो 600 से ऊपर केवी के हैं वहां पर एक आपका मॉडल फॉर्म रहेगा जहां पर वो दिखाएंगे कैसे आप ऑर्गेनिक करें, तो इससे स्प्रेड होगा, किसानों को भी इन्वॉल्व किया जाए, जो हमारे किसान ऑलरेडी 10-15 साल से किसान खेती कर रहे हैं और कैसे वो उत्पाद अधिक ले रहे हैं उनके उनके उनको भी स्कूल में कन्वर्ट किया जा रहा है,
2: यानी उनके अनुभव को भी साझा किया जाएगा,
4: इससे जी वित्तीय सहायता का भी प्रावधान आगे किया जा रहा है। तो उससे क्या होगा कि जो लोकल किसान उनको फायदा मिलेगा, बाहर का भी मिलेगा और इससे बड़ी चीज आ रही है कि जो आपका बाजारीकरण जो आ रहा है ये बहुत बड़े स्केल में आ रहा है। जैसे हमारे हमारे रेल मंत्री जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है उनसे भी हमारी एक बारी मीटिंग में अनुरोध किया गया
2: जी।
4: वो भी उन्होंने कंसेंट किया कि हम कोशिश करते हैं कि इसको जैविक थाली इसमें हम
2: बिल्कुल शुरू एक नई शुरुआत जो है नई पहल ऐसे की जा सकती है।
4: मिड डे मील है, अब आपको मालूम है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं
2: जी,
4: हॉस्पिटल्स में उसमें जैविक का ही वो खाना परोस रहे हैं, उनको मालूम है कि डॉक्टरों को भी मालूम है, भी सजेस्ट करते हैं इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू अधिक है और इसके साइड इफेक्ट नहीं है। और आपको मालूम होगा कि आपके हमारे कृषि भवन में भी एक शॉप खोली गई, इसी तरह से झारखंड में भी कृषि
2: यानी अलग अलग जगहों पर देखिए अब जो दुकानें हैं जहां पर सिर्फ आपको जैविक उत्पाद मिलेगा वो भी प्रमाणिक जैविक उत्पाद है वो आपको वहां मिल सकता है और उसकी खरीदारी भी आप कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ कृष्णचंद्र जी हमें बता रहे हैं कि उपभोक्ता जो है बढ़ रहे हैं, मांग क्योंकि बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर मनोज चौधरी जी आपसे हम जानना चाहेंगे, मांग की हम बात करते हैं, मांग बढ़ रही है, उत्पादन भी आ रहा है, लेकिन क्या सिर्फ जब एक पूरी प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो सिर्फ बाजार को देखा जाता है या जो किसान है वो बाकायदा बताया भी जाता है कि अगर ये उत्पाद उसका उत्पादन लेते हैं तो उसमें ज्यादा मुनाफा उनको होगा, यानी पूरी जानकारी उनको दी जाए कि किससे आपको ज्यादा मुनाफा मिल सकता और उसी उत्पाद को आगे फैलाया जाए।
5: पहले तो मल्टी क्रॉपिंग जो सिस्टम है, जैसे एक ही जमीन पे हम लोग मल्टी क्रॉपिंग करें
2: जी,
5: एक साथ इकट्ठे जो मल्टी क्रॉप जब आता है तो हमें क्या है एक साथ में एक ही सब तरह के फलन मिलते हैं
2: जी।
5: और जो बाजार का डिमांड है, जैसे हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स है, सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो हमें मिले टाइम टू टाइम। कुछ जैसे अपने 3 सेगमेंट है, हॉर्टिकल्चर सेगमेंट है
2: जी
5: और सीरियल्स एक सेगमेंट है, तो हॉर्टिकल्चर और फिशरी एंड पोल्ट्री वो अलग सेगमेंट है। बाजार का यही 3 डिमांड है, इसी 3 डिमांड पे बाजार पूरा चल रहा है
2: जी।
5: तो अपना पीजीएस जो है हॉर्टिकल्चर और सीरियल्स पे ही अभी चल रहे हैं, तो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स का डिमांड जो है वो ज़्यादा डे टू डे में ज़्यादा इफेक्ट ये चल रहा है
2: जी।
5: अब इसकी लॉन्जिबिलिटी
2: यानी फल और सब्जियां जो है उनको ज्यादा मान सकते हैं जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ राणा जी आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसा कि हमारे जो विशेषज्ञ दोनों ये बता रहे हैं कि किसानों को लगातार बताया जाता है कि कई सारी फसलें आपको लेनी है, लेकिन बतौर एक किसान ये थोड़ा सा मुश्किल भरा नहीं होता कि एक साथ हमें अगर कई फसलें लेनी है कैसे हम वह निर्भर करेंगे, कैसे उसकी उपज आएगी हमारे पास और कितना मुनाफा उससे हमको होगा?
6: शुरुआती दौर में अगर देखें तो किसान को ऐसा लगता है कि ये तो एक बड़ी समस्या है, इतना तो हमसे हो नहीं पाएगा, क्योंकि हम भी आज की तारीख में जब किसानों के पास जाते हैं
2: जी,
6: जब उसे कागज पर समझाते हैं तो किसान बस कागज को देखते ही बोलता है इसमें तो बड़ी मेहनत है
2: जी,
6: ये तो हमारे से नहीं हो पाएगा। और जबकि ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत ही सिंपल तरीका है
2: जी।
6: सबसे पहले तो देखो ऑर्गेनिक खेती करने के लिए जो हमने प्रोडक्ट लिया था
2: जी,
6: मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, अभी किसानों को भी ये दिखा देना चाहता हूँ
2: जी।
6: ये वो प्रोडक्ट है जो वेस्ट डिकम्पोजर है,
2: बिल्कुल।
6: इसको तैयार करने का तरीका बहुत सिंपल है, 200 लीटर का एक ड्रम लीजिए, उसमें 200 लीटर पानी भर लीजिए
2: जी,
6: 2 केजी गुड़ या सीरा है या कोई भी दूसरी स्वीट जैगरी है कुछ भी आप इसमें डाल दीजिए
2: जी,
6: और उसमें इस बोतल को लकड़ी से खरोंच कर डाल दीजिए
2: जी।
6: आप देखेंगे कि इसमें कुछ भी काम नहीं है किसान के लिए, और किसान चाहे

0: تو صبح شام ایک دو بار اس کو گھما سکتا ہے
1: جی.
0: اور سات دن میں گرمی کے دنوں میں یہ تیار ہو جاتا ہے. اور ونٹر سیزن میں تھوڑا سا سمے لیتا ہے کیونکہ بیکٹیریا ہے, تھوڑا سا ملٹیپلائی کرنے میں سمے لیتا ہے
1: جی.
0: اس کے ماتر یوز سے آپ کی زمین سافٹ ہو جاتی ہے
1: جی.
0: کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کسان کو بولا جاتا ہے جپسم ڈال دیجیے, کیلشیم سلفیٹ W2H2 اس میں ڈال دیجیے
1: جی.
0: تو جب آپ کی زمین ویسٹ ڈیکمپوزر سے سافٹ ہو رہی ہے تو اس چیز کی جو آپ کی پرچیز ہے وہ گھٹ جاتی ہے
1: جی.
0: دوسری چیز آپ کی پوروسٹی آف دا لینڈ
1: جی
0: وہ بڑھ جاتی ہے, کینچوا بہت جلدی آتا ہے اس کے یوز کرنے سے. اور کینچوا جب ایک بار آ جاتا ہے کھیتی کے اندر تو آپ دیکھیے کہ اس کے اندر واٹر پینیٹریشن کوالٹی اور اس میں ایروبک ریسپریشن بڑھ جاتا ہے
1: جی.
0: زمین کے اندر آٹومیٹک ہی ایک انڈر واٹر انڈر گراؤنڈ ریزروائر کا روپ لے لیتا ہے اور آپ کی فصل کو سوکھے سے لڑنے کی کھمتا اس پروڈکٹ سے آ جاتی ہے.
1: یعنی یہ تمام فائدے پہنچ سکتے ہیں نہ صرف کسان بلکہ دیکھیے جو ہماری مردا ہے جہاں سے ہم امید کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ منافع ہمیں ملے, تو یہ تمام فائدے ہو سکتے ہیں. کرشندرا جی آپ سے ہم جانا چاہیں گے, جیسے اگر ڈیکمپوزر کی فی الحال ہم یہاں بات کریں تو کسان جو ہیں بھاری سنکھیا میں پہنچتے بھی ہوں گے نہ صرف پرشکشن کے لیے, لیکن اس طرح کے جو اتپادم کا کیا ایک جو مولیہ ہے وہ نردھارت کیا گیا ہے؟
2: تو ایک پروموشن کے لیے کیا گیا تھا. ایکچولی اس کی بھی ایک اسٹوری تھی کہ پہلے ہم لوگ ڈاسٹی جیوی کھیتی کے اندر اس میں انوالو تھا, 25 سال سے ہم لوگ یہی کام کر رہے ہیں, لیکن جو یہ ہم لوگ بیکٹیریا یا فنگس بناتے تھے یہ خالی انڈسٹری کے لیے تھے
1: جی.
2: تو یہ نئی سرکار آنے کے بعد بولا گیا کہ بھائی آپ کسان کے لیے کیا کر رہے ہیں, تب اس کو ڈیولپ کیا گیا. ڈیولپ پہلے سے تھا لیکن اور اس کو ماڈیفائی کیا گیا. یہ دھیان رکھا گیا کہ اس کو جو ہے کسان اپنے آپ ملٹیپلائی کرے, یہی ایک ٹارگیٹ تھا. اور سب سے بڑی سمسیا تھی کہ اچھی کوالٹی کا ہمارے پاس مینیور نہیں ہے, جانور اتنے ہیں نہیں, جو ویسٹ ہے اس کو کیسے کیا جائے. تو اس کے لیے یہ بنایا گیا, تو دیکھا گیا کہ 30 دن کے اندر بنا کسی مینجمنٹ کے
1: جی
2: رانا جی جیسے بتا رہے ہیں تو انہوں نے بہت ایکسپیرینس کیا ہے اور مطلب انہوں نے بہت کام کیا, 6 مہینے سے یہ جڑے ہوئے ہیں لیکن جتنا کام انہوں نے گاؤں جا کے کیا ہے
1: جی
2: وہ مطلب ایک بہت ہی مطلب نوٹیسبل ہے
1: جی.
2: اور اس کے ساتھ جو ہماری آج کی ڈیٹ میں ہم نے قریب 30,000 بوٹل کسانوں کو دی ہے
1: جی.
2: ایک ہی بوٹل ہم ایک گاؤں میں دیتے ہیں تاکہ اس سے آپ کسان آس پاس لے لیں. خوبی اس میں یہ ہے کہ 20 روپے رکھا گیا
1: جی.
2: ایک بوٹل لینے کے بعد آپ سالوں سال اس کو یوز کیجیے
1: جی.
2: جیسے برسانہ میں ہے, گوشالہ ہے, وہاں پر انہوں نے دیا تو انہوں نے 1,000 ٹن اس سے ایک بوٹل سے بنا دیا
1: جی.
2: تو کاسٹ آپ کی اگر پر کے جی دیکھیں تو 0.001 پیسہ آتی ہے, تو کاسٹ کچھ نہیں ہے. اور اس سے کاسٹ آپ کا کسان جو تلنگانہ میں ہے اس کو اسپرے کرتا ہے
1: جی,
2: تو وہ کاٹن پہ اسپرے کر رہا ہے, سب ہم لوگ بولتے ہیں ڈیکمپوزر لیکن وہ اسپرے کر رہا ہے, اس کو فائدہ مل رہا ہے. اسی طرح سے آپ کے مہاراشٹر میں ہے, آل اوور انڈیا اس میں مطلب سارا اس میں جڑے ہوئے ہیں
1: جی.
2: اور ہر ایک کسان کو آج تک ابھی کوئی بھی نگیٹو رپورٹ نہیں آئی کہ اس سے کام نہیں کر رہا ہے.
1: بالکل.
2: اور کسان جڑتے چلے جا رہے ہیں اور ہم لوگ خالی ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ آپ اس کو اپنے آپ بنائیں, اپنے آپ کر دیں, یہی ایک ہمارا موٹو رہا ہے کہ آپ اس کو جتنا سے ادھک سے یوز کریں تو اس کے فائدے انیک ہیں. اور ایک بار جو کسان یوز کرے گا وہ اپنے آپ اس کو چھوڑے گا نہیں.
3: آپ سن رہے ہیں جھابوا کا پہلا سامدائک ریڈیو اسٹیشن ریڈیو ٹانٹیا بھیل 90.8 FM. آپڑو ریڈیو آپڑی باتیں.
1: جب بات آتی ہے تو یہاں پر منو جی آپ سے بھی ہم جاننا چاہیں گے, ہمارے جو کسان ہیں وہ کھیتی کرتے ہیں, جیسا آپ نے بتایا تھا پی جی سسٹم کے ذریعے بھی 1 سے 3 سال کا جو سمے ہے اس کے بعد ایک اچھا اتپاد ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہمارے پاس ہوتا ہے, لیکن کچھ کسان ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ جلدی سے جو ان کا اتپاد ہے وہ بازار میں جائے اس کے بعد ہی, کیونکہ ان کو جب تک کچھ آئے نہیں ملے گی وہ نیا کچھ شروع نہیں کر سکتے. تو ان کے لیے کس طرح کا پراودھان رکھا گیا ہے؟ جیسا آپ نے کہا کہ شروعات سے ہم کوشش کرتے ہیں جو ان کا اتپاد ہے اس کو ہم لیتے ہیں پھر بازار میں پہنچاتے ہیں.
4: پی جی ایس سسٹم کے اندر میں پہلے تو کسانوں کا کس طرح سے ہم لوگ انکم جنریٹ کریں
1: جی
4: ہم اس چرچا پہ تھوڑا آئے. سب سے پہلے ہم لوگ ابھی تک دیکھ رہے تھے کہ انپٹ کیسے آن فارم انپٹ پہ کم سے کم کاسٹ میں ان کے خرچے, کسان جب وہ کھیتی کر رہے ہیں تو ان کا کیسے کم سے کم لاگت میں کھیتی زیادہ سے زیادہ ہو
1: جی,
4: وہاں ان کا تھوڑا سا بچت
1: جی.
4: دوسرا جب ہم لوگ بازار تک منڈی تک ان کے پھلن کو لے کے آتے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں, جب کلسٹر جو ہم لوگ فارم کر رہے ہیں یہ کلسٹر کے اندر ہی پیکیجنگ کا پراودھان کر رہے ہیں
1: جی.
4: تو پیکیجنگ جب ہم ان سے کرواتے ہیں تو ہم اس پیکیجنگ کا لیبر کاسٹ بھی ہم کسانوں کو دیتے ہیں
1: جی,
4: وہ بھی ان کا ایک ایڈیشنل انکم,
1: وہ بھی آئے کا ذریعہ مان,
4: ایک آئے کا ذریعہ مان سکتے ہیں
1: جی.
4: اب جو کسان ہیں ان کے گھر میں اور بھی پریوار سدسیہ ہیں جو اس میں انوالو ہو جاتے ہیں پیکیجنگ کرنے کے لیے
1: جی, بالکل.
4: تو ہمارے طرف سے پیکیجنگ چلا جاتا ہے, ब्रांडिंग, जैसे अब हम लोग ब्रांडिंग कर रहे हैं पश्चिम बंगाल का जो प्रोडक्ट है प्रकृति
1: जी,
4: तो वो लोगो ब्रांड हम सब प्रकृति का किसानों के पास भेज दिए, वो वहीं पे अपना लोगो लगाए, स्टिकर लगाए, तो वहां से उनको एक इनकम जनरेट हुआ, प्लस उनके फलन का जो दाम है वो उनको उचित दाम मिला
1: जी।
4: तो बाजारी का बाजार तक जाते जाते हम जब किसान से परचेस करें तो किसानों को सबसे पहले इनपुट में कम लगा, लागत
1: जी, लागत कम हो जाती,
4: लागत कम लगा, उससे उनकी बचत हुई। दूसरा उनको पैकेजिंग के जरिए जो एडिशनल उनको जो बेनिफिट है जो हम लोग उनको प्रोवाइड कर रहे हैं वहां से उनको इनकम जनरेट हुआ
1: बिल्कुल।
4: तीसरा जो उनके फलन है उसको हम लोग जब उचित दाम दे रहे हैं जो नॉर्मल उत्पाद से, नॉर्मल जब केमिकल में खेती करते उससे थोड़ा ज्यादा ही है उनको परसेंटेज
1: जी,
4: तो वहां इनको बेनिफिट है। तो कहीं ना कहीं तीन सर्कल्स है, तीन तरीके से उनको पैसा मिलता है
1: जी।
4: चौथा जब हम लोग आते हैं प्रोसेसिंग पे, अभी क्लस्टर में एक प्रोसेसिंग प्लांट हम लोग लगा दिए तो प्रोसेसिंग प्लांट भी वहीं चली, वहां से भी जो प्रोसेसिंग प्लांट चलाने के लिए हमें जो लेबर चाहिए
1: जी,
4: उसमें कुछ वहां इनको एडिशनल बेनिफिट
1: बिल्कुल।
4: तो इस तरह का ये जो एक समीकरण है पूरा का पूरा कहीं ना कहीं किसान के इनकम को
1: आय का जरिया, आय का जरिया बन सकता है
4: आने वाला दिन में। ये पूरा जो प्रकल्प है ये बहुत ही सुंदर तरीके से इस प्रकल्प को किया गया
1: जी।
4: यहाँ पे हम लोग एक गांव में सभी कुछ पूरे सेंटर को देख रहे हैं आने वाले दिन में
1: जी,
4: पैकेजिंग सेंटर, प्रोसेसिंग सेंटर, और वहीं हमारा लॉजिस्टिक गाड़ी चली गई और हम लोग लेके। लेकिन अब जैसे हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट है, अब उसका डिमांड, कोई सब्जी अगर मान लीजिए पश्चिम बंगाल में है और उसका डिमांड आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में सूखा पड़ा
1: जी,
4: तो हम सब्जी अगर बंगाल से महाराष्ट्र में दे सकें और सूखा पड़ गया, कभी कभार होता ही है, तो ये सब्जी को कैसे लेके कैरी करें ट्रेन में या रोड में? अगर ट्रेन में हमें रेफ्रिजरेटेड जगह मिलता है तो हम लोग उसमें कैरी करें तो इसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा रहेगी
1: जी,
4: तो जितना जल्दी जल्दी पहुंचेगा
1: उत्पाद है वो खराब नहीं होगा,
4: खराब नहीं।
1: लेकिन अगर उत्पादों की हम बात करते हैं मनु जी, कौन कौन से उत्पाद हैं जो तैयार किए जा रहे हैं या क्या क्या विकल्प हम ये कह सकते हैं किसानों के सामने है अगर वो इसमें अपने उत्पाद तैयार करना चाहते हैं तो?
4: देखिये उत्पाद में तो मैं अपने पश्चिम बंगाल क्षेत्र की बात कर रहा हूँ और जो हम लोग अपने सेक्टर में काम कर रहे हैं उस सेक्टर पे ही बात करते हैं
1: जी।
4: तो जहाँ सबसे ज्यादा राइस का प्रोडक्शन है और सब्जियों का प्रोडक्शन है तो इसी का सबसे ज्यादा उत्पाद होता है। जो किसान जो उत्पाद कर रहे हैं जिसमें वो बेहतर है उसी वही वो कर रहे हैं। हम लोग ये नहीं बोलते कुछ अलग करो
1: जी,
4: क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी वही खेती करते आए हैं
1: बिल्कुल,
4: और जिसमें वो एक्सपर्ट है तो वही वो कर पाए जो वो करते हैं, क्योंकि उनको क्रॉपिंग पैटर्न पता है उस प्रोडक्ट के बारे में, और हमें बाजार में वही प्रोडक्ट को भेजना है जो वो खेती कर रहे हैं
1: जी।
4: बस उसमें बेहतर इनपुट दे, जैविक इनपुट दे,
1: कैसे उसकी जो गुणवत्ता है उसको और बढ़ाया जाए, मूल्य संवर्धन जो है उसमें किया जा सके। कृष्ण चंद्र जी आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसा कि यहाँ मनु जी ने हमें बताया और हम ये भी मान सकते हैं कि वो किसान जो मतलब ग्रामीण हम कह सकते हैं उनको जिनके पास शायद भूमि नहीं है कृषि के लिए, वो भी अगर इस तरह की इकाइयां लगती हैं प्रसंस्करण की इकाई है इसके जरिए उनको भी आय का जरिया मिल सकता है?
2: बिल्कुल मिल रहा है, और जैसा इन्होंने बताया वेस्ट बंगाल इस तरह से आपके साउथ में जाए, केरला है, तमिलनाडु है, वहां पर जो स्पाइसेस वगैरह हो रहा है वहां का जो प्रोडक्ट है, नॉर्थ ईस्ट में जो प्रोडक्ट है वो उन्होंने इंटरलिंक कर दिया है
1: जी।
2: तो ये जितने हमारे रीजनल काउंसिल्स हैं एक दूसरे से जुड़ गए, तो जो इनके पास डिमांड है इनके पास से दूसरे से दूसरे का इनके पास आता है, तो एक इस तरह से आदान प्रदान चालू हुआ है। तो अभी तक क्या है कि उत्पाद नहीं था, अब ये इस साल से अभी नवम्बर से इन्होंने चालू किया, तो आप देखेंगे अक्रॉस द इंडिया हर प्रोडक्ट आपको मिलेगा। स्पाइसेस वहां हो रहा है तो वहां से यहाँ आएगा, तो आपको वहां केरला का भी मटेरियल दिखाई देगा, तमिलनाडु भी दिखाई देगा, नॉर्थ ईस्ट का भी मटेरियल देगा, तो सारे के सारे एक साथ आपको हर शॉप पे दिखाई देंगे।
1: बिल्कुल,
2: तो ये ऑलरेडी चालू हो चुका है और वो बहुत जल्दी आपको मार्केट में इसके उपलब्धि
1: उपलब्धता हो सकेगी। साथ साथ यहाँ राणा जी आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसे कि आप जैविक खेती कर रहे हैं, उत्पाद आपने बताया, डिकम्पोजर की भी आपने बात की, इससे क्या फायदे हुए? और लेकिन अगर हम बात करते हैं आने वाले समय में, अगर एक किसान की हम बात करते हैं किस तरह का बदलाव वो चाहता है कि जैविक खेती जो है वो तो कर रहे हैं लेकिन बदलाव कैसा है जिससे और आसानी उसको हो सके और ज्यादा से ज्यादा किसान जैविक खेती करें और उसके बाद अपने उत्पाद को बेच सकें?
0: आज की तारीख में मुकुल जी किसान के सामने एक समस्या रहती है कि उसको आमदनी का जरिया उसका घटता जा रहा है
1: जी,
0: और उसके खर्चे खेती पर बढ़ते जा रहे हैं। तो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र के द्वारा जो हमको खेती से संबंधित जो भी वेस्ट डिकम्पोजर है और दूसरे सॉइल हेल्थ रिवाइवल, और डॉक्टर साहब से आप बीच में पूछ भी सकते हैं कि और भी इस पर ये काम कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को लेकर के जब हम खेती करना शुरू करते हैं तो हमारी खेती में जो फर्टिलाइजर का और पेस्टिसाइड का और दूसरे चीजों का खर्चा है ये ऑलमोस्ट जीरो पर आ जाता है
1: जी।
0: तो ये हमारी एक बचत हो जाती है
1: बिल्कुल।
0: दूसरी चीज किसान सोचता है कि मेरा प्रोडक्शन घट जाएगा। मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम से जब हम खेती कर रहे हैं हम देखते हैं कि कहीं पर भी प्रोडक्शन घटता नहीं है
1: जी,
0: कहीं पर भी प्रोडक्शन नहीं घटता है, और बल्कि और ज्यादा बड़ी बात नहीं होती है कहने के लिए, कई गुना प्रोडक्शन उसका बढ़ रहा है
1: जी। ये आपका निजी अनुभव है यानी?
0: मेरा अपना अनुभव है। दूसरे, जो भी प्रोडक्शन आ रहा है वो ऑर्गेनिक आ रहा है, और समाज को भी चाहिए, जो लोग मेट्रो सिटीज में रहते हैं उनको कंज्यूमर के रूप में ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिल जाता है, किसान को उसका अच्छा दाम मिल जाएगा, तो इससे अच्छा, ये सरकार की बहुत अच्छी योजना है परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत जो काम चल रहा है
1: जी।
0: इसमें आजकल आप देखते हो कि पराली को जलाना बहुत एक समस्या के रूप में खड़ा हो रहा है
1: जी।
0: तो ये जो वेस्ट डिकम्पोजर है
1: जी,
0: अपने आप में जो भी आपका रेसिड्यू बचता है उसको बहुत 15-20 दिन में ही गला करके उसको मैन्योर में कन्वर्ट कर देता है,
1: फसल अवशेष जो है उसके लिए भी ये काफी लाभदायक
0: है। जी हाँ, उसको कन्वर्ट कर देता है
1: जी।
0: और जो आप बाहर से फर्टिलाइजर खरीदते हो उस सब की पूर्ति इसी के अंदर हो जाती है, जमीन सॉफ्ट हो जाती है, आपको प्रोडक्शन अच्छा आता है
1: जी।
0: आलू की फसल में देखें कि भाई पोटाश डाल दो और दूसरी चीजें डाल दो, या इस पे अर्ली ब्लाइट आएगा, लेट ब्लाइट आएगा, कई बार किसान इन चीजों को समझ नहीं पाता है। ये सिंपल फंडा है, फसल अगर पानी देना है तो इसको एक एकड़ में 200 लीटर का ड्रम बनता है, उसे पानी के साथ चलाइए। दूसरे, आपको स्प्रे करना है तो 10% 20% से लेकर के इसका स्प्रे कीजिए
1: जी।
0: तीसरे, आपका जो काव डंग्स है, दूसरा वेस्ट है, उसका मैन्यूर बनाना है तो 40 दिन में पूरी तरह से इसको मैन्यूर बना के कन्वर्ट करके आपके हाथ में देता है, और आपकी सारी समस्याओं का समाधान एकमात्र इस बोतल से होता है
1: जी।
0: और आप इससे कितना ही आप खेती कर सकते हो, वो 1000 बीघे तक खेती आप कर सकते हो।
1: बिल्कुल, ये तमाम फायदे इसके हम मान सकते हैं, और इसका लाभ देखिए जो किसान है उनको सीधे तौर पर मिल भी रहा है। डॉक्टर कृष्णचंद्र, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि अगर हम बात करते हैं बदलाव की, तो आने वाले समय की अगर बात की जाए तो क्या स्थिति हमें नजर आएगी जैविक खेती की, और उसके बाद जैविक बाजार की भी हम बात करते हैं, सिक्किम के बाद और कितने राज्य हैं जो इस श्रेणी में आने वाले हैं?
2: देखिए, इसमें मूवमेंट तो हर जगह, सारे स्टेट्स ने कुछ न कुछ ऑर्गेनिक को शुरू कर दिया
1: जी।
2: तालुकाज हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, वो कन्वर्ट होने शुरू हो गए हैं, और उन्होंने इस पे काम चालू हो गया। और जहाँ तक ये राणा जी बता रहे हैं, तो ये आपको इस समय शायद देखने में लग रहा हो कि एक बोतल में क्या क्या गुण है
1: जी।
2: तो ये बिल्कुल जो बोल रहे हैं, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बोल रहे हैं
1: जी।
2: और इसमें ऐड करना चाहेंगे कि कोई भी किसान, कोई भी साइंटिस्ट इसको लेके यूज करके देख ले
1: जी,
2: उसको रिजल्ट बहुत मिलेगा। और इसके साथ साथ जो जिन्होंने बताया ना सॉइल रिवाइवल की बात, तो इसके ऊपर उन्होंने काम किया है। तो मेन क्या समस्या आपको मालूम है कि इंटरनेशनली भी, अपना नेशनली भी जमीन के लिए काफी काम चल रहा है, जमीन हमारी खराब हो चुकी है, तो उसके लिए उन्होंने रिवाइवल बनाया। तो रिवाइवल इसने नाम रखा है कि जमीन जो खराब हो गई है, अगर आप 6 महीने उसको आप पानी के साथ डालते रहें, 6 महीने बाद आपकी पूरी जमीन चेंज हो जाएगी। अब ये मतलब अभी आपको लग रहा है थ्योरेटिकल, लेकिन इसको प्रैक्टिकल हम दिखाएंगे
1: जी।
2: आपके
1: योगात्मक रूप से अगर हम माने तो हो सकता है,
2: दिखाएंगे या है
1: जी।
2: और वो हम लोग चालू कर दिए काम, और कुछ किसानों के खेत में ऑलरेडी हमने किया हुआ, पूरी जमीन चेंज हो गई। इसके साथ साथ हम और एक प्रोडक्ट ला रहे हैं जो कि प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है, उसको जब स्प्रे करेंगे तो प्लांट की सारी जो न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी हो जाएगी। ये सब आने वाले, इनमें सब में खूबी यही है कि ये सब चीजें आप एक बॉटल लेंगे, फिर आप सालों साल उसको आप बनाते रहिए, आप 10,000 लीटर, 20,000 लीटर, 1,000, 1,00,000 लीटर तक बनाइए, दोबारा आपको पास, हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, आप खुद प्रोडक्शन कीजिए। तो टेक्निक ऐसी डेवलप की जाएगी कि किसान अपने आप बनाए। तो ये आने वाले दिनों में एक रिवोल्यूशन होगा, और ये कहना मतलब हम अत्युक्ति नहीं समझते हैं कि किसानों को जो आगे बेनिफिट मिलने वाला है, एक तो ये इनपुट के जरिए, दूसरा मार्केट के जरिए, और तीसरा जो उनको आगे इनकम होने वाली, वो मुझे लगता है कि जो हमारे प्रधानमंत्री का विजन है 2022 तक डबल की है, तो हमें लगता है 3 गुने 4 गुने हम लोग जैविक के जरिए कर सकते हैं
1: जी।
2: और उसका लॉजिक भी है, क्योंकि आपको मालूम है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया हमारी जो है 60% जो लैंड है
1: जी,
2: स्ट्रेस में है आपकी रेनफेड एरिया। तो रेनफेड एरिया अगर हम देखते हैं तो 80 मिलियन हेक्टेयर लैंड हमारी इसके अंदर में है, जहाँ की उत्पादन आपका 30% कम है। अगर आप जैविक अडॉप्ट करते हैं तो 22% आपका उत्पादन बढ़ जाता है, तो उससे आपकी जो फूड सिक्योरिटी की बात होती है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी।
1: बिल्कुल, खाद्य सुरक्षा की बात जो है उसकी भी सार्थकता
2: और क्वालिटी, आप जो लेते हैं इतनी बड़ी थाली ले रहे हैं, उसके अंदर सारे के सारे आपके केमिकल्स पड़े हुए हैं, आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू कुछ नहीं है। जब आप ऑर्गेनिक लेंगे, छोटी थाली लेंगे, लेकिन उसमें हर चीज आपके है, कार्बोहाइड्रेट एलिमेंट सब कुछ आपको प्रेजेंट है, जो आपकी बॉडी के लिए सही है। और ये भी तय है कि अगर आप जैविक उत्पाद को खाली, प्योर उत्पाद खाएं, छह महीने आप अपने बॉडी में चेंज देखेंगे
1: जी।
2: जो आपको शुगर की बीमारी हो रही है, बीपी हाई है, लो है, आपका जो तरह तरह की बीमारियां हो रही

0: वहाँ पर
1: यानी बीज उत्पादन भी
0: बीज उत्पादन मुनाफा हो रहा है
1: जी।
0: और जिसके पास जानवर नहीं है तो जानवर जिसके पास नहीं तो उसको भी डिकम्पोज करके वो अपना मटेरियल आसपास में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये सब धीरे धीरे धीरे धीरे उद्योगीकरण की तरफ आपका अग्रसर हो रहा है, कृषि जो है आपकी पूरी साइड जा रही है,
1: बिल्कुल एक पूरी कड़ी है। लेकिन जो किसान इसमें जुड़ना चाहते हैं यानी जो जानना चाहते हैं कि अगर वो बाजार में आना चाहें तो कैसे वो इस बाजार तक पहुंच पाएंगे?
0: बाजार के लिए हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया देखिए हमने करीब 250 रीजनल काउंसिल गवर्नमेंट को बना रखा है जो कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सारे हमारे इसमें जुड़े हुए हैं। साथ में हमारे ट्रेडर्स जुड़े हुए हैं, प्राइवेट्स वाले जुड़े हुए हैं, करीब 44 ट्रेडर्स हैं ऑल ओवर इंडिया। तो गवर्नमेंट से भी आप हेल्प ले सकते हैं, ट्रेडर्स से भी ले सकते हैं। ट्रेडर्स से लेने में फायदा ये है कि आपको डायरेक्ट मार्केट मिल जाती है, ये लोग एश्योर कर देते हैं कि डायरेक्ट मार्केट है और आपको बाकी जो सर्विसेज हैं इनके थ्रू मिल सकती है। तो हर एक स्टेट में आपके पास रीजनल काउंसिल जुड़ा हुआ है। पोर्टल पे जाइए, आपका pgsindia.gov.in, उसमें आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी,
1: इस पर सारी जानकारी जो है
0: सारी जानकारी है और उसको उनको आप किसी से कांटेक्ट कर सकते हैं, सभी आपको प्रोवाइड करेंगे।
1: बिल्कुल तमाम जानकारी देखिए आपको यहाँ पर मिल जाएगी और कोशिश यही कि हमारे ज्यादा से ज्यादा जो किसान है वो इससे जुड़ सकें। साथ ही बाजार की जब बात कही जाती है तो ये जरूरी हो जाता है किसान उस बाजार को समझे, साथ ही साथ उस बाजार के पीछे जो अर्थशास्त्र यानी कैसे उनको मुनाफा मिल सकता है उसकी भी जानकारी किसानों तक पहुंचाई जा सके। और वही जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से लगातार हम भी आप तक पहुंचा रहे हैं और आज भी हम उम्मीद यही करते हैं कि जो हमारे किसान हैं उन्होंने इस बात को और बेहतर ढंग से जाना होगा कि अगर आप जैविक खेती कर रहे हैं उससे उत्पाद जो आपका तैयार होता है कैसे आप उसको बाजार में पहुंचाएंगे। और यही जानकारी जो हमारे आज विशेषज्ञ स्टूडियो में आए मेहमान हमारे आप तीनों ने दी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ जब बात कही जाती है कि जैविक बाजार और संभावनाएं अपार, यानी एक ऐसा बाजार जिसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं, मुनाफा है, लाभ है सिर्फ किसानों को, और वही जानकारी आज आपने यहां पर इस कार्यक्रम के जरिए उस जानकारी को जाना। लेकिन सिर्फ जानने से काम नहीं होगा, आपको थोड़ा सा और कदम जो है एक कदम आगे बढ़ाना होगा और उस जो किसान हमारे जो जैविक खेती कर रहे हैं उनकी श्रेणी में आना होगा जिससे ना सिर्फ हमारे किसानों की जो आय है वो दोगुनी हो सके, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो सकती है, दोगुनी हमें करनी होगी। तो ये एक विकल्प है, साथ ही विकल्प है हमारी जो मृदा है उसके स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए, यानी हमारी जो मृदा है उसकी सेहत का सुधार हम करेंगे, किसानों की आय भी होगी और उसके साथ साथ हमारी सेहत का भी यानी हमारे स्वास्थ्य की भी रक्षा हो सकेगी अगर हम जैविक उत्पाद का सेवन करते हैं।
2: जी हाँ किसान साथियों, यहाँ पर हमें रुख करने की आवश्यकता है जैविक कृषि की ओर। किसान साथियों, आपने आज के इस कार्यक्रम में विस्तार से जाना कैसे और किसे कहते हैं जैविक खेती। किसान साथियों, जैविक खेती के माध्यम से ना केवल हम हमारी मृदा का स्वास्थ्य सुधारते हैं बल्कि हमारा जो स्वास्थ्य है उन्हें भी हम सुधारते हैं। साथ ही जो जैविक कृषि के जो उत्पाद है उसे हमें अधिक से अधिक लाभ मिल सकता है, इससे हमारे किसान भाइयों की जो आमदनी है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। तो किसान साथियों, आशा करते हैं आज के इस कार्यक्रम में आपने बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को लिया होगा। इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांटिया भील 90.8 FM के साथ।
3: शहरों की चमक धमक से दूर, जहां सुबह सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ती है, जहां चिड़ियों की चहचहाट आलाराम का काम करती है, वहीं बसा है मेरा गांव। यह सिर्फ कुछ घरों और गलियों का नाम नहीं है, यह हमारी पहचान है, हमारी जड़ें हैं, हमारी संस्कृति है, यही है मेरा गांव, मेरी धरोहर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो साथी आरजे प्रवीण और आप सुन रहे हैं रेडियो टंटिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर योजना के विषय में। मेरा गांव मेरी धरोहर MGMD भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। इसका उद्देश्य देश के गांवों की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं, रीति रिवाजों, कला और इतिहास का डिजिटल दस्तावेजीकरण और मानचित्रण करना है। देश के सभी गांवों की सांस्कृतिक पहचान, लोक कला और पारंपरिक ज्ञान का एक विस्तृत डिजिटल डेटाबेस तैयार कर ग्रामीण क्षेत्रों की अमूर्त सांस्कृतिक संपत्तियों और ऐतिहासिक धरोहरों को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना तथा सांस्कृतिक पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना है। हमारे गांव की मिट्टी में हमारे बुजुर्गों की मेहनत की खुशबू है। इन गलियों में हमारे बचपन

0: की यादें हैं, गांव की चौपालों में पीढ़ियों की कहानियां हैं और इन खेतों में हमारे अन्नदाता का पसीना है। हमारी लोक परंपराएं, हमारे गीत संगीत, हमारे त्यौहार और रीति रिवाज, यह केवल बीते समय की निशानियां नहीं हैं, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अनमोल विरासत है। हमारे गांव की हर पुरानी दीवार एक कहानी कहती है, हर तालाब, हर कुआं, हर पेड़ और हर ऐतिहासिक स्थान अपने भीतर इतिहास समेटे हुए। हमारी संस्कृति, हमारी चौपाल की कहानियां, हमारे त्योहारों की रौनक, हमारे लोकगीतों की मिठास और हमारे बुजुर्गों का पारंपरिक ज्ञान, यही तो हमारी असली विरासत है। इन्हें बचाना केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं, यह हमारा सौभाग्य है। तो आइए हम भी अपने गांव की धरोहर को सुरक्षित रखने में सहयोग करें और इस सुंदर पहल का हिस्सा बनें।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: कुछ कहानियां किताबों में लिखी जाती हैं और कुछ लोगों के चेहरों, उनकी मुस्कुराहटों और उनके संघर्षों में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं जिंदगी अनप्लग्ड ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। दोस्तों, ये वो महफिल है जहां गीत सिर्फ बजते नहीं, जिंदगी के पन्ने खुलते हैं। यहां हम उन लोगों से मिलते हैं जिन्होंने सपने सिर्फ देखे नहीं, ठोकरें खाई, हौसले संभाले और अपनी एक अलग पहचान बनाई। तो आइए आज फिर एक जिंदगी से मिलते हैं, गुफ्तगू करते हैं, एक कहानी सुनते हैं और गीतों के साथ महसूस करते हैं जिंदगी अनप्लग्ड। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं जिंदगी अनप्लग्ड। कुछ लोग अपनी जिंदगी को प्लान करते हैं और कुछ लोग जिंदगी के साथ बहते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। आज की हमारी मेहमान उन्हीं लोगों में से एक हैं, एक न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामर, ऑथर, पोएट, पॉडकास्टर, स्टेज परफॉर्मर और सबसे बढ़कर एक ऐसी इंसान जो मानती हैं कि सबसे पहले इंसान बनना जरूरी है, बाकी पहचान तो बन ही जाती है। 21 इयर्स का सफर, अनेक अनुभव। उनकी कहानी सिर्फ करियर की कहानी नहीं है, बल्कि खुद को समझने, बदलने और हर बार रीइन्वेंट करने की कहानी है। तो आइए बहुत प्यार के साथ स्वागत करते हैं ईशा जैन जी का। तो ईशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के जिंदगी अनप्लग प्रोग्राम में। कैसा महसूस कर रहे हैं आप?
1: बहुत अच्छा। बहुत समय बाद किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़ने का मौका मिला है जहाँ पे खुल के बोलने की आजादी और खुद को एक्सप्रेस करने की आजादी मिली है
0: जी।
1: तो अच्छा लग रहा है।
0: बिल्कुल, हम भी बहुत एक्साइटेड हैं, और क्योंकि हम जानते हैं कि आप खुद एक पॉडकास्टर रहे हैं, स्टेज परफॉर्मर रहे हैं, तो आई कांट वेट टू स्टार्ट दिस एपिसोड। मैम, सबसे पहले हम आपको बचपन में ले जाएंगे। आपने बताया कि आपके जीवन में, प्रोफेशनल सफर में, बचपन में ऐसे बहुत सारे मोड़ आए जहां पे आपको अगर डायरेक्शन के लिए किसी को देखना था तो आपके पास आपके पेरेंट्स थे, वो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थे। तो जब आप कभी डायरेक्शनलेस फील करते हो या कभी ऐसी चीजें हुई लाइफ में जहां आपको लगा कि अब कहां जाऊं, तो बियॉन्ड योर पेरेंट्स आप किस चीज पे डिपेंड करते हो? क्योंकि आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन हो, तो क्या आप प्योरली इंट्यूशन से चलते हो या लॉजिक से चलते हो? हाउ डू यू डिसाइड योर डायरेक्शंस इन लाइफ इफ नॉट फॉर योर पेरेंट्स? आप क्या करते हो?
1: मैं बस साधारण शब्दों में ये कहूंगी कि जो जिंदगी में सिखाया, जैसे जैसे आगे बढ़ते गए और जैसे जैसे जिंदगी में जो जो सिखाया उसको याद किया कि तब क्या किया था, कैसा महसूस हुआ था। अब एक होता है, हम एक सोचते हैं ना कि हमने अगर कुछ चीज जीती है तो हम उसको किस तरीके से, हमने उसमें उस समय पे हमारी कंडीशन क्या थी, हमारा माइंडसेट क्या था। तो अगर तब वो चीज हो सकती है तो अब कोई नई चीज हमें सीखने को मिल रही है, नया एक कुछ नया एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, क्योंकि मेरे पापा ने एक चीज कही थी, दो चीज, कि तुम अपनी लाइफ में हमेशा एक लर्नर रहोगी तो उस चीज को कभी मत छोड़ना, और अपनी लाइफ में तुम अपने आप को सबसे ज्यादा वैल्यू करोगे तो उसको मत छोड़ना। तो ये दो बातें हैं, और अपना इंट्यूशन और जो चीज हो रही है उसके पीछे लॉजिक को खूब अच्छे से ऑब्जर्व करके और समझ के मैं आगे बढ़ती हूँ। ये मेरा तरीका है।
0: राइट। कभी कोई ऐसा वाक्या अगर जहन में आ रहा हो कि आप बहुत स्टफ फील कर रहे हो, उस टाइम सच में आपने अपने लॉजिक और अपनी इंट्यूटिव एनर्जीज को टैप किया एंड कुछ डिसाइड किया? कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट या कोई ऐसा इंस्टेंस?
1: 2017 में ऐसा हुआ था कि 2016 में मैं जब एक योगा ट्रेनर नई नई बनी थी, तो
0: जी
1: उस समय मैं बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रही थी कुछ महीनों के बाद, क्योंकि मुझे बाहर ऋषिकेश जाना था, लेकिन कभी कुछ हो रहा था, कभी बजट नहीं बैठ रहा, कभी कुछ कभी कुछ। तो मेरी मम्मी ने मुझे आके एक ही चीज बोली कि तू विपश्यना चली जा, क्योंकि वो एक
0: वाह
1: ऐसी जगह है जहाँ पे तुझे सबसे ज्यादा सुकून मिलता है। और 2017 जनवरी में मैंने मेरा जो विपश्यना का कोर्स किया, मतलब मेरा सेकंड कोर्स था वो 10 दिन का, मैंने वो किया। और उसको वहां से आने के मतलब शायद 1-1.5 महीने के अंदर अंदर मैंने अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट कर लिया था, कुछ महीनों के लिए ही सही, लेकिन वहां जो मेरे लिए एक जो हर्डल आ रहे थे या रुकावटें जो कह सकते हैं कि भाई फाइनेंशियली मेरा बैकअप नहीं मिल रहा या मुझे समझ नहीं आ रहा मैं नेक्स्ट स्टेप कैसे लूँ, तो उस बिजनेस में छोटे से थोड़े समय के उस परफ्यूम के बिजनेस में मुझे एक नया रास्ता दिखा दिया। और 2017 सितंबर में मैं ऋषिकेश नगर गई थी, जहाँ पे मैं 4 महीने के लिए वहां पे थी, मेरी योगा प्रैक्टिस कर रही थी, मेरा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स कर रही थी, मतलब मैंने 2-3 टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स करी।
0: वाह
1: तो ये एक इंसिडेंट है जो मैंने मेरी लाइफ में जिया।
0: अमेजिंग
1: मेरी मम्मी अगेन, जैसा मैंने कहा मेरे मम्मी पापा, तो अगेन मेरी माँ मेरा पिलर बनी थी ओवरऑल एक्सपीरियंस में, इंसिडेंट में, एंड आई ऑलवेज हैव दैट। मेरे हमेशा मन में, मन से एक दुआ निकलती है उनके लिए, एक शुक्रिया निकलता है उनके लिए। ये
0: बिल्कुल बिल्कुल, आई कैन इमेजिन मदर्स सच में पिलर्स होते हैं. एंड जो आपने इंस्टेंस शेयर किया उससे हम ये समझते हैं कि कई बार पॉज लेना कितना जरूरी है. जब नॉइज कट आउट होती है आपके जीवन से, तब आपको क्लैरिटी अपने आप मिल जाती है और रास्ते अपने आप बनते जाते हैं. तो बहुत ही खूबसूरत आपने वाक्य हमारे साथ साझा किया ईशा मैम. आगे चलते हैं इसी से आपके करियर की तरफ. जैसे आपने बताया कि 21 ईयर्स का लॉन्ग करियर स्पैन रहा है आपका, एंड 13 न्यू रोल्स आपने अलग अलग निभाए इन 21 ईयर्स के स्पैन में. तो अगर ये बहुत आई थिंक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, मेरे को लगा आपका यू नो इंट्रोडक्शन पढ़ के और आपके बारे में पढ़ के कि इसको अगर मूवीज से जोड़ा जाए, अगर कोई टाइटल लिखना हो, एक मूवी पोस्टर लिखना हो, आपको सीवी नहीं बनाना हो, एक प्रोफेशनल सीवी नहीं बट एक मूवी पोस्टर पर लिखना हो इस सफर को, तो वो क्या होगा और क्यों होगा?
1: उसके लिए तो मैं बस बहुत एक मन में जो इम्प्रोम्प्टू टाइटल जो आ रहा है, मैं तो यही बोलूंगी मेरी जिंदगी चारों दिशाओं में,
0: वाह
1: क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में हर हर कोई इंसान करता है, अपने अलग अलग जो एक्सपीरियंस होता है वो हर कोई जीता है, लेकिन मैंने मेरी जिंदगी में हर दिशा में इन 21 सालों में इतना कुछ एक्सपीरियंस करा है। और आपने मेरा पूरा वो चार्ट तो पढ़ा ही है
0: जी
1: जिसमें
0: बिल्कुल
1: मैंने इतनी इतने सारे मैंने अलग अलग अलग अलग जॉनर्स में काम किया है। एकदम मतलब अपने आप में, कोई अगर डांस स्टेज होस्टिंग से है तो मैं कहीं टीचर भी रही हूँ, रिक्रूटमेंट भी करा है, ट्रैवल टूरिज्म एक अलग रहा है, सोलो ट्रैवलर रही हूँ, ब्लॉगर, राइटर, मतलब हर एक दिशा को नापा है एक तरीके से। और हर जगह हर इंसान को, हर किसी के एक थॉट प्रोसेस को जिया है, जिंदगी को देखा है, लोगों की कहानियों को सुना है, तो हम बस सीखते ही तो है ना पूरी जिंदगी में। तो मेरी जिंदगी चारों दिशाओं में इससे ज्यादा इस
0: वाह
1: मोमेंट में मेरे को कुछ और समझ नहीं आ रहा टाइटल, बट हाँ ये तो जरूर है।
0: वेरी इंटरेस्टिंग. एंड सच में आपके जीवन में कई पड़ाव रहे और उन सभी पड़ावों से आपको जीवन का बहुत निचोड़ मिला होगा. जीवन सच में जिया गया ऐसा लगता है आपकी जर्नी को पढ़कर सुनकर. तो इसी यू नो खूबसूरत मोड़ पे, इसी प्यारी बात पे हम एक गीत सुनते हैं और मैं चाहूंगी कि आप अपनी पसंद का कोई सा गीत बताएं तो हम उसे ही प्ले करेंगे आज.
1: मेरी पसंद का गीत, मैं ये गाना बहुत गाती हूँ, जो परिंदा मूवी का है, अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित का, तो वो गाना मेरे तरीके मतलब एक तरीके से बहुत करीब है, लेकिन अभी अगर आप अगर अपने दर्शकों को सुनाना चाहते हैं ना, तो ये गाना बहुत बहुत ज्यादा मैंने मेरे लिए लोगों ने या मैंने महसूस करा इस गाने को, तो क्यों मैं ये गाना बिल्कुल सुनना चाहूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं इस गाने को गाती भी हूँ, इसे रिलेट भी करती हूँ और शायद जिंदगी भी मेरे लिए गाना गाती हूँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये गाना सच में एक जिंदगी का फलसफे जैसा है और बहुत ही खूबसूरत गीत है, बहुत खूबसूरत फिल्म से है ये गीत। तो चलिए सुनते हैं हमारा आज का पहला गीत ईशा जी की पसंद से, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूं मैं, फिल्म मासूम।

0: क्या खूबसूरत गीत है ये। थैंक यू सो मच ईशा मैम फॉर दिस सॉन्ग। आगे चलते हैं। आपने बताया कि आप इंट्रोवर्टेड भी फील करते हैं और एक्सट्रोवर्टेड भी फील करते हैं। आप जब अपने फ्रेंड सर्कल में होते हैं, अपने जोन में होते हैं, तो आप बिल्कुल एक्सट्रोवर्टेड होते हैं, अदरवाइज आप एक इंट्रोवर्ट हैं, तो बेसिकली एक एम्बीवर्ट हैं। तो कौन से ऐसे मोमेंट्स होते हैं लाइफ के जब आप अपने इस इस पुश एंड पुल से जो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट एग्जिस्ट करते हैं, कब आप उनसे मिलते हैं, कब इन दोनों में आपस में लड़ाई होती है, क्या ये पुश एंड पुल की जर्नी होती है? ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी ऐसी ही हूँ। तो मैं जानना चाहूंगी आप कैसे इससे डील करते हैं, इसमें बैलेंस पाते हैं और कभी कभी कंफ्यूज महसूस करते हैं अपने बारे में।
1: मैं कहूंगी कि मैं बहुत कंफ्यूज पहले बहुत रहती थी, पर जिंदगी के साथ समय के साथ जो कुछ फलसफों को जिया है तो सीखा ये है कि अब मैं पहले ना खामोशी से अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करती हूँ। सारे इमोशंस मुझ में भी हैं, गुस्सा मुझे भी आता है, इरिटेशन मुझे भी होती है, बुरा मुझे भी लगता है, रोना मुझे भी आता है, हर तरीके से। लेकिन पहले मैं चुप सबको देखती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ, और फिर जहाँ लगता है कि वाकई में यहाँ अपनी बात को रखना चाहिए उस बात को मैं वहाँ रखती हूँ। ये तो हो गई बाहरी दुनिया के लिए, लेकिन जब अपनों पे आती है कोई बात तो कई बार ना कंफ्यूजन बहुत हो जाता है। ऐसा होता है कि क्या करा जाए क्या करा नहीं जाए, क्योंकि किसी को बस जाके कुछ कह देना मतलब नहीं है। उस बात के पीछे वाकई में उसका कुछ मतलब हो, उसका कोई लॉजिक बने ना, तो वो बात एक इंसान को शायद आज नहीं तो आने वाले पीछे वाकई में उसका कुछ मतलब हो, उसका कोई लॉजिक बने ना, तो वो बात एक इंसान को शायद आज नहीं तो आने वाले पल में जरूर समझ आएगी। तो बस उस समय पे मैं अपने आप पहले ऑब्जर्व करती हूँ, और अगर मन में लगता है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ तो खुद को चुप कर लेती हूँ, बस खामोशी से उस चीज के हर एक तार को समझने की कोशिश करती हूँ, और उसके बाद फिर उस बात के ऊपर बात रखती हूँ। तो मेरा तरीका यही है।
0: बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही नुआंस्ड आंसर, और सच में एक ऑब्जर्वर की सोच है ये, तो बहुत ही खूबसूरत मैम। आगे चलते हैं। एनएलपी हमें सिखाता है, क्योंकि आप एनएलपी प्रैक्टिशनर खुद हैं, तो जैसे हमें पता है, हमें बताया गया है कि एनएलपी हमें बेसिकली ये सिखाता है कि हम अपनी सोच से, अपनी लैंग्वेज से अपनी रियलिटी को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो आप अगर आज अपनी 20 साल की वर्जन से मिले, आज से सम इयर्स बैक 20 इयर्स की ईशा से आप मिले, तो उससे कौन सा एक सेंटेंस कहना चाहेंगे जो उसकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है, फॉर गुड और फॉर बैड?
1: मैं एक बार के लिए एक सेंटेंस तो नहीं पता, कुछ शब्द जरूर कहूंगी कि अगर जिंदगी में वाकई में ग्रो करना है तो सबसे पहला एक अच्छे इंसान बनो। व्हाट यू एक्सपेक्ट, इंग्लिश में थोड़ा बोल रही हूँ, कि जो आप दूसरों से, व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स, जो आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं वैसा इंसान खुद को बनाना भी सीखे, क्योंकि

0: अगर आपको लगता है आपका मूड खराब है और आप गुस्सा करेंगे तो सामने वाले को बुरा नहीं लगना चाहिए, तो सामने वाले को भी शायद ऐसा लगे कि यार मैं गुस्से में हूँ, मैं बस बोल रहा हूँ क्योंकि ये मेरा थॉट है,
1: राइट,
0: इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन सामने वाले को हो सकता है कोई शब्द कुछ चीज बुरे लग जाए, हो सकता है क्योंकि हम नहीं जानते कि सामने वाला कैसा है।
1: बिल्कुल,
0: तो बस एक तो ये चीज की बी अ ह्यूमन फर्स्ट, एंड उसके बाद में कि बस यही बात कि जो हम किसी और से हम एक्सपेक्ट करते हैं वैसा इंसान हम खुद को बना लें, तो और चुप रहना सीख जाए।
1: बिल्कुल,
0: तो बस
1: बिल्कुल,
0: बी काइंड, बी ह्यूमन, चुप रहिए और बस एक्सपेक्टेशंस को पहले खुद में उतारिए, उसके बाद जिंदगी आपको ग्रो करेगी।
1: एब्सोल्युटली, जैसे कहते हैं कि डू नॉट डू अनटू अदर्स व्हाट यू डू नॉट वांट अदर्स टू डू अनटू यू, तो
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: उस फलसफे पे, उस फिलोसफी पे जीने की कोशिश करिए। और ये बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही कि चुप रहना सीखिए, क्योंकि आज के जमाने में जहां ओपिनियंस की बाढ़ है और ओवरवेलमिंग तरीके से लोग अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो उसमें चुप रहना आई थिंक एक लग्जरी है। तो बहुत ही खूबसूरत एक एडवाइस है जो मैं SN रेडियो के पूरे सभी श्रोताओं से कहना चाहूंगी कि कई बार जरूरी नहीं है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस करें, अपना ओपिनियन दें, कई बार सिर्फ चुप रहें, ऑब्जर्व करें और शायद सर नीचे करके उस सिचुएशन से निकल जाएं, क्योंकि उसमें आपकी ओपिनियन की जरूरत नहीं है। तो इस बात को समझना, इस बहुत महीन सी लाइन को रिकॉग्नाइज करना और अपने जीवन में उतारना, ताकि आपके साथ साथ आपके आसपास वालों का जीवन भी थोड़ा सफल हो, बहुत जरूरी है। एंड इस शोर में हम थोड़ा सा शांति ऑब्जर्व कर सकते हैं कभी कभी। तो मैम, इसी एहसास के साथ मैं चाहूंगी आप एक और गीत की फरमाइश करें जो हम आज प्ले करेंगे।
0: आपने मुझे बहुत मुश्किल में डाल दिया, क्योंकि मैं तो वो इंसान हूँ जो गानों के पीछे, मेरी सुबह ही उन्हीं से होती है, मेरी शाम, मेरी रात सभी म्यूजिक के पीछे है, उसके बिना मेरा जिंदगी अधूरी सी लगती है।
1: बिल्कुल, आई कैन
0: इमेजिन। तो एक इरफान खान के बहुत गाने हैं जो इरफान खान के पिक्चराइज करे गए हैं
1: जी,
0: और एक दिलजुबा गाना जो पीकू मूवी का है, वो मेरा वन ऑफ माय फेवरेट है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बेजुबा
0: गाने का टाइटल ही यही है, बेजुबान।
1: बिल्कुल बेजुबा, बेजुबा फ्रॉम पीकू, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सॉन्ग्स इन द रीसेंट टाइम्स, एंड नॉट रीसेंट नाउ बट यस, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फिल्म्स एंड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, बेजुबा। चलिए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत फ्रॉम द फिल्म पीकू।

0: वेलकम बैक ईशा जी।
1: थैंक
0: आगे चलते हैं। आपने एनजीओस के साथ भी काम किया और आपका हमेशा मोटो रहा है, जैसे आपने प्रीवियस आंसर में भी हमें बताया कि ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट, ह्यूमैनिटी इज फॉरमोस्ट फॉर यू इन योर लाइफ। तो आज के जमाने में, जिस वर्ल्ड में अगेन जहां हम रह रहे हैं, जहां सक्सेस एंड पावर और पोजिशन इतनी इम्पोर्टेंट है और इतनी पैरामाउंट है सबके लिए, ऐसी सिचुएशन में आपके हिसाब से इंसान कैसे सक्सेसफुल हो सकता है? कौन सा ऐसा इंसानी गुण है जो एक इंडिविजुअल को सीखना जरूरी है उस सक्सेस तक भी पहुंचने के लिए और ह्यूमैनिटी को भी इंटैक्ट रखने के लिए?
1: काइंडनेस,
0: ब्यूटीफुल।
1: मन में काइंडनेस अगर हो,
0: ब्यूटीफुल।
1: अगर कोई इंसान खुद को ऊंचा नीचा इस भेदभाव से निकाल देना, हर इंसान दुख में सुख में सबके इमोशंस इवन सब एक जैसे होते हैं, कोई अलग नहीं होता, बस हमारे देखने का नजरिया अलग होता है। अगर आपको प्यास लगती है, आपकी जैसी प्यास है सामने वाले की भी वही ही प्यास है। आपको भूख लगती है, आपके लगे तो आपको दुख होता है, दर्द होता है, तो सामने वाले की भी वही होता है। देखने का नजरिया है और एक्सप्रेस करने का नजरिया है। छोटी सी चोट में भी हम हाय हाय करेंगे या बहुत बड़ी चोट भी लगे तो हम बहुत एकदम आराम से शांति से भी उस चीज को हम कहते हैं ना कि झेलेंगे नहीं, लेकिन हाँ उस चीज के साथ हम समय के साथ उसको हील कर लेंगे। तो जब हम काइंड होते हैं ना, और एक इंसान को इंसान क्या, इंसान भी क्या, अगर जानवर भी हो, कोई भी बींग हो, उसको उसी इमोशन फीलिंग काइंडनेस के साथ अगर हम देखें तो इससे ज्यादा इससे बेटर और कोई, आई मीन मेरे हिसाब से और कुछ होने नहीं सकता।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और काइंडनेस सच में एक लॉस्ट ट्रेट है, एक लॉस्ट लग्जरी है अगेन आजकल। तो आई विश मोर एंड मोर पीपल काइंडनेस की तरफ जाएं और इस बात की इम्पोर्टेंस समझें, जैसे कि ईशा मैम ने बताया कि किस तरह से काइंडनेस आपको हेल्प कर सकती है अपने आप को समझने के लिए, सामने वाले को समझने के लिए और जीवन को एक तरीके से मनूवर करने के लिए, एक मिडिल वे लेने के लिए जीवन में कई बार। तो आगे चलते हैं मैम। इस सवाल का जवाब पहले आप दे चुके हैं क्योंकि आपने बताया कि आप बहुत सिचुएशंस में एक ऑब्जर्वर की तरह सामने आते हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे आप पोएम्स भी लिखते हैं, पॉडकास्ट भी कर चुके हैं और स्पीकर हैं, राइटर हैं, हीलर हैं, बहुत सारे रोल्स आपने जीवन में निभाए हैं, अब आज की तारीख में अगर आप अपने आप को आइडेंटिफाई करना चाहें कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, तो आप इन सभी ट्रेट्स में से सबसे ज्यादा किससे रिलेट करते हैं अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन ऑब्जर्वर? वो आपका एक बेसिक ट्रेट है जो हम समझ चुके हैं। इन सब में से आप को सबसे ज्यादा रेजोनेट क्या करता है, विच रोल रियली टिक्स यू इन लाइफ?
1: मैं समझती हूँ कि एक हीलर के तौर पे मैं अपने आप को देखती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं एक अंदर से जो फीलिंग आती है, एक अंदर से जो एक कि पहली चीज खुद को हील करना। क्योंकि जब मैं अकेली भी होती हूँ, मैं खामोश होती हूँ, मैं अपने आप को जीती हूँ, तो उस समय वो जो हम एनर्जी ड्रेन करते हैं ना, तो उस एनर्जी को रीगेन करने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए, तो अपने आप को वो उस मेडिटेटिव माइंडसेट में रखना, खुद को हील करना इज द बेस्ट थिंग टू डू। तो बेस्ट थिंग प्लस हाँ, मैं वैसी बन जाती हूँ, मुझे एफर्ट नहीं लगता। तो बस एज अ हीलर आई कैन से दैट आई एम दैट पर्सन।
0: अमेजिंग, बिकॉज यू हैव रिटन पोएट्रीज ऑल्सो और आई थिंक आप गाते भी हैं, बहुत खूबसूरत गाते हैं। तो अभी तो नहीं, टुवर्ड द एंड ऑफ द प्रोग्राम अगर आप अपनी लिखा हुआ, अपने लिखे हुए किसी एक ख्याल को पढ़ना चाहें हमारे साथ या कोई गीत गुनगुनाना चाहें हमारे लिए, तो हम बहुत आभारी होंगे आपके। टुवर्ड द एंड ऑफ द एपिसोड दैट इज, एंड अब फिर से हम एक गीत का ब्रेक लेंगे और मैं चाहूंगी कि आप अपनी पसंद का कोई एक गाना हमें बताएं तो हम आज उसे आपके लिए पूरा करें।
1: थोड़ा सा अभी बहुत ज्यादा हमने ऐसे गाने सुने हैं, थोड़े से सेंटिमेंटल ज्यादा हो गए,

0: ये गाने में मतलब एक अलग ही शरारत है इस गाने के अंदर, तो
1: बिल्कुल बहुत ही
0: बस
1: खूबसूरत
0: ये।
1: गाना और बहुत ही खूबसूरत
0: हाँ
1: वीडियो। जी, चलिए सुनते हैं एक चतुर नार फ्रॉम द फिल्म पड़ोसन।

ಚತುರ ನಾರ ಅಮ ಜೋಡೆ ಗನೈತಿ.

0: ये घोड़ा चतुरा घोड़ा ये क्या रहा घोड़ा चतुरा घोड़ा चतुरा एक पे रहना या घोड़ा बोला या चतुरा बोला
1: एक चतुर नारक।

0: मैम, आपने हमें बताया कि जिंदगी बदलने के मौके बार बार आपको देती है, हर बार आपको एक नया चांस मिलता है, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि यहाँ से जीवन चेंज करें, तो फिर भी ऐसा होने के बाद भी अगर ऐसा है, सच में अगर ऐसा है, तो लोग क्यों नहीं बदलना चाहते आपके हिसाब से? किस बात से डरते हैं? क्योंकि आप हीलर हैं, आप लोगों से इतना पर्सनली डील करते हैं, तो आपने क्या पहचाना है कि लोग क्यों अपने आप को छोड़ना नहीं चाहते, अपनी पुरानी पहचान से या अपने पुराने सर्कमस्टांसेस से निकलना नहीं चाहते टुवर्ड्स द न्यू लाइट?
1: पहली चीज है कि मन का डर. क्या होता है कि डर हमें इतना जकड़ के रख लेता है तो हम बहुत सोचते हैं. और जिंदगी का काम है ना, वो पैटर्न्स रिपीट करती है जब तक आप अपने उस डर को अंदर से निकालना दें और अपने आप को हम एक सेफ गार्ड में रख लेते हैं, अपने कंफर्ट जोन में रख लेते हैं कि हम यार ठीक है, यहाँ मैं ठीक हूँ, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, मैं आगे. तो जब लोग कहते हैं ना कि ग्रो ही नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो जिंदगी में कहती है भाई रिस्क लोगे तो आगे. वो कहते हैं ना रिस्क है तो इश्क है. भाई जब इश्क ही जो बेपनाह इश्क करते हैं वो हर हदें पार कर देते हैं और वो जिंदगी में रिस्क लेना पसंद करते हैं, डर से निकलना. तो पहली जो चीज होती है ना वो ये होती है, मतलब मेरी काउंसलिंग सेशंस हो या जनरल स्पीकिंग सेशंस हो, उसमें बस जब सवाल ही आता है ना तो बस ये होता है कि तुम्हें डर किस चीज का है. जिंदगी आज भी तो तुम्हारे सामने बहुत सारा कुछ ऐसा लेके आ जाती है या कुछ इस तरीके से जिंदगी तुम्हारे सामने इंसिडेंट्स होते हैं कभी कुछ कभी, मतलब हम जिस चीज से डरते हैं ना तो वो चीज, वो फियर फैक्टर हमें इतना ज्यादा हमें परेशान करता है ना कि हम आगे बढ़ने की सोचते भी है ना तो हम नहीं कर पाते. जब तक कोई जिंदगी में आपको ये नहीं कह देता ना, और सबसे बड़ी चीज कि उस डर से निकालने के लिए हमें सपोर्ट की जरूरत होती है. तो आज की जिंदगी में अगर आपके पास कोई ऐसा सपोर्ट है जो आपने बोले कि तुम चलो मैं तुम्हारे पीछे हूँ, चिंता मत करो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आ रही है जिंदगी है, खड़े हो जाएंगे, कर लेंगे, इतना तो हमने टैलेंट है कि हम इतना कर सकते हैं.
0: बिल्कुल.
1: तो पहला कि अपने डर को निकालो, अपने कंफर्ट जोन से निकलो, और कोई सपोर्ट करने वाला हो तो बिल्कुल उसके साथ चलो.
0: बिल्कुल. तो ईशा जी, अगर कोई आज आपको रीच आउट करना चाहे तो किस तरह से कर सकता है? अगर आप अपने ब्रांड के बारे में थोड़ा सा बताएं हमें कि कैसे लोग जो आज श्रोतागण हमें सुन रहे हैं वो आप तक पहुंच सकते हैं, अपने हीलिंग सेशंस ले सकते हैं और जीवन में थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं.
1: मैं ऑनलाइन भी सेशंस लेती हूँ. इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है ईशा विराशेस के नाम से, ISHKDERACIOUS. विराशेस यानी कि ट्रू. तो जो अपनी जिंदगी में अपने साथ सच में रहता है, एक ट्रू सेल्फ जो होती है, तो विराशेस वहीं से निकला है कि खुद के साथ सच्चा होना. और ईशा विराशियस _ ईशा जैन ISHAAJAIN ये मेरा इंस्टाग्राम का पेज है. इस पे आप मुझे मैसेज करिए. ऑनलाइन सेशन लेती है, ऑफलाइन अगर आप जयपुर के जयपुर में हैं तो मैं संडे टू संडे सेशन के लिए ओपन रहती हूँ. तो आप कनेक्ट कर सकते हैं और बिल्कुल हम इस चीज को किसी को सेशन लेना हो तो हम बिल्कुल कर सकते हैं.
0: बिल्कुल बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग. आगे चलते हैं हमारे आखिरी सवाल की तरफ, जो मेरा फेवरेट सवाल है कहीं ना कहीं. मान लीजिए आज से 30 इयर्स के बाद, 30 साल के बाद का जीवन हम अगर सोचें, इमेजिन करें, और आपको सिर्फ अपने बारे में कोई एक लाइन लिखनी हो, आप ये नहीं बता सकते कि आपने कितना कमाया है, कितनी बुक्स लिखी हैं, कितने लोगों को ट्रेन या हील किया है, बट सिर्फ एक लाइन जो आप अपने जीवन को डिफाइन करते हुए कहना चाहें तो वो क्या होगी?
1: लोग कहते हैं ना कि हमने इतनी पढ़ाई करी है, हमने ये डिग्री हासिल करी है, हम ये हैं वो हैं. तो मैं बस अपने लिए ये कहूंगी कि मैंने जिंदगी की डिग्री हासिल करी.
0: खूबसूरत, बहुत खूबसूरत. ब्यूटीफुल सच है मैम। अगर जैसे मैंने कहा था, अगर आपका कुछ लिखा हुआ आप पढ़ना चाहें या कोई गीत गुनगुनाना चाहें तो प्लीज।
1: मेरे सामने भी मेरा लिखा हुआ कुछ है नहीं, तो मैं आपसे पूछती हूँ, आपका कोई फेवरेट गाना हो तो बिल्कुल बताओ, तो मुझे याद होंगे उसके लिरिक्स तो मैं गा दूंगी।
0: ये तो आपने मुझे स्पॉट पे डाल दिया। खैर, अभी मेरे जहन में जो सबसे पहले गाना आ रहा है मेरे मेंटल स्पेस से वो है गली में आज चांद निकला, तो मेरा फेवरेट गाना है ये और मैं बहुत गुनगुनाती हूँ, तो अगर ये गा दें आप तो।
1: तो चलो कोशिश करती हूँ, जितनी लाइनें याद हैं
0: जी
1: उतना उसके साथ में मेरा वाला जोड़ दूंगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: तुम लाए तो आया मुझे यार, गली में आज चांद निकला। तुम आए तो आया मुझे यार, गली में आज चांद निकला। गली में आज चांद निकला, गली में आज चांद निकला।
0: बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। थैंक यू सो मच ईशा मैम, एंड आपसे बातचीत करके आज हमें बहुत कुछ समझ में आया आपके बारे में, जीवन के बारे में, और बहुत ही एफर्टलेसली, बहुत ही स्मूथली और बहुत ही कामली, एक कामिंग एनर्जी के साथ आज ये कॉन्वर्जेशन पूरी चली है, जो कामनेस मैं आज अपने अंदर भी फील कर पा रही हूँ। सो आई थिंक इट इज अबाउट योर एनर्जीज जो आप रेडिएट करते हैं, कामनेस, जो पीस एंड अगेन द काइंडनेस, ह्यूमैनिटी, जो सब चीजें आपका एक पर्सनालिटी का एक पार्ट है, वो आज हम इस कॉन्वर्जेशन में फील कर पा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जिंदगी अनप्लग्ड में अपना जीवन साझा करने के लिए और SN रेडियो पर आने के लिए।
1: थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी तनुषा।
0: बिल्कुल। तो दोस्तों, ईशा जी के साथ आज की हमारी बातचीत में हमने सिर्फ इनके काम के बारे में नहीं जाना, बल्कि ईशा जी कैसे इंसान हैं और उनके अनुभवों ने उन्हें क्या क्या सिखाया है, किस किस मोड़ पर क्या क्या मौके दिए हैं, ये सभी बातें आज हमने साझा की। ईशा जी की कहानी ने हमें याद दिलाया कि कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा मेंटोर जिंदगी खुद होती है। आज हम खुद पर भरोसा करना सीख लेते हैं तभी रास्ते आगे बढ़ते हैं और खुद ब खुद नजर आते हैं। याद रखिए, जिंदगी हमेशा बदलने का मौका देती है, सवाल सिर्फ इतना है क्या हम उस मौके को पहचान पाते हैं या नहीं। मैं हूं आपकी आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे थे जिंदगी अनप्लग्ड। मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और जुड़े रहिए SN रेडियो के साथ। नमस्कार।

0: में रोशनी।
1: हर मुलाकात एक गीत की तरह होती है, कुछ गीत खत्म हो जाते हैं पर उनकी गूंज देर तक दिल में रहती है। आज की इस महफिल से हम भी कुछ यादें, कुछ सीख और कुछ मुस्कुराहटें अपने साथ लेकर जा रहे हैं। मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और अब वक्त है आपसे इजाजत लेने का। याद रखिए दोस्तों, जिंदगी हमेशा परफेक्ट नहीं होती, पर हर जिंदगी में एक कहानी जरूर होती है जो सुनी जाने लायक होती है। फिर मिलेंगे एक नए चेहरे, एक नए सफर और एक नई दास्तान के साथ। तब तक अपने दिल की धुन को सुनते रहिए। नमस्कार।
2: दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ। रेडियो टांटिया भील, आपके झाबुआ की आवाज। आइए दोस्तों, मिलवाते हैं पश्ताना दुर्रानी से, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बीते हुए कुछ दिनों पहले कातार की राजधानी दोहा में अफगानिस्तान के भविष्य पर एक सम्मेलन हुआ था। इस जलसे को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने काबुल के निजाम से जब ये कहा कि अपने देश में लड़कियों की तालीम और महिलाओं की नौकरी करने पर उसने जो अपमानजनक पाबंदी लगा रखी है उसे वो फौरन वापस ले और स्कूल की कक्षाओं से लेकर उन तमाम ओहदों पर औरतों की भागीदारी सुनिश्चित करें जहां से निर्णायक फैसले होते हैं, तो पश्ताना दुर्रानी की मुहिम की याद हो आई। अपनी जान पर खेलकर वो अफगान लड़कियों तक ज्ञान की रोशनी बिखेर रही हैं। अफगानिस्तान के कांधार इलाके के जलमई दुर्रानी एक तरक्की पसंद कबायली नेता थे जो लड़कियों की तालीम की बढ़ चढ़कर हिमायत करते थे। जाहिर है कट्टर पंथियों को उनकी ये बात ठीक नहीं लगती थी। उन्हें कई बार खामोश रहने को कहा गया, लेकिन जलमई दुर्रानी लगातार मुखर रहे, बोलते रहे। ऐसे में जब मुल्क गृह युद्ध में चल रहा हो और लंबा खींचा ही जा रहा हो और कांधार इलाके पर तालिबान का पूरा नियंत्रण हो गया हो, तो दुर्रानी परिवार के सदस्यों के पास देश छोड़ने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। वो भागकर पाकिस्तान जा पहुंचे, जहां क्वेटा में उन सबको शरण मिली। करीब 27 साल पहले क्वेटा के ही एक शरणार्थी शिविर में पश्ताना का जन्म हुआ। उनके पिता अच्छी तरह जानते थे कि इस तरह की जगहों में इन खानाबदोश जिंदगियों को अब इज्जत का मुकाम सिर्फ पढ़ाई लिखाई से ही मिल सकता है। लिहाजा उन्होंने अपनी नई नस्लों की शिक्षा को लेकर वो पहले से कहीं ज्यादा संजीदा हो उठे। उन्होंने अपने अस्थाई घर को स्कूल में बदल दिया और अपनी पत्नी और परिवार की दूसरी पढ़ी लिखी औरतों को उन शिविरों की बच्चियों को पढ़ाने की जिम्मेदारी सौंप दी। अब इसी तरह के माहौल में पश्ताना पली बढ़ी। होश संभाला तो उन्होंने देखा कि उनकी मां और चाची किस तरह हमसाया घरों के लोगों को कायल किया करती कि वो अपनी बच्चियों को स्कूल भेज दें। पश्ताना ने पाकिस्तान में ही हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की, लेकिन उनकी दिली तमन्ना थी कि आगे की तालीम वो अपने मुल्क की ही किसी यूनिवर्सिटी से करें। तब तक अफगानिस्तान में निजाम भी बदल चुके थे और चारों तरफ इस बदलाव की चर्चा भी थी। कई औरतें न सिर्फ सरकारी मुलाजमत और सियासत में लौट आई थीं, बल्कि अपना कारोबार भी चलाने लगी थीं। साल 2013 की बात है, दुर्रानी परिवार ने वतन वापसी का फैसला लिया। पछताना तब सिर्फ 16 साल की थीं। अपने पुरखों की माटी को चूमने की खुशी ही अनूठी होती है। पूरा दुर्रानी खानदान बहुत खुश था, लेकिन कंधार लौटने की पहली ही रात जिस सच से पछताना का सामना हुआ, उसने उनकी सारी खुशियों पर पानी फेर दिया। खानदान की लड़कियां जब मिली तो उन पर यह हकीकत खुली कि उनके पूरे जिले में, जहां 400 से भी ज्यादा परिवार रहते हैं, एक भी लड़कियों का स्कूल नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता ये एहसास भी हुआ कि लड़कियों की पढ़ाई तो सरकार की प्राथमिकता में है ही नहीं। एक दिन खानदान की ही एक छोटी बहन आई और हसरत भरी निगाहों से पछताना को देखते हुए कहने लगी, बाजी, मैं भी आपके जैसा बनना चाहती हूं। पछताना शिक्षित थी, उनके पास अपना लैपटॉप था।

और सहायक वीडियोस इंटरनेट से डाउनलोड किए और उसे पढ़ाना शुरू किया। बच्ची इस लगन से पढ़ती रही कि जल्द ही वो मोड़ आया जब उसे कंधार शहर के सरकारी स्कूल में दाखिला मिल गया। इस घटना ने पश्ताना को प्रेरित किया कि उन सभी तमाम लड़कियों को वो डिजिटली पढ़ा सकती हैं जिनकी पहुंच में कोई स्कूल नहीं। इसी नेक इरादे से उन्होंने साल 2018 में लर्न अफगानिस्तान के नाम से एक निशुल्क ऑनलाइन स्कूल खोल दिया, अफगानिस्तान का पहला डिजिटल स्कूल नेटवर्क। इसके जरिए वो अब तक कंधार के 7,000 से ज्यादा लड़के लड़कियों को शिक्षित कर चुकी हैं और 80 शिक्षकों को भी डिजिटल साक्षरता का प्रशिक्षण दे चुकी हैं। मगर पश्ताना का ये काम कभी निरापद नहीं रहा, क्योंकि कंधार से तालिबान कभी खत्म ही नहीं हुए थे। और फिर जब वो 21 साल की थी, उनके पिता का इंतकाल हो गया, सारी जिम्मेदारियां उन्हीं के कंधों पर आ गईं। साल 2021 में तालिबान फिर से सत्ता में आ गया और तब स्थानीय सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें बताया कि उनका कत्ल किया जा सकता है। पश्ताना ने अफगानिस्तान छोड़कर अमेरिका जाने का फैसला ले लिया और वो चली गई। इन दिनों वो वहीं से अपने मिशन में जुटी हैं। साल 2021 में बीबीसी की तरह प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम्स ने भी उन्हें 100 प्रभावशाली लोगों में गिना है। औरतों को अपने हक हुकूक के लिए हमेशा ही भारी संघर्ष करना पड़ता है। आज से 125 साल पहले भारत में सावित्री भाई फूले के साथ भी तो क्या क्या हुआ, यह हमारे इतिहास का हिस्सा है। मगर उन्होंने उस वक्त हमारे देश में स्त्री शिक्षा की जो ज्योत जलाई, उसे आज तक पूरा हिंदुस्तान रोशन है। उम्मीद है अफगानिस्तान की आने वाली नस्लें भी पश्ताना दुर्रानी को उसी अदब से याद करेंगी।

दोस्तों, रेडियो सुनना इतना जरूरी क्यों है, आइए बताता हूं। प्रकृति ने हमें बनाया ही ऐसा है। जब हम कुछ सुनते हैं तो उसकी छवि, उसकी पिक्चर अपने दिमाग में बनाते हैं। तो रेडियो सुनने से हम तमाम क्रिएटिविटी को, अपनी रचनात्मकता को मजबूत करते हैं, अपने दिमाग में पिक्चर्स बनाते हैं, छवियां बनाते हैं और खुश होते हैं। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए। खुशी से संतुष्टि मिलती है और संतुष्टि से खुशी मिलती है, परंतु फर्क बहुत बड़ा है। खुशी थोड़े समय के लिए संतुष्टि देती है और संतुष्टि हमेशा के लिए खुशी देती है।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: कौवे ने मटके से पूछा, देखो अगर तुम आग में तपाकर बनाए जाते हो फिर भी इतनी गर्मी में अपने अंदर पानी को कैसा ठंडा रख पाते हो? मटके ने कहा, तू पानी पीले का लिए ज्यादा पंचायत मत कर।

एक बार एक राजा ने इतना ज्यादा सुरक्षित महल बनवाया कि उसमें किसी भी दुश्मन के घुस सकने की कोई आशंका ही ना रहे। उस राजा ने पूरी दुनिया को जीतना चाहा था, तो जाहिर सी बात है उसके बड़े सारे दुश्मन भी थे। अब क्योंकि पूरी दुनिया में दुश्मन हो गए थे तो स्वाभाविक है भय डर भी बढ़ गया था। डर बढ़ा तो सुरक्षा की जरूरत पड़ गई, इसलिए उसने ये मजबूत जबरदस्त अभेद्य महल बनवाया। इस महल में एक ही दरवाजा था, खिड़कियां भी नहीं थी, कहीं कोई हवा भी न घुस जाए, कहीं कोई जगह न रह जाए जिससे कोई भी दुश्मन कभी भीतर आने की सोच भी सके। इस बड़े सारे महल में एक ही दरवाजा था और इस दरवाजे पर हजारों नंगी तलवारों का पहरा भी लगा दिया गया। अब पड़ोस के राजा उस बहुत ही सुरक्षित महल को देखने आए, बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, वाह, बहुत आनंदित हुआ, मैं भी ऐसा ही महल बहुत जल्द बनवाता हूं। यह बिल्कुल सुरक्षित है, इसमें तो कोई खतरा लगता ही नहीं। जब पड़ोस का राजा विदा ले रहा था तो मेजबान राजा से उसने कहा, आपने सचमुच बड़ा कमाल का काम किया है, कोई राजा कभी इतना सुरक्षित महल कभी नहीं बनवा पाएगा। तभी सड़क किनारे एक बूढ़ा फकीर जोर जोर से हंसने लग गया। राजा ने पूछा, बे पागल, तू हंस क्यों रहा है बे? फकीर ने कहा, हुजूर, एक भूल रह गई इस महल में, और तो सब ठीक है मगर एक ही दरवाजा है, यही गलती हो गई। भाई, इससे भी तो दुश्मन भीतर जा सकता है ना, इसलिए आप भीतर जाएं और इस दरवाजे को भी बंद करा दें, चिनवा दें, तो आप बिल्कुल सुरक्षित हो पाएंगे, फिर कभी कोई दुश्मन घुस ही नहीं सकेगा कहीं से भी। राजा ने कहा, बे पागल, अगर मैं इस दरवाजे को भी चिनवा दूं और भीतर हो जाऊं तो ये महल नहीं मेरी कब्र बन जाएगा। फकीर ने कहा, कब्र तो ये बन ही गया है, सिर्फ एक दरवाजा ही तो बचा है। एक दरवाजा है, दुश्मन नहीं तो कम से कम मौत तो इस एक दरवाजे से भीतर आ ही जाएगी। आप ऐसा करें कि भीतर हो जाएं, फिर मौत भी नहीं आ पाएगी। सम्राट ने कहा, जाने का सवाल ही नहीं, मौत के आने से पहले ही मैं मर जाऊंगा। फिर फकीर ने कहा, तो फिर ठीक से समझ लीजिए, जितने ज्यादा दरवाजे थे इस महल में उतना ही जीवन था आपके पास, जितने दरवाजे कम हुए उतना जीवन कम हो गया। अब एक दरवाजा बचा है तो थोड़ा सा ही जीवन बचा हो गया, इसको भी बंद कर दीजिए, वो भी खत्म हो जाएगा। इसलिए कहा कि एक भूल रह गई है इसमें, और वो जोर जोर से हंसने लगा। दोस्तों, जितनी हम सुरक्षा ढूंढते हैं उतनी ही असुरक्षा का अनुभव करते हैं। असुरक्षा यानी कि इनसिक्योरिटी का जो अनुभव है वो सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी की खोज से ही पैदा होता है। ये एक दुष्ट चक्र है। असुरक्षा से बचने की जो आकांक्षा है वही असुरक्षा पैदा कर देती है। इसलिए असुरक्षा से राजी हो जाओ, एक्सेप्ट कर लो, स्वीकार कर लो, मान लो कि आप असुरक्षित हैं। अचानक ही पाओगे कि असुरक्षा गायब हो गई। इसका मतलब ये नहीं कि आप सड़क पर जाएं और मुसीबत को बुलावा दें। इसका मतलब सिर्फ इतना है, सावधान रहें लेकिन हर समय डरे रहने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, ख्याल रखिएगा।

0: तत्वों की जरूरत होती है। उसी तरह से हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे विचारों की जरूरत होती है। इसलिए कहा भी गया है कि लगातार अच्छे विचारों को, अच्छे संगीत को सुनते रहिए, और जब आप सुनेंगे तो उनकी अच्छी पॉजिटिव सकारात्मक छवियां बनाएंगे अपने दिमाग में। तो दिमाग मेहनत करेगा, दिमाग की एक्सरसाइज होगी, व्यायाम होगा और वो स्वस्थ रहेगा। इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, ये चीज आपको किसी और माध्यम में नहीं मिलेगी। गोल चबूतरा, आज जिस्म है कल याद हो जाएंगे, मैं तो कब का आगे बढ़ गया हूं, वक्त से कहो मेरे साथ चले, आज नहीं है मेरा। ये बात सच है, लेकिन जरा जरा सा वो मेरे शेरों में रह गया है।
1: उठे सबके कदम, देखो रम पम।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: पड़ोस की औरतें आपस में बातें कर रही थी। बहन, बाकी तो सब ठीक है, लेकिन अगर हम चांद पर जाकर बस जाएंगे तो करवा चौथ कैसे मनाएंगे?

0: शब्द ही जीवन को अर्थ दे जाते हैं और शब्द ही जीवन में अनर्थ कर जाते हैं।
1: दोस्तों, रेडियो सुनने का एक और फायदा बताता हूं। रेडियो अच्छे सकारात्मक गीत, संगीत और विचारों के साथ आपके दिमाग की, आपके मस्तिष्क की व्यायाम शाला है। आप रेडियो बिना उसकी तरफ देखे हुए सुन सकते हैं। अपने काम करते रहिए और रेडियो सुनते रहिए, है ना मजेदार रेडियो के साथ।

रेडियो टांटिया भील, आपके झाबुआ की आवाज। हम सभी सफल होना चाहते हैं ना? यह बात और है कि हम सभी के लिए सफलता के मायने अलग अलग होते हैं। क्यों? कोई बहुत अमीर होना चाहता है, कोई बहुत प्रसिद्ध होना चाहता है, कोई बहुत पावरफुल होना चाहता है, कोई बहुत इंटेलिजेंट बनना चाहता है, कोई बहुत बड़ा लेखक बनना चाहता है, कोई बहुत बड़ा म्यूजिशियन, कोई बहुत बड़ा दार्शनिक, कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन। लेकिन हम सभी अपनी सफलताओं के पीछे भागते तो रहते हैं ना? ये जरूरी नहीं है कि क्या चाहते हैं हम, क्या सफलता पाना चाहते हैं हम। कई बार जिंदगी में सफलता की परिभाषा ढूंढते हुए, डेफिनेशन ढूंढते हुए बहुत सारा वक्त गुजर जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। बड़े आश्चर्य की बात है, काफी अच्छी पकी हुई उम्र के लोगों से भी अगर हम पूछें कि सफलता के मायने क्या हैं आपकी नजरों में, तो शायद वो भी ठीक से बता ना पाए। बड़ी मजेदार बात है, हम इंसान इंडिविजुअली बहुत

भयंकर झूठे होते हैं, बहुत अच्छा झूठ बोलना जानते हैं, खास करके अपने आप से। अब ये बात आपको कुछ अजीबोगरीब सी लगेगी, हम अपने आप से झूठ बोलते हैं? जी हां, देखिए ना, कभी किसी भी सवाल का जवाब सीधे सीधे तौर पर सच्चाई से देते हैं क्या हम? सोच के देखिए, दिल के अंदर झांकने वाली बात है ये, किसी को मत बताइए, आप किसी के लिए आंसरेबल नहीं है, आप खुद को और अपने ऊपर वाले को आंसरेबल हैं। चिंता ना करिए, कोई आपको जज नहीं करेगा। तो जरा कोशिश कीजिए, सफलता के मायने आपकी निगाह में क्या है, थोड़ा विचार करें। मैं दोबारा कहना चाहूंगा, किसी को ना बताएं। एक बार किसी नौजवान ने सोक्रेटिस से पूछा, सफलता का रहस्य क्या है? सोक्रेटिस उसका सवाल सुनकर मुस्कुराए और फिर उससे कहा, तुम कल मुझे नदी के किनारे मिलो, वहीं पर मैं तुम्हें बताऊंगा कि सफलता का रहस्य क्या है। अगले दिन नौजवान जब सोक्रेटिस से मिला तो उन्होंने उसे अपने साथ नदी की तरफ बढ़ने को कहा। आगे बढ़ते बढ़ते पानी जब नवयुवक के गले तक जा पहुंचा, तभी अचानक सोक्रेटिस ने उसका सर पकड़कर पानी में डुबो दिया। उन्होंने उसको तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि वह नीला नहीं पड़ गया। सोक्रेटिस ने उसका सर पानी से बाहर निकाल दिया और बाहर निकलते ही नौजवान ने सबसे पहले हांफते हांफते तेजी से सांस लेना शुरू किया। सोक्रेटिस ने उसी समय उससे पूछा, जब तुम पानी के अंदर थे तब तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत महसूस हो रही थी, तुम क्या चाहते थे? लड़के ने उत्तर दिया, केवल सांस लेना। सोक्रेटिस ने स्नेह से उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, यही सफलता का रहस्य है। जब तुम सफलता को उतनी ही गहराई से चाहोगे जितनी शिद्दत से तुम सांस लेना चाहते थे, तो वह तुम्हें मिल जाएगी। यही कामयाबी पाने का सबसे बड़ा फॉर्मूला है। ये तो बात हुई फॉर्मूला की, जिससे हमें सफलता मिलेगी। लेकिन सवाल अभी भी वहीं का वहीं है, हमारी नजर में सफलता के मायने क्या हैं? हमारी नजर में सफलता की परिभाषा क्या है? हमारी नजर में सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं, किसी के साथ डिस्कस करने की भी कोई जरूरत नहीं। हमें अपने अंदर झांकना है और सच जरूर बोलना है अपने आप से, और हमें ईमानदारी से यह ढूंढना है कि हमारी परिभाषा क्या है सक्सेसफुल होने की। बहुत सारी अमीरी, अल्टीमेट फिटनेस, बहुत सारे अच्छे संबंध, बहुत सारी इंटेलिजेंशिया, शांति, पीस, क्या आप मेरे साथ हैं इस डेफिनेशन को ढूंढने के लिए? क्या है सफलता?

तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूँ समीर, कल मिलते हैं।

नमस्कार श्रोताओं, झाबुआ की आवाज़ सुनने वाले सभी श्रोताओं को आरजे भावना की ओर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।

सुनने वाले सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रेडियो टंडिया भील 90.8 FM जाबो की आवाज एवं आरजे भावना की ओर से सुनने वाले सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत

जय भारत, मेरा भारत महान। रेडियो टंटाभील 91.8 FM जाबर की आवाज की ओर से सुनने वाले सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं जाबर की आवाज, RJ भावना के साथ।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।
1: हर घर

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा बहुत ही खास प्रोग्राम जहां शब्दों में एहसास है और हर शेर में दिल की बात। आज की इस महफिल में पेश है कुछ खूबसूरत गजलें जो आपके दिल को छू जाएंगी। आपके साथ हैं आपकी ही मेजबान, आपकी ही रेडियो दोस्त आरती जी। तो आइए शुरू करते हैं गजलों और सुरों का ये प्यारा सफर।
1: जब मैं ना रहूं तब तुम्हें यूं रुकना नहीं, जब मैं ना रहूं तब तुम्हें यूं रुकना नहीं, जीना है अपने लिए और खुद से ज्यादा मेरे लिए। जब तक हम दोबारा ना मिलें, एक और बार एक होने के लिए। नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत खुशामदीद दोस्तों। 90.8 FM की तरंगों पर SN रेडियो और रेडियो टांटिया भील के आंगन से मैं हूं आपकी अपनी रेडियो दोस्त आरती रॉय। मौसम की इस बदलती करवट के साथ वादों और उम्मीदों का एक नया सिलसिला लेकर एक बार फिर से आपकी दहलीज पर दस्तक दे चुकी हूँ। आपके सबसे पसंदीदा प्रोग्राम अल्फाज से एहसास तक में। दोस्तों, आज की महफिल का मिजाज बड़ा ही रूहानी है। आज आपके सफर में जज्बातों का एक ऐसा कारवां शामिल होने जा रहा है जो सीधे आपके दिलों की गहराइयों को छुएगा। वक्त हमेशा की तरह अपनी रफ्तार से चल रहा है, तो बिना देरी किए आइए सुरों के इस कारवां का आगाज करते हैं। प्रोग्राम की पहली पायदान पर आज की हमारी पहली पेशकश जो है वो बेहद रूहानी और तारीखी नज्म है। इस दिलकश नज्म को ख़ास तौर पर हमारी बेहद अजीज दोस्त रश्मि सिंहल की पसंद पर इस महफिल का हिस्सा बनाया जा रहा है। रश्मि जी की पसंद की इस नज्म को अजीम शायर फैज़ अहमद फैज़ साहब ने लिखा था, जिसे गुजरे दौर में मलिका तरन्नुम मोहतरमा नूर जहाँ साहिबा ने गाकर अमर कर दिया था। और आज के इस नए दौर में इसी रूहानी कलाम को अपनी मखमली और पुरसर आवाज़ से नवाजा है गुलुकारा प्रतिभा सिंह बघेल ने। कलाम के बोल हैं, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। दोस्तों, ये शायरी सिर्फ हुस्न और इश्क की बात नहीं करती, बल्कि ज़िंदगी की तलखियों और मजबूरियों को बड़ी बेबाकी से सामने रखती है। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मैंने समझा था कि तू है तो दरख़शा है हयात, यानी ज़िंदगी रोशन है, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, गमे दहर दुनिया के दुख दर्द। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, यानी टिकाव, तेरी आँखों के सिवा दुनिया

रखा क्या है। तो आइए रश्मि की पसंद पर इस खूबसूरत इन खूबसूरत रंगों में सरोबार होते हैं और सुनते हैं प्रतिभा सिंह बघेल की आवाज़ में ये लाजवाब नज़्म, आपकी नज़र।

अल्फाज से एहसास की अगली पायदान पर। दूसरी पेशकश सूफियाना कलाम की सरताज मोहतरमा आबिदा परवीन जी की उस पर पुरकशिश और बुलंद आवाज़ में है, जो सीधे सुनने के सुनने वालों के दिलों के पार उतर जाती है। इस बेहद मकबूल गज़ल को मशहूर शायर नसीर तुराबी साहब ने अपने ख़ास लफ्ज़ों से नवाजा है। दोस्तों, ये शायरी दिल के उस अफसोस को बयां करती है जहां लोग पूरी ज़िंदगी एक साथ तो गुजार देते हैं, मगर उनके दिलों के दरमियान वो गहरा तालमेल नहीं हो पाता।

जुदाई ना होने के बावजूद भी एक अजनबीपन का जो एहसास जो आबिदा जी की आवाज़ में साफ झलकता है। मिसरा मुलाहजा फरमाएं, कदूरतें थी, तगाफुल था, रंजिशें थी, मगर कदूरतें दिलों का मैल, तगाफुल लापरवाही या बेरुखी, कदूरतें थी, तगाफुल था, रंजिशें थी, मगर बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई न थी। और फिर वो हम सफ़र था, मगर उससे हम नवाई न थी, कि धूप छाँव का आलम रहा, जुदाई न थी। तो आइए सीधे रुख करते हैं आबिदा परवीन जी की इस रूहानी और पुरअसर गायकी की तरफ। आपकी नज़र।

0: दोस्तों, आबिदा परवीन जी की उस बुलंद सूफियानी रवानगी के बाद अल्फाज से एहसास तक के अगले पड़ाव पर आइए रुख करते हैं एक मखमली एहसास की तरफ, जहां यादों के पुराने झोंके दिल के दरवाजे पर बड़े अदब से दस्तक देते हैं। हमारी अगली पेशकश हमें सीधे लेकर चलती है साल 1985-86 के उस सुनहरे दौर में, जब गज़ल सम्राट की कई एल्बम्स रिलीज़ हो रही थी, यानी हमारे जगजीत सिंह साहब जी की। ये गज़ल उनकी एल्बम एको से ली गई है। फराज साहब की इस शायरी में बीते हुए वक्त और मोहब्बत के उस पहले मोड़ का जिक्र है, जहाँ वक्त भले ही आगे बढ़ गया हो मगर दिल आज भी वहीं ठहरा हुआ है। शायर फरमाते हैं, जान पहचान से क्या होगा, फिर भी ऐ दोस्त गौर कर शायद, मुंतजर जिनके हम नहीं उनको मिल गए और हम सफर शायद, फिर उसी राह गुजर पर शायद हम कभी मिल सकें मगर शायद। फराज साहब की बेहद खूबसूरत गज़ल हमारे जगजीत सिंह जी की आवाज़ में आपकी नज़र।
1: जिंदगी में हर चीज़ के दो पहलू हैं, जैसे सच और झूठ, सुबह और शाम, मिलन और जुदाई, आशा निराशा। जिंदगी के इन्हीं रंगों को लेकर आज की आखिरी गजल पेश कर रहा हूं। शायर हैं जनाब अहमद फराज़।

दोस्तों, अल्फाज से एहसास तक के इस अगले पड़ाव पर आइए, रुख करते हैं एक ऐसे रूहानी और पुरअसर दर्द की तरफ जहाँ जुदाई की तड़प सीधे आसमान को छूती है। हमारी अगली पेशकश संगीत के शहंशाह सूफियाना कलाम के उस्ताद जनाब नुसरत फ़तेह अली खान साहब की आवाज़ में सजी एक अमर बंदिश है, अमीर खुसरो के रंग। और इस रिवायती सूफिया कलाम को जब नुसरत साहब की बुलंद और रूहानी गायकी का साथ मिला तो ये बिरहा की सबसे बड़ी दास्तान बन गया। इस बंदिश में उस बेबसी और अकेलेपन का जिक्र है जहाँ महबूब के दूर चले जाने पर पूरा घर, पूरी दुनिया ही सूनी लगने लगती है। आँखों में हर वक्त सिर्फ इंतज़ार की नमी होती है। इस खूबसूरत कलाम के बोल हैं, देखूं राहें चढ़ के अटरिया, जाने आ जाएं सावरिया, जाने कब आ जाएं सावरिया, जब से गए मोहे लीना खबरिया, छूटा पनघट फूटी गगरिया, सुना लागे सजन बिन देश, मैं ढूंढूं साजन को, मेरे सैया तो हैं परदेस, मैं का करूं सावन को, सुना लागे सजन बिन देश, मैं ढूंढूं साजन को। खान साहब की इस जादुई आवाज़ का नशा, आपकी नज़र।

दोस्तों, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के उस रूहानी सोज के बाद अल्फाज से एहसास तक के सफ़र को मुकम्मल करने के लिए आइए रुख करते हैं आज की आखिरी पेशकश की तरफ। एक ऐसी आवाज़ जिसे जब भी सुना जाए दिल अदब और सुकून से भर जाता है। हमारी आखिरी पेशकश में सुरों की मलिका पाकिस्तान की नैरा नूर जी की आवाज़ में सजी एक अमर नज़म है। रुमानियत शायरी के पुरसर शायर अख्तर शिरानी साहब के लिखे इन नहायत ही संजीदा और गहरे लफ्ज़ों को जब खलील अहमद साहब की धुन और नैरा जी की मखमली आवाज़ का ठहराव मिला तो ये कलाम बहुत नफीस हो गया। इस शायरी में इश्क की उस बेबसी और उसके उस रूप को दिखाया गया है जहाँ इंसान मोहब्बत से गुजारिश करता है कि अब और इम्तहान ना ले। अख्तर शिरानी साहब का लिखा एक बेहद खूबसूरत मिसरा कुछ यूं है। बस्ती में हमें बदनाम ना कर, बस्ती में हमें बदनाम ना कर, रुस्वा ना कर, यूं दर्द की राहों में हमें हैरान ना कर। तो चलिए इस हसीन इश्क की फरियाद को सुनते हैं, इश्क हमें बर्बाद ना कर। नैरा नूर की आवाज में प्रोग्राम की आखिरी नज़्म आपके लिए।

0: दोस्तों, आपके मेजबान आरती जी के साथ आज की हमारी गजलों भरी महफिल बस यहीं खत्म होती है। उम्मीद है ये गजलें, ये अल्फाज आपके दिल को पसंद आए होंगे। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आरती जी फिर लौटेंगी नई गजलों और नई भावनाओं के साथ। नमस्कार।
1: आप जिनके करीब होते
2: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
3: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
6: घर सूर्य घर।
7: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टैंटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपू रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा। एत्रे हमलता रेजो टैंटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
8: किसान साथियों, स्वागत करते हैं आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आज हम खेती बाड़ी के इस कार्यक्रम में जैविक बाजार संभावनाएं अपार। जी हाँ किसान साथियों, आज का हमारा जो विषय है, जो बिंदु है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, वो है जैविक बाजार संभावनाएं अपार। किसान साथियों, आप सभी जानते हैं कि आज का जो हमारा दौर है वो जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की तरफ हमारे सारे किसानों ने है, हमारे किसानों का रुख है जो कहीं ना कहीं जैविक खाद्यान्नों पर और जैविक खाद्यान्नों की जो आवश्यकता है वो काफी बढ़ चुकी है। और सभी आज के अधिकतर जो हमारे उपभोक्ता हैं वह जैविक विधि से उपजाए हुए उत्पादों को अधिक से अधिक मात्रा में ले रहे हैं। तो किसान साथियों, आज के इस जैविक बाजार संभावनाएं अपार कार्यक्रम में हम जानेंगे कैसे हम भी इसमें सहभागी हो सकते हैं, कैसे हम हमारी खेती में बदलाव लाकर इनका लाभ ले सकते हैं। तो आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं।
9: जैविक बाजार की अगर बात की जाए, लगातार अब इसका दायरा जो है बढ़ता जा रहा है, किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है और इसी वजह से अपार संभावनाएं जो है अब किसानों को इसमें नजर आ रही है। किस तरीके से संभावनाएं यहाँ पर हैं हमारे किसानों के सामने, उस पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए ये रिपोर्ट।
10: जब भी जैविक खेती की बात होती है तो हम यही समझते हैं कि रासायनिक उर्वरकों, रासायनिक कीटनाशियों आदि के बिना की जाने वाली खेती, जिसमें गोबर की खाद हो, केंचुआ खाद हो, नीम आदि के बने कीटनाशी हो, मिश्रित खेती हो आदि आदि, अगर यही जैविक खेती है तो हम जैविक या जीवन की खेती के मर्म को समझने में असफल रहे हैं। थोड़ा गहराई में जाएं तो शायद जैविक खेती या जीवन की खेती की नई परिभाषा समझ में आएगी। प्रचलित हरित क्रांति में आधुनिक विज्ञान के सहारे जो प्रयोग हुए उनमें मशीनों व रसायनों को महत्वपूर्ण माना गया, जिसमें जीने का अर्थ आवश्यकता, समझ व श्रम जैसी वास्तविकताओं की सही जानकारी के अभाव में ये मान लिया गया कि कम से कम लागत व कम से कम श्रम देकर अधिकतम उत्पादन करना ही विकास है। अब इसमें प्रकृति के साथ संबंध को समझना और इसके साथ जीना तो दूर की बात रही, बस केवल इस पर ध्यान दिया गया कि संपूर्ण प्रकृति के संसाधनों को मनमानी पूर्वक इस्तेमाल कैसे किया जाए। इस प्रकार मात्रात्मक रूप से उत्पादन में जो वृद्धि हुई उससे किसान और कृषि दोनों ही दिशाहीन होकर भारी संकट में हैं। फसल प्रणाली तथा खेती के संसाधन सभी लाभोन्मादी बाजार के कब्जे में हैं। उत्पादन तो बढ़ा लेकिन भुखमरी, कुपोषण, बेरोजगारी के साथ साथ भ्रष्टाचार जिस प्रकार बढ़ा है उससे तो यही लगता है कि प्रत्येक कार्य योजना असफल है। आर्थिक असंतुलन व प्राकृतिक स्तर पर जल प्रदूषण व विकिरण ने गहरे सवाल मानव जाति के सामने खड़े किए हैं। एक तरफ धरती की तबाही तो दूसरी तरफ मंगल ग्रह पर बसने की ललक ने यह स्पष्ट किया है कि मानव ने अभी तक इस धरती के साथ जीना कैसे है इसे नहीं समझा है। इसलिए यह आवश्यकता है कि खेती करने से पहले प्रकृति की उत्पादन व्यवस्था एवं उसके साथ जीने के संबंध को स्पष्ट रूप से जाना जाए। उत्पादकता प्रकृति की सहज व्यवस्था है, मानव उसमें भागीदार होकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयासरत है। उपयोगी भोजन, हवा, पानी से प्रकृति सजी हुई है, जिसमें सभी वनस्पतियां एवं जीव जगत परंपरागत रूप से अपना अपना जीवन जी रहे हैं। लेकिन प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ इकाई यानी मानव जीने में सफल नहीं है। ये प्रश्न संपूर्ण मानव जाति के सामने है। जैविक खेती के संदर्भ में मिट्टी की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए प्राकृतिक उत्पादन व्यवस्था का स्वरूप भूमि में उर्वरता बढ़ाना होना चाहिए। जंगल में मांसाहारी व शाकाहारी दोनों प्रकार के शरीरधारी जीव हैं, जिनसे हर प्रकार का सह अस्तित्व सजा हुआ है। मानव जाति को उसका अध्ययन करने की आवश्यकता है। मांसाहारी कम खाते हैं तथा उनकी प्रजनन दर भी कम है, साथ ही शाकाहारी ज्यादा चरते हैं तथा उनकी प्रजनन दर भी ज्यादा है। इसलिए कभी मांसाहारियों को भोजन का संकट नहीं रहता। साथ ही मांसाहारी के शरीर, मांस व मल की गंध से अनेक कीड़ों और बीमारियों का नियंत्रण भी होता है, जिससे वनस्पतियां रोग मुक्त रहती हैं। खेती करते समय भी किसान भाइयों को इसी सह अस्तित्वपूर्ण प्राकृतिक व्यवस्था को समझने की आवश्यकता है। खेती में कृत्रिम रसायनों का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रकृति विरोधी है। इससे मिट्टी का अपना संसार विकृत होता है, जिससे धरती की उर्वरता में कमी आती है। भूमि में जीवांश बढ़ाने के लिए कुछ बातों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसे अवशेष अपघटन क्रिया के नियम, विविधता में अवशेषों की उपलब्धता, तैयार किए गए कार्बनिक खादों व अन्य उपयोगी पदार्थों के प्रयोग, भूमि को कार्बनिक आच्छादन कर दबा कर रखना और हरी खाद के प्रयोग। आज हमारी भूमि में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो रही है। जिस प्रकार प्रकृति में विविधता है, ठीक उसी प्रकार जमीन के अंदर जीवाणु भी विविधता में रहते हैं। ये विविधता प्राकृतिक ऐश्वर्य है, लेकिन एकल फसल प्रणाली से इस विविधता में भारी कमी आई है। यही कारण है कि भूमि में पर्याप्त विविधता में अवशेष उपलब्ध नहीं रहते, जिससे सूक्ष्म स्तर पर विविधता में जीवाणु भी उपलब्ध नहीं रहते। अब जैविक खेती को हम प्रकृति के साथ अपने सह अस्तित्व के रूप में देखें व समझें तो नई व सार्थक परिभाषा निकल कर आएगी। ये खेती संभव है और हमें इसे संभव बनाना होगा, वरना प्रकृति का नाश कर खड़े किए गए तथाकथित विकास का अंत पूरी मानव सभ्यता के अंत के साथ ही होगा। इसे रोकना हम सब की जिम्मेदारी है।
9: तो ये रिपोर्ट आपने देखी, जाना किस तरीके का बाजार है हमारे किसानों के सामने। अगर वो इस बाजार का रुख करते हैं तो उनके लिए काफी लाभ का सौदा साबित हो सकता है, और यही जानकारी जो है अब लगातार किसानों को दी भी जा रही है। हम भी उसी जानकारी को आज यहाँ पर उसके पहलू जो हैं उन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे, और इसी के लिए हमारे साथ खास मेहमान जो हैं वो स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कृष्ण चंद्रा जी, निदेशक हैं राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद कृषि मंत्रालय की ओर से। इसके साथ साथ यहाँ आज हम डॉक्टर चंद्रा से जानेंगे तमाम उन योजनाओं के बारे में जो हमारे किसानों के हितों के लिए चलाई जा रही हैं, खासतौर से जैविक खेती पर केंद्रित हैं, और उसके बाद किस तरीके से एक बाजार जो है किसानों को जैविक का वो मिलना चाहिए, इसकी तमाम जानकारी इनसे हम लेंगे। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं मनु चौधरी जी जो जैविक उद्यमी हैं और किसानों की एक समस्या रहती थी कि कैसे उनको बाजार का जो रुख है वो करना होगा, कैसे उनका जो उत्पाद है बाजार तक पहुंचेगा। सरकार ने भी इस समस्या पर गौर किया, उसके बाद अलग अलग राज्यों में अलग अलग संस्था जो है वो खोल दी गई है। वहीं से मनु चौधरी जी भी हैं पश्चिम बंगाल, उसके साथ साथ पूरे देश में किस तरीके से जैविक उत्पादों का बाजारीकरण हो रहा है, कैसे किसानों को फायदा पहुंच सकता है, इसकी तमाम जानकारी इनको हर वही जानकारी आज किसानों के लिए हम यहाँ उनके साथ साझा करेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं हरेंद्र राणा जी जो कि एक सफल उन्नत किसान है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें हरेंद्र राणा जी उससे पहले भारतीय वायुसेना में इंजीनियर पद पर कार्यरत रहे हैं। उसके बाद भी इन्होंने जो पढ़ाई की एक बात कही जाती है, जो पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, उसके बाद इन्होंने पढ़ाई की और 3 डिग्री इन्होंने MBA में यहाँ पर हासिल की हैं। उसके बाद एक नई नौकरी, उसके बाद आखिर की जब बात की जाती है, क्योंकि एक किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं हरेंद्र राणा जी और वहीं ये पहुंचे, यानी अब सफलतापूर्वक खेती किसानी कर रहे हैं, दूसरों के लिए एक मिसाल बन चुके हैं। इनसे भी इनका आज अनुभव आपके साथ हम साझा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से जैविक बाजार में अपार संभावनाएं बाकी किसानों को भी नजर आ सकती हैं। सबसे पहले डॉक्टर कृष्ण चंद्रा आपसे हम यहाँ जानना चाहेंगे, अगर जैविक की बात कही जाती है, धीरे धीरे एक हम कह सकते हैं योजनाएं अब आ चुकी हैं किसानों के लिए और अब एक अच्छी खासी जो संख्या है किसानों की वो हो चली है जैविक खेती की ओर।
6: जी बिल्कुल, ये सच है कि इधर 2 सालों में जो जैविक के ऊपर काम किया गया है और भारत सरकार ने जो योजनाएं बनाई है बहुत ही सफल योजना है और हम कहेंगे पूर्ण योजना है, संपूर्ण योजना है जो कि टोटल किसान के लिए डिवोटेड है जी। और उसका रिजल्ट अब आना शुरू हो गया है। जब 2 साल पहले ये योजना चालू की गई थी परंपरागत कृषि विकास योजना के नाम पर, उस समय कोई भी किसान हमारे मंत्रालय से जुड़ा हुआ नहीं था। आज की डेट में हमारे पास करीब 10 लाख किसान ऑल ओवर इंडिया जुड़ चुके हैं
9: जी।
6: और एक आपको मालूम है कि हमारा PGS इंडिया पिछले साल लॉन्च किया गया था, PGSindia.NCUF.gov.in, उसमें आप पूरा देख सकते हैं कि कितने किसान जुड़े हुए हैं। आज की डेट में 1 लाख से ऊपर किसान 6 महीने में जुड़ गए हैं
9: जी।
6: तो और उन सभी किसानों का डिटेल आप उसमें देख सकते हैं। तो ये शो करता है कि जो स्कीम हमारी चल रही है, जो सरकार ने जो स्कीम चलाई थी, वो किसानों के लिए कितनी बेनिफिट है और किसान कितने आगे आके इसमें जुड़ रहे हैं। तो एक ये स्कीम बहुत सक्सेसफुल चल रही है जिसमें कि आपका बाजारीकरण से लेके आपका उनका ब्रांडिंग तक दिया गया है
9: जी।
6: दूसरी स्कीम हमारी एक नॉर्थ ईस्ट के लिए चल रही है, वैल्यू चेन स्कीम, उसका भी फायदा आना अभी बाकी है, लेकिन किसान उसके साथ भी जुड़ना शुरू हो गए। और इनडायरेक्ट में बहुत सारी स्कीमें चालू की गई हैं, जैसे जैविक स्कूल को सपोर्ट करना वो चालू किया गया है। और ये देखा यह जा रहा है कि किसान कुछ तो हमारी स्कीम से आ रहे हैं, अब कुछ अपने आप इससे जुड़ने लगे, क्योंकि इनडायरेक्ट में भी सरकार बहुत फायदा दे रही है। जैसे हम लोगों ने प्रमाणीकरण की सुविधा मुफ्त में दी है
9: जी।
6: तो उसका बेनिफिट ये हो रहा है कि जो किसान को हमारी स्कीम में जुड़ा है, नहीं जुड़ा है, उसके बाद भी उसको प्रमाणीकरण मिल जाता है, मुफ्त में प्रमाणीकरण मिल रहा है, तो उससे और किसान इसमें आ रहे हैं। फिर बाजारीकरण के लिए भी जो किसान अपना प्रोडक्ट लाता है तो उसको बेचने के लिए हम लोग मदद करते हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण चीज की गई जो आज तक नहीं हुआ है
9: जी,
6: कि किसानों के पहली बार किसानों को सरकार ने प्लेटफॉर्म दे दिया है,
9: बिल्कुल एक मंच जो है सरकार की तरफ से वो दिया
6: तो वो अपना प्रोडक्ट लाके अपने विलेज के नाम पे, अपने नाम पे लाके वो बाजार में ला सकता है और बाजार में दे रहा है। इसी के सीरीज में बहुत सारी शॉप्स खोली जा रही हैं।
9: बिल्कुल एक हम कह सकते हैं चरणबद्ध तरीके से अब एक नई शुरुआत हो चुकी है। और किसानों तक ये कैसे पहुंची, राणा जी आपसे हम जानना चाहेंगे, अगर बात कही जाती है जैसा कि यहाँ डॉक्टर कृष्ण चंद्रा ने हमें बताया काफी संख्या में जो किसान हैं वो जुड़ चुके हैं, आपका अनुभव कैसा रहा जैविक खेती करने से पहले और उसके बाद?
11: इसमें मुकुल जी सबसे पहले तो नमस्कार आपको, आपके सभी टीम को जी। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ कृष्ण चंद्रा जी का, जिन्होंने एक रास्ता खोला किसानों के लिए, उसी रास्ते के द्वारा मैं भी आज एक किसान के रूप में खड़ा हो पाया हूँ
9: जी।
11: उससे पहले जो हम खेती करते थे उसमें भी उतनी ही मेहनत लगती थी, लेकिन जो आउटकम था वो जस का तस रह जाता था
9: जी।
11: जब से भारत सरकार की कृषि मंत्रालय के द्वारा जो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद में है
9: जी,
11: वहाँ हमने संपर्क साधा और उसके द्वारा जब हमने खेती करने का मन बनाया तो हमारे जीवन में एक ऐसा मिरेकल आया कि जो हमने कभी सोचा भी नहीं था
9: जी।
11: और जो हमारा इनपुट्स की प्रॉब्लम थी, खर्चा कहीं हो जाता था और लास्ट में जो कैलकुलेशन निकलती थी वो जस की तस रह जाती थी
9: जी,
11: आज की तारीख में हम देखते हैं कि हमारा प्रोडक्शन तो बढ़ा है, ये तो एक बात है, उसके साथ साथ हमारी जो भूमि की जो कंडीशन थी जो दिनों दिन खराब होती जा रही थी, उसमें कई फैक्टर्स आ जाते हैं, उसमें बहुत तेजी के साथ सुधार होना शुरू हुआ है।
9: यानी वहां भी सुधार देखने को मिल रहा है।
11: जी
9: जी बिल्कुल। तो देखिए कितने फायदे हैं जैविक खेती के, हम कहते हैं, लेकिन जैविक बाजार की जब खासतौर से बात कही जाती है तो ये एक बड़ा हम बाजार मान सकते हैं। मनोज जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, अगर हम हमारे किसानों को अगर बताएं, जैसे कि अब हम लगातार बात कर रहे हैं, कितने किसान हैं जो इससे जुड़ चुके हैं, लेकिन एक समस्या रहती है किसानों के सामने कि उन्होंने जैविक खेती तो कर ली, उत्पाद उनके सामने आ गया, लेकिन उस उत्पाद से उनको मुनाफा कैसे होगा, कैसे उसको बाजार तक पहुंचाएं।
12: डेढ़ साल पहले जब मैं संपर्क में आया नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग के और किशन चंद्र सर से, तो मेरे लिए बड़ा आश्चर्य सा विषय था कि किस तरह से हम चीज़ों को किसानों से खरीद के बाजार तक लाएं।
9: जी,
12: क्योंकि पहले हमें जब इस उद्योग में हम लोग थे, जब इस बिजनेस में थे, तो पहले हमें बीच में किसी ट्रेडर का या किसी बीच में कोई मिडल मैन को हमें रखना पड़ता था, और जिसके थ्रू हम किसानों से चीज़ों को खरीदते थे।
9: जी बिल्कुल।
12: लेकिन जब यह सरकार का यह नया स्कीम निकला PKVY, परंपरागत कृषि विकास योजना, इस स्कीम के तहत जब नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग ने बताया कि ये स्कीम कैसे चलेगा, तो हम लोग अपना इसके अंदर में फॉरसाइटनेस देखे कि यहाँ इसमें किसान का काफ़ी भलाई हो सकता है।
9: जी,
12: तो क्लस्टर बनाना किसान का, क्लस्टर ग्रुप तैयार होना, एक एक ग्रुप में 50 या 60 किसानों का ग्रुप को पहले तैयार करना।
9: जी,
12: वो ग्रुप को एक साथ खेती कराना, जब वो यूनिफॉर्म खेती कर रहे हैं, बाजार का क्या डिमांड है उसके बेसिस पे खेती करना। तो जब ये खेती उस तरह से हो रही है बाजार के डिमांड के बेसिस पे,
9: जी,
12: तो इस खेती में क्वांटिटी एंड क्वालिटी दो एस्पेक्ट है जो बाजार को चाहिए। क्वालिटी एस्पेक्ट पे जब खेती हो रही है, क्वालिटी माने जैविक के स्तर पे, तो बाजार उसका उचित दाम देता है, उचित मूल्य देता है,
9: जी,
12: जो किसानों तक पहुंचता है। तो ये बीच के अंदर का जो ब्रिज है, ये ब्रिज को तैयार करने का पूरा प्रयास हम लोग कर रहे हैं।
9: बिल्कुल, एक माध्यम बनकर,
12: माध्यम बनकर हम लोग इसमें पूरा प्रयास कर रहे हैं।
9: जी,
12: और इससे किसानों को काफ़ी फायदा है। पर्टिकुलरली मैं पश्चिम बंगाल का आपको उदाहरण देता हूँ। पश्चिम बंगाल क्षेत्र में तीन तरह का हम लोगों ने अभी एक्सपेरिमेंटल मोड पे तैयार किया है।
9: जी,
12: तीन तरह का चावल को हमने, जो जिला स्तर या ग्राम स्तर पर वो चावल है,
9: जी,
12: किसानों द्वारा पैदा किया जाता है, गोविंदो भोग, तुलाई पांजी और ब्लैक राइस,
9: जी,
12: और कालोनिया। अब इन चावल के बारे में शायद कोई जानते भी नहीं। जब कस्टमर को इसके जो बाजार है, जब उसको इसके बेनिफिट समझ में आई,
9: जी,
12: और जो किसान इसकी खेती करते थे पहले 200 किलो 400 किलो अपने सिर्फ खुद के कंजम्पशन के लिए खेती करते थे, जब उनको अभी उचित मूल्य मिलना शुरू हुआ तब वे उसको खेती करना बढ़ाना शुरू किया।
9: यानी उत्पादन भी ज्यादा है और मांग भी अब देखने को मिल रहा है।
12: मांग भी देखने को मिल रहा है।
9: जी बिल्कुल, बदलाव जो है वो यहाँ लगातार हमें देखने को मिल रहा है। डॉक्टर कृष्णा, आप भी इस बात से सहमत होंगे, अगर खासतौर से हम बात करते हैं परंपरागत कृषि विकास योजना की, एक उद्देश्य जो इसमें रखे गए थे, अभी तक कहाँ तक लगता है आपको कि इसकी सार्थकता जो है योजना की वो अभी हो पाई है?
6: देखिए, ये हम तो ये कहेंगे ये बहुत बढ़ चढ़ के रिस्पॉन्स है और बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। अगर हमारे गाजियाबाद के बगल में, जो कि सेंटर बगल में लोकेटेड है, पहले हमारे साथ दो साल के पहले कोई किसान नहीं था, 20 किसान से चालू हुआ,
9: बिल्कुल,
6: आज हमारे पास 10,000 किसान है। अब अगर आप जाएं मेरठ साइट्स तक तो 10,000 किसान है, 1,00,000 किसान हमारे पास इनडायरेक्ट जुड़ चुके हैं।
9: जी,
6: और सबसे बड़ी मतलब प्राउड की बात यह है कि जितने भी हमारे ये रीजनल काउंसिल खोले गए हैं और भारत सरकार ने जितने लोगों को अपॉइंट किया है,
9: जी,
6: इसके लिए सबसे बड़ी मतलब हमारा जो विजन है हमारे कृषि मंत्री जी का है, श्री राधा मोहन साहब ने, जो उन्हें फर्स्ट डे से उन्होंने कहा था कि किसान को मेन बेनिफिट मिलना चाहिए,
9: बिल्कुल,
6: जो कि हम आज सोच रहे हैं, उन्होंने 2 साल पहले कहा था, और उनका यह व्यू था कि आप कुछ भी करें लेकिन किसान के पास में बेनिफिट जाए। आज की डेट में हम बता सकते हैं, जो भी इस स्कीम के साथ जुड़ा है, स्कीम ना होने के बाद भी, जैसा मैंने बताया कि लोगों को प्रमाणीकरण मिल रहा है, जो भी

0: प्रमाणीकरण के लिए ये लोग किसानों को जोड़ते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उन जब उनका प्रोडक्ट, एक सबसे बड़ी चीज़ है ये सर्विसेज दे रहे हैं, सर्विसेज में दे रहे हैं कि किसान कैसे क्या उगाए, जैसे इन्होंने बताया कि पूरा क्लस्टर में कर रहे हैं। तो क्या है कि जब जैविक आपके मंच से कई प्रोग्राम हुए, बहुत सारे किसानों ने पूछा कि भाई हम अकेले कर रहे हैं और हमको बाजार नहीं मिल रही, तो यही देखा गया कि अकेले अगर आप कर रहे हैं तो इतनी क्वांटिटी नहीं होती तो बाजार नहीं मिलता, तो वो उस समस्या को खत्म करने के लिए क्लस्टर में बेस में काम किया गया। तो किसानों को जोड़ा जाता है, जोड़ने के बाद जब वो किसान आता है इसमें तो उनको तो मालूम नहीं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, वो उसकी सर्विसेज जीरो दे रहे हैं
1: सारी जानकारी।
0: उस पर एक लोगो दिया गया जो भारत सरकार की तरफ से है, पीजीएस इंडिया, पीजीएस ग्रीन। अगर आप पहले साल दूसरे साल कर रहे हैं तो पीजीएस ग्रीन लगाते हैं उसके अंदर, तो उससे वो इंडिकेट करता है कि ये ऑर्गेनिक है। और उसके नीचे एक नंबर दिया जाता है, उसको यूआईडी नंबर हम लोग बोलते हैं। तो उस यूआईडी नंबर से कोई कंज्यूमर अगर देखना चाहे कि ये प्रोडक्ट कहाँ से आया है, किस किसान ने बेचा है, तो वो अपना पोर्टल पर जाके उसको चेक कर सकता है। तो ये सुविधा दी गई। इससे बड़ी चीज कहती है, जब ये लोग प्रोडक्ट अपना पैकिंग करते हैं, करने के बाद मार्केट में भेज रहे हैं, उससे पहले हर एक प्रोडक्ट का, हर एक बैच का ये लोग उसका रेजिडुअल टेस्टिंग करते हैं,
1: तमाम जो मानक है उनको देखा जाता है। मनोज जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि किसान है, उनके यही जहन में बार बार आता है कि चलिए उत्पाद तैयार हो गया लेकिन मानकों पर वो खरा उतरे तभी आगे जाएगा, तो किस तरीके जो मानक हैं वो अभी तक तय किए गए हैं कि किसानों को ज्यादा मुश्किल भी ना हो और उनका जो उत्पाद है उसका भी अच्छा दाम उनको मिल सके।
2: देखिए, जब हम लोग इस कार्यक्रम को शुरू किया पीके भिवाई स्कीम में, पीजीएस का जब हम लोग कार्यक्रम शुरू किया, तो शुरुआती दौर पर किसान बोले कि आप तो जैविक उत्पाद को ही खरीदेंगे।
1: जी,
2: तो जब हमने उनको समझाया कि भारत सरकार जो ये योजना जो शुरू की, कृषि मंत्रालय द्वारा जो ये योजना है, ये योजना ऐसा नहीं है कि पहले साल की खेती को हम लोग नहीं खरीदेंगे।
1: जी,
2: नॉर्मली अभी तक जो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन चल रहा था, पहले जो जैविक सर्टिफिकेशन की जो क्रिया थी,
1: बिल्कुल,
2: उसमें क्या था कि 3 साल आपको वो जैविक पूरे खेती करनी होगी, तभी जाके आपको प्रमाण पत्र मिलेगा कि आप जैविक कर रहे हैं।
1: जी,
2: तो पहले 2 साल की खेती का क्या हो, तो किसानों को पहले 2 साल उन्होंने मेहनत करा, जैविक
1: डर रहता था, शायद डर रहता उपज ना आ पाए,
2: जिसके वजह से वो डर से जैविक की तरफ अपने आप को ले उस तरफ झुकाव उनका नहीं होता था।
1: जी,
2: लेकिन जब ये स्कीम आया, पीके वीवाई का स्कीम आया, जिसमें पीजीएस ग्रीन जो सर अभी बोले हैं, पीजीएस इंडिया ग्रीन और पीजीएस इंडिया ऑर्गेनिक, ये स्कीम के तहत में ऐसा है कि बड़ा खूबसूरत तरीके से इसको डिजाइन किया गया कि पहला साल जो उपज होगा किसानों का,
1: जी,
2: वो पहला साल का उपज में पीजीएस इंडिया ग्रीन दिया जाएगा, जहां रेसिडुअल टेस्टिंग होगी।
1: जी,
2: और चूंकि पहले साल खेती होता है, जिस तरह से हम लोग एलोपैथिक और होम्योपैथिक दवाई खाते हैं, जो इंसान के शरीर में एलोपैथिक दवाई खाने का जो आदि है,
1: जी,
2: तो रातों रात वो होम्योपैथिक में जा नहीं सकते, उसी तरह से हमारी जमीन जो है माता है।
1: जी,
2: तो जमीन के अंदर में रातों रात इतने दिनों तक जो केमिकल द्वारा जमीन पे जो खेती की गई, उसको अगर हम लोग जैविक की तरफ, झुकाव की तरफ ले जाएंगे, तो हो सकता है उसके अंदर में केमिकल का अंश हो, और अगर वो अंश हो तो हम लोग उसको पहले सर्टिफिकेशन करते हैं पीजीएस ग्रीन का।
1: जी,
2: पहले साल का जो उत्पाद है वो अंश को जाते जाते ऐसा माना जाता है कि 3 साल लग जाता है, तो पहले 2 साल हम लोग उसको पीजीएस ग्रीन का सर्टिफिकेशन लोगों देते हैं, ताकि किसानों को एटलीस्ट जो है उचित दाम मिले। तो नॉर्मली अभी आ जाता है हम लोग कितने दाम उस पे देंगे, जो नॉर्मल केमिकल जो कर रहा है किसान,
1: जी,
2: जो उनका प्रोडक्ट है उसका जो दाम है, मिनिमम उससे हम लोग 10-15%।
1: बिल्कुल मनोज जी, लेकिन जो दाम में फर्क हम देखते हैं ये किस वजह से आता है? एक हमारा साधारण उत्पाद हुआ, अगर जैविक उत्पाद है वहां हम देखते हैं जो बाजार में अभी शायद उपलब्ध है, वहां एक दाम भी काफी ज्यादा उनके हमें लगते हैं।
2: सर, इकोनॉमिक्स का एक थ्योरी है कि हायर द सप्लाई लोअर द प्राइस।
1: जी,
2: जितना ज्यादा उत्पाद बढ़ेगा उतना कम उसका दाम होगा। उसी तरह से वही थ्योरी अप्लाई होता है एग्रीकल्चर में।
1: जी,
2: तो चूंकि उत्पाद जो है अभी जैविक उत्पाद, अभी हम लोग 2 साल से ये जो नया परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत किसान अभी इसके तरफ झुकाव किए हैं, अभी 125 करोड़ जनता में अगर 10 लाख किसान अभी तक जुड़े हैं,
1: जी,
2: इतने कम समय में, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और ये आगे भी जुड़ेगी, तो जितना ये किसान इसमें जुड़ेंगे और जितना ज्यादा इसका उत्पाद बढ़ेगा, इसका दाम दिन प्रतिदिन कम होता जाएगा जैविक प्रोडक्ट का।
1: बिल्कुल, दाम कम होगा जैसा आपने कहा, और 10 लाख किसानों में से एक किसान हमारे साथ भी यहाँ मौजूद हैं। राणा जी, आपसे हम समझना चाहेंगे, जब आपने शुरुआत की जैविक खेती की, उसके किस तरीके परिणाम जो हैं अभी तक आपको मिले हैं?
3: मुकुल जी, हमने जैविक खेती जब शुरुआत किया था तो सबसे पहले राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र से जब संपर्क हुआ हमारा
1: जी,

0: तो वहाँ से हमने एक वेस्ट डिकम्पोज़र नाम का प्रोडक्ट उपलब्ध करवाया था,
1: जी
0: और उसको लेकर के जो भी गाइडलाइंस उनके द्वारा दी गई थी उसी के अनुसार उसे तैयार किया था। और
1: जी
0: उस खेती करने में सबसे बड़ी चीज़ क्या आती है कि आपका बीज संस्कारित होना चाहिए, आप अपनी फसल के साथ में फर्टिलाइज़र डालते हो,
1: जी
0: आप अपनी जब फसल बढ़ती है तो उस पर स्प्रे करते हो पेस्टिसाइड और दूसरी चीज़ों को मारने के लिए, फिर उसके बाद में मंडी की तरफ मुंह करते हो।
1: जी
0: तो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र से हमको जो वेस्ट डिकम्पोज़र मिला
1: जी
0: उसमें हमको कई फायदे मिले। पहला फायदा तो हमको ये मिला कि जो बीज हम बोने जा रहे हैं
1: जी
0: उसी के द्वारा हम संस्कारित कर सकते हैं बीज को। दूसरी चीज, जब हम फसल बो दिए तो जो आपको मैन्योर चाहिए,
1: जी
0: जैसे कि खेतों में पुरानी जड़ रह जाती है या पुराना DAP पड़ा हुआ है या पुराना आपका गोबर पड़ा हुआ है, जो
1: जी
0: भी आपका वेस्ट पड़ा हुआ है, ये जो वेस्ट डिकम्पोज़र है राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र से बहुत प्रचुर मात्रा में हमारे लिए उपलब्ध है। और इसने एक काम बहुत अच्छा किया है कि
1: जी
0: जो भी आपका वेस्ट है उसको बहुत जल्दी डिकम्पोज करता है और उसको एक ऑर्गेनिक मैन्योर में कन्वर्ट कर देता है।
1: बिल्कुल, ये तमाम फायदे हम मान सकते हैं जो उत्पाद देखिए लगातार तैयार हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ये वही उत्पाद हैं जो बाजार की तरफ जाते हैं और इनसे काफी मुनाफा हमारे किसानों को आगे मिल सकता है। आगे भी हम यहाँ जानेंगे और किस तरीके से हमारे किसान जो हैं उनको मुनाफा हो सकता है, कैसे उनका उत्पाद बाजार तक पहुंचेगा और कहाँ उनको संभावनाएं अपार दिखाई देंगी। लेकिन
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ू रेडियो, आपड़ी बातें। किसान साथियों, चर्चाओं का सिलसिला यूं ही बना रहेगा, यहां पर वक्त हो चला है एक छोटे सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद पुनः मुलाकात होगी, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांटिया भील 90.8 FM के साथ, झाबुआ की आवाज।

0: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM।
1: आपड़ू रेडियो आपड़ी बातें। ब्रेक के बाद एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका किसान साथियों खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आप लगातार सुन रहे हैं जैविक खेती के फायदे और कैसे जैविक खेती करके हमें अधिक से अधिक लाभ मिल सकता है। किसान साथियों, चर्चा का सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं इसमें कुछ और एक्सपर्ट की राय।
2: पर अभी तक आपने जाना किस तरीके एक शुरुआत जो है वो हमारे किसान कर सकते हैं, लेकिन और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। आइए जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट।
3: जैविक खेती यानी प्रकृति के संग जीना। जैविक खेती की ओर आज पूरी दुनिया की नजर है। यूरोप में तो जैविक उत्पादों की मांग में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। हालांकि किस कारण से जैविक उत्पादों के दाम अधिक हैं, ये थोड़ा समझ से परे है, क्योंकि कई मामलों में जैविक खेती से उपज पहले से अधिक हो रही है। जैविक खेती के द्वारा ही विश्व में धान और आलू की प्रति एकड़ सबसे अधिक उपज लेने का रिकॉर्ड भारत में ही बना है। फिर भी जैविक के खिलाफ प्रचार भी काफी हो रहा है, जिसमें उत्पादन में गिरावट आना प्रमुख है। भारत में करीब 86% छोटे व सीमांत किसान हैं। इनकी खेती की लागत में कमी करने में जैविक या प्राकृतिक कृषि की अहम भूमिका है। मिश्रित खेती, उचित दूरी, दलहनी फसलों को फसल चक्र में शामिल करना, हरी खाद, केंचुआ व गोबर खाद, जैविक कीटनाशी, कीटों का जैव नियंत्रण आदि किसानों के बीच जिस तेजी से लोकप्रिय होना चाहिए था वैसा हुआ नहीं।
2: इस रिपोर्ट में आपने जाना कि कैसे जो हमारे किसान हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन चुनौतियां उनके सामने भी हैं और वही चुनौती कहीं ना कहीं हमारे जो कृषि मंत्रालय उसके सामने भी रही होगी। डॉक्टर कृष्ण चंद्रा, आपसे हम जानना चाहेंगे, अब तक हमने बात की कि अगर उत्पाद है कैसे वो बाजार तक पहुंचेगा, लेकिन वो किसान जिसकी शुरुआत करना चाहते हैं, जैसा आपने कहा कि जो किसान है एक डर उनमें शुरू में रहता है, लेकिन अब अगर आपकी स्थिति की हम बात करें तो क्या लगता है वो जो डर है सभी किसानों के जहन से अब निकल चुका है, अभी भी जो किसान है थोड़ा सा एक डर बाकी है उनमें कि आखिर वो अगर जैविक खेती शुरुआत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है?
4: नहीं, अब काफी हद तक इसमें डर कम होगा, क्योंकि सबसे बड़ा रीजन है कि अब डिमांड बढ़ने लगी है।
2: तो
4: कंज्यूमर हमारा है वो जैविक उत्पाद ढूंढना शुरू कर दिया, और किसानों को भी मालूम है कि हम अगर ये केमिकल खेती करते हैं तो इसके नुकसान काफी है, उनकी सेहत खुद को नुकसान हो रहा है। तो इस सब उनके में जागरूकता है, अगर जैसे ही उनको कहीं लिंक मिलता है, सोर्स मिलता है, तो वो इसके तरफ झुकाव हो जाता है।
2: बिल्कुल, लेकिन जो किसान इसको करना चाहते हैं जैसा आप भी हमें जानकारी दे रहे हैं, उनको किन बातों का ख्याल रखना होगा, या एक मानकों की अगर हम बात करते हैं कौन से वो मानक हैं जब भी किसान को अगर वो चाह रहे हैं कि अब वो जैविक खेती की शुरुआत करें?
4: जी देखिए, मानक इसमें अभी जो गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है
2: जी,
4: तो ये हमारे पहले पास इसे थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन था, अभी पीजीएस और थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन दोनों को एक कर दिया गया
2: जी,
4: तो एक्सपोर्ट के लिए अलग है और हमारा जो डोमेस्टिक के लिए पीजीएस कर दिया गया, लेकिन दोनों के जो स्टैंडर्ड है वो एक कर दिए गए। अभी एफएसएसआई से मीटिंग भी हुई थी, तो एफएसएसआई भी इसमें एग्री की है, और इसके बहुत जल्दी आपको नॉर्म्स दिखाई देंगे कि अब आगे आने वाले प्रोडक्ट के ऊपर एक एफएसएसआई का आपका लोगो होगा, साथ में पीजीएस या थर्ड पार्टी का एक लोगो साथ में होगा
2: जी।
4: जो कि एफएसएसआई का काम क्या होगा कि आपको मालूम है कि जो मार्केट में प्रोडक्ट, आपको आप भी पहले रेस कर चुके हैं कि जो मार्केट में प्रोडक्ट है वो जुनून है कि नहीं, उसमें कुछ केमिकल है कि नहीं, वाकई में ऑर्गेनिक है कि नहीं
2: जी।
4: ये सब दुविधा थी, तो उसको खत्म करने के लिए एफएसआई काफी आगे आ गई है, और वो सैंपल लेके टेस्टिंग करेंगे अपने लैब में और उसके बाद ही प्रोडक्ट आपका मार्केट में बिकता रहेगा। तो इससे क्या है कि कंज्यूमर में अवेयरनेस आएगी, कंज्यूमर में एक फेथ जमेगा और डिमांड ऑलरेडी बढ़ रही है, तो किसान जो पहले नहीं चाहता था अब वो जुड़ना शुरू हो गया है। और जो हम लोग एजुकेट करते हैं कि आप जो जैविक खेती करें, पहले था कि जैविक खेती कर रहे हैं तो वो ट्रेडिशनल तरीके से कर रहे हैं, हम लोग उसमें बोलते हैं कि नहीं, आप साइंटिफिक मेथड है, जैसे राणा जी ने बताया कि डिकम्पोजर यूज करिए। तो सबसे बड़ी समस्या होती है कि आपके जो इनपुट है उसकी कॉस्ट कैसे कम की जाए। जब तक आप इनपुट कॉस्ट नहीं कम कर रहे और पूरे इनपुट नहीं दे पाएंगे फसल को, तब तक आपकी फसल का उत्पादन अच्छा नहीं आएगा। आज की डेट में अगर आप साइंटिफिक तरीके से करते हैं तो उसमें देखा गया है कि उत्पादन में कमी बहुत कम रह जाती है। और दूसरा जो है, जो हम लोग अब जो दे रहे हैं कि एक फसल चक्र पूरे साल भर का, उसमें करीब 11 क्रॉप ले रहे हैं, तो 11 क्रॉप लेने से क्या है कि जो हर 11 क्रॉप का एक तो आपको उत्पाद मिल रहा है, और उससे आपका बाजार भी मिल रहा है, साथ साथ आपके जो इनकम है वो करीब 4 लाख के आसपास पर एकड़ पड़ जाती है
2: जी।
4: तो ये अगर आप कंपेयर कर रहे हैं उससे केमिकल से तो करीब 4 गुना है
2: जी।
4: तो ये इसको देखते हुए किसान काफी जुड़ रहा है और इस इनको प्रैक्टिकल दिखाने के लिए हम लोगों ने कुछ विलेज अडॉप्ट कर रखे हैं
2: जी।
4: तो किसान वहां आते हैं, रुकते हैं, 20-25 दिन को ट्रेनिंग दी जाती
2: है, प्रशिक्षण उन्हें
4: प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रैक्टिकल दिखाया जाता है कि कैसे कर रहे हैं। हमारे कैंपस में भी हम लोग अपना लगाते हैं, वहां भी दिखाते हैं और जहां कहीं भी किसान चाहता है ग्रुप में अगर है तो वहां हम अपने टीम भेजते हैं, वो जाके वापस सिखाते हैं कैसे आप इसको खेती करें। तो ये सब चले और ये भी तय बात है कि हमारे 70% किसान है तो पहुंच हमारी इतनी नहीं है, लेकिन अब केवी केस को भी गवर्नमेंट इन्वॉल्व कर रही है, केवी केस को भी देने आ रही है कि आप एक विलेज अडॉप्ट करें,
2: यानी धीरे धीरे दायरा को
4: बढ़ा रहे हैं और ये मतलब ये हमारे मंत्रालय से ये सब पॉलिसी बन चुकी है
2: जी।
4: तो बहुत जल्दी आपके हर केवी के जो 600 से ऊपर केवी के हैं वहां पर एक आपका मॉडल फार्म रहेगा जहां पर वो दिखाएंगे कैसे आप ऑर्गेनिक करें, तो इससे स्प्रेड होगा, किसानों को भी इन्वॉल्व किया जाए, जो हमारे किसान ऑलरेडी 10-15 साल से किसान खेती कर रहे हैं और कैसे वो उत्पाद अधिक ले रहे हैं उनको भी स्कूल में कन्वर्ट किया जा रहा है,
2: यानी उनके अनुभव को भी साझा किया जाएगा,
4: जिससे वित्तीय सहायता का भी प्रावधान आगे किया जा रहा है। तो उससे क्या होगा कि जो लोकल किसान उनको फायदा मिलेगा, बाहर का भी मिलेगा और इससे बड़ी चीज आ रही है कि जो आपका बाजारीकरण जो आ रहा है ये बहुत बड़े स्केल में आ रहा है। जैसे हमारे हमारे रेल मंत्री जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है उनसे भी हमारी एक बारी मीटिंग में अनुरोध किया गया
2: जी।
4: तो वो भी उन्होंने कंसर्न किया कि हम कोशिश करते हैं कि इसको जैविक थाली इसमें हम
2: बिल्कुल शुरू एक नई शुरुआत जो है नई पहल ऐसे की जा सकती है।
4: मिड डे मील है, अब आपको मालूम है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स में उसमें जैविक का ही वो खाना परोस रहे हैं, उनको मालूम है कि डॉक्टरों को भी मालूम है, भी सजेस्ट करते हैं इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू अधिक है और इसके साइड इफेक्ट नहीं है। और आपको मालूम होगा कि आपके हमारे कृषि भवन में भी एक शॉप खोली गई, इसी तरह से झारखंड में भी कृषि
2: यानी अलग अलग जगहों पर देखिए अब जो दुकानें हैं जहां पर सिर्फ आपको जैविक उत्पाद मिलेगा वो भी प्रमाणिक जैविक उत्पाद है वो आपको वहां मिल सकता है और उसकी खरीदारी भी आप कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ कृष्णचंद्र जी हमें बता रहे हैं कि उपभोक्ता जो है बढ़ रहे हैं, मांग क्योंकि बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर मनोज चौधरी जी आपसे हम जानना चाहेंगे, मांग की हम बात करते हैं, मांग बढ़ रही है, उत्पादन भी आ रहा है, लेकिन क्या सिर्फ जब ये पूरी प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो सिर्फ बाजार को देखा जाता है या जो किसान है वो बाकायदा बताया भी जाता है कि अगर ये उत्पाद उसका उत्पादन लेते हैं तो उसमें ज्यादा मुनाफा उनको होगा, यानी पूरी जानकारी उनको दी जाए कि किससे आपको ज्यादा मुनाफा मिल सकता है और उसी उत्पाद को आगे फैलाया जाए।
5: पहले तो मल्टी क्रॉपिंग जो सिस्टम है, जैसे एक ही जमीन पे हम लोग मल्टी क्रॉपिंग करें
2: जी,
5: एक साथ इकट्ठे जो मल्टी क्रॉप जब आता है तो हमें क्या है एक साथ में एक ही सब तरह के फलन मिलते हैं
2: जी।
5: और जो बाजार का डिमांड है, जैसे हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स है, सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो हमें मिले टाइम टू टाइम। कुछ जैसे अपने 3 सेगमेंट है, हॉर्टिकल्चर सेगमेंट है
2: जी
5: और सीरियल्स एक सेगमेंट है, तो हॉर्टिकल्चर और फिशरी एंड पोल्ट्री वो अलग सेगमेंट है। बाजार का यही 3 डिमांड है, इसी 3 डिमांड पे बाजार पूरा चल रहा है
2: जी।
5: तो अपना पीजीएस जो है हॉर्टिकल्चर और सीरियल्स पे ही अभी चल रहे हैं, तो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट का डिमांड जो है वो ज्यादा डे टू डे में ज्यादा इफेक्ट ये चल रहा है
2: जी।
5: अब इसकी लॉन्जिबिलिटी
2: यानी फल और सब्जियां जो है उनको ज्यादा मांग सकते हैं जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ राणा जी आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसा कि हमारे जो विशेषज्ञ दोनों ये बता रहे हैं कि किसानों को लगातार बताया जाता है कि कई सारी फसलें आपको लेनी है, लेकिन बतौर एक किसान ये थोड़ा सा मुश्किल भरा नहीं होता कि एक साथ हमें अगर कई फसलें लेनी है कैसे हम निर्भर करेंगे, कैसे उसकी उपज आएगी हमारे पास और कितना मुनाफा उससे हमको होगा?
6: शुरुआती दौर में अगर देखें तो किसान को ऐसा लगता है कि ये तो एक बड़ी समस्या है, इतना तो हमसे हो नहीं पाएगा, क्योंकि हम भी आज की तारीख में जब किसानों के पास जाते हैं
2: जी,
6: जब उसे कागज पर समझाते हैं तो किसान बस कागज को देखते ही बोलता है इसमें तो बड़ी मेहनत है
2: जी,
6: ये तो हमारे से नहीं हो पाएगा। और जबकि ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत ही सिंपल तरीका है
2: जी।
6: सबसे पहले तो देखो ऑर्गेनिक खेती करने के लिए जो हमने प्रोडक्ट लिया था
2: जी,
6: मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, सभी किसानों को भी ये दिखा देना चाहता हूँ
2: जी।
6: ये वो प्रोडक्ट है जो वेस्ट डिकम्पोजर है,
2: बिल्कुल।
6: इसको तैयार करने का तरीका बहुत सिंपल है, 200 लीटर का एक ड्रम लीजिए, उसमें 200 लीटर पानी भर लीजिए
2: जी,
6: 2 केजी गुड़ या सीरा है या कोई भी दूसरी स्वीट जैगरी है कुछ भी आप इसमें डाल दीजिए
2: जी,
6: और उसमें इस बोतल को लकड़ी से खरोंच कर डाल दीजिए
2: जी।
6: आप देखेंगे कि इसमें कुछ भी काम नहीं है किसान के लिए, और किसान चाहे तो सुबह शाम एक दो बार इसको घुमा सकता है
2: जी।
6: और 7 दिन में गर्मी के दिनों में ये तैयार हो जाता है और विंटर सीजन में थोड़ा सा समय लेता है क्योंकि बैक्टीरिया है, थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने में समय लेता है
2: जी।
6: इसके मात्र यूज से आपकी जमीन सॉफ्ट हो जाती है
2: जी।
6: कई बार आपने देखा होगा किसान को बोला जाता है जिप्सम डाल दीजिए, कैल्शियम सल्फेट W2H2 उसमें डाल दीजिए
2: जी।
6: तो जब आपकी जमीन वेस्ट डिकम्पोजर से सॉफ्ट हो रही है तो उस चीज की जो आपकी परचेज है वो घट जाती है
2: जी।
6: दूसरी चीज आपकी पोरोसिटी ऑफ द लैंड
2: जी
6: वो बढ़ जाती है, केंचुआ बहुत जल्दी आता है इसके यूज करने से। और केंचुआ जब एक बार आ जाता है खेती के अंदर तो आप देखिए कि उसके अंदर वाटर पेनिट्रेशन क्वालिटी और उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन बढ़ जाता है
2: जी।
6: जमीन के अंदर ऑटोमेटिक ही एक अंडर वाटर अंडरग्राउंड रिजर्वायर का रूप ले लेता है और आपकी फसल को सूखे से लड़ने की क्षमता इस प्रोडक्ट से आ जाती है।
2: यानी ये तमाम फायदे पहुंच सकते हैं ना सिर्फ किसान बल्कि देखिए जो हमारी मृदा है जहां से हम उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हमें मिले, तो ये तमाम फायदे हो सकते हैं। कृष्णा जी आपसे हम जानना चाहेंगे जैसे अगर डीकम्पोजर की फिलहाल हम यहाँ बात करें तो किसान जो है भारी संख्या में पहुंचते भी होंगे ना सिर्फ प्रशिक्षण के लिए लेकिन इस तरह के जो उत्पादन का क्या एक जो मूल्य है वो निर्धारित किया गया है?
4: तो एक प्रमोशन के लिए किया गया था एक्चुअली। इसकी भी एक स्टोरी थी कि पहले हम लोग डास्टी जैविक खेती के अंदर इसमें इन्वॉल्व था, 25 साल से हम लोग यही काम कर रहे हैं लेकिन जो ये हम लोग बैक्टीरिया या फंगस बनाते थे ये खाली इंडस्ट्री के लिए थे
2: जी।
4: तो ये नई सरकार आने के बाद बोला गया कि भाई आप किसान के लिए क्या कर रहे हैं, सर इसको डेवलप किया गया, डेवलप पहले से था लेकिन और उसको मॉडिफाई किया गया, ये ध्यान रखा गया कि इसको जो है किसान अपने आप मल्टीप्लाई करे, यही एक टारगेट था। और सबसे बड़ी समस्या थी कि अच्छी क्वालिटी का हमारे पास मैन्योर नहीं है, जानवर इतने हैं नहीं, जो वेस्ट है उसको कैसे किया जाए। तो इसके लिए ये बनाया गया तो देखा गया कि 30 दिन के अंदर बिना किसी मैनेजमेंट के
2: जी।
4: राणा जी जैसे बता रहे हैं तो इन्होंने बहुत एक्सपीरियंस किया है और मतलब इन्होंने बहुत काम किया, 6 महीने से ये जुड़े हुए हैं लेकिन जितना काम इन्होंने गांव गांव जाके किया है
2: जी।
4: वो मतलब एक बहुत ही मतलब नोटिसेबल है
2: जी।
4: और इसके साथ जो हमारी आज की डेट में हमने करीब 30,000 बोतल किसानों को दी है
2: जी।
4: एक ही बोतल हम एक गांव में देते हैं ताकि उससे आप किसान आसपास ले लें। खूबी इसमें यह है कि 20 रुपए रखा गया है, एक बोतल लेने के बाद आप सालों साल इसको यूज कीजिए। जैसे बरसाना में है गौशाला है वहां पर उन्होंने दिया तो उन्होंने 1,000 टन इससे एक बोतल से बना दिया। तो कॉस्ट आपकी अगर पर केजी देखें तो 0.001 पैसा आती है, तो कॉस्ट कुछ नहीं है। और इससे कॉस्ट आपका किसान जो तेलंगाना में है इसको स्प्रे करता है
2: जी,
4: तो वो कॉटन पे स्प्रे कर रहा है, सब हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजर लेकिन वो स्प्रे कर रहा है, उसको फायदा मिल रहा है। इसी तरह से आपके महाराष्ट्र में है, ऑल ओवर इंडिया इसमें मतलब सारा इसमें जुड़े हुए हैं
2: जी।
4: और हर एक किसान को आज तक अभी कोई भी नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आई कि इससे काम नहीं कर रहा है, और किसान जुड़ते चले आ रहे हैं और हम लोग खाली एजुकेट करते हैं कि आप इसको अपने आप बनाएं, अपने आप कर दो, यही एक हमारा मोटो रहा है कि आप इसको जितना से अधिक से यूज करें। तो उसके फायदे अनेक हैं और एक बार जो किसान यूज करेगा वो अपने आप इसको छोड़ेगा नहीं।
7: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनू रेडियो आपड़ी बातें।
2: कि जब बात आती है तो यहाँ पर मनु जी आपसे भी हम जानना चाहेंगे, हमारे जो किसान हैं वो खेती करते हैं जैसा आपने बताया था पीजीए सिस्टम के जरिए भी 1 से 3 साल का जो समय है उसके बाद एक अच्छा उत्पाद हम कह सकते हैं वो हमारे पास होता है, लेकिन कुछ किसान ऐसे हैं जो चाहते हैं कि जल्दी से जो उनका उत्पाद है वो बाजार में जाए उसके बाद ही, क्योंकि उनको जब तक कुछ आय नहीं मिलेगी वो नया कुछ शुरू नहीं कर सकते, तो उनके लिए किस तरह का प्रावधान रखा गया है? जैसा आपने कहा कि शुरुआत से हम कोशिश करते हैं जो उनका उत्पाद है उसको हम लेते हैं फिर बाजार में पहुंचाते हैं।
5: पीजीए सिस्टम के अंदर में पहले तो किसानों का किस तरह से हम लोग इनकम जनरेट करें
2: जी,
5: हम उस चर्चा पे थोड़ा आए। सबसे पहले हम लोग अभी तक देख रहे थे कि इनपुट कैसे ऑन फार्म इनपुट पे कम से कम कॉस्ट में उनके खर्चे, किसान जब वो खेती कर रहे हैं तो उनका कैसे कम से कम लागत में खेती ज़्यादा से ज़्यादा हो
2: जी,
5: तो वहाँ उनका थोड़ा सा बचत
2: जी।
5: दूसरा जब हम लोग बाजार तक मंडी तक उनके फलन को लेके आते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, जब क्लस्टर जो हम लोग फॉर्म कर रहे हैं ये क्लस्टर के अंदर ही पैकेजिंग का प्रावधान कर रहे हैं
2: जी।
5: तो पैकेजिंग जब हम उनसे करवाते हैं तो हम उस पैकेजिंग का लेबर कॉस्ट भी हम किसानों को देते हैं
2: जी,
5: वो भी उनका एक एडिशनल इनकम,
2: वो भी आय का जरिया मान,
5: एक आय का जरिया मान सकते हैं
2: जी।
5: अब जो किसान है उनके घर में और भी परिवार सदस्य हैं जो उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं पैकेजिंग करने के लिए
2: जी, बिल्कुल।
5: तो हमारे तरफ से पैकेजिंग चला जाता है, ब्रांडिंग, जैसे अब हम लोग ब्रांडिंग कर रहे हैं पश्चिम बंगाल का जो प्रोडक्ट है प्रकृति
2: जी,
5: तो वो लोगो ब्रांड हम सब प्रकृति का किसानों के पास भेज दिए, वो वहीं पे अपना लोगो लगाए, स्टिकर लगाए, तो वहां से उनको एक इनकम जनरेट हुआ, प्लस उनके फलन का जो दाम है वो उनको उचित दाम मिला
2: जी।
5: तो बाजारी का बाजार तक जाते जाते हम जब किसान से परचेस करें तो किसानों को सबसे पहले इनपुट में कम लगा, लागत
2: जी, लागत कम हो जाती,
5: लागत कम लगा, उससे उनकी बचत हुई। दूसरा उनको पैकेजिंग के जरिए जो एडिशनल उनको जो बेनिफिट है जो हम लोग उनको प्रोवाइड कर रहे हैं वहां से उनको इनकम जनरेट हुआ
2: बिल्कुल।
5: तीसरा जो उनके फलन है उसको हम लोग जब उचित दाम दे रहे हैं जो नॉर्मल उत्पाद से, नॉर्मल जब केमिकल में खेती करते उससे थोड़ा ज्यादा ही है उनको परसेंटेज
2: जी,
5: तो वहां इनको बेनिफिट है। तो कहीं ना कहीं तीन सर्कल्स है, तीन तरीके से उनको पैसा मिलता है
2: जी।
5: चौथा जब हम लोग आते हैं प्रोसेसिंग पे, अभी क्लस्टर में एक प्रोसेसिंग प्लांट हम लोग लगा दिए तो प्रोसेसिंग प्लांट भी वहीं चली, वहां से भी जो प्रोसेसिंग प्लांट चलाने के लिए हमें जो लेबर चाहिए
2: जी,
5: उसमें कुछ वहां इनको एडिशनल बेनिफिट
2: बिल्कुल।
5: तो इस तरह का ये जो एक समीकरण है पूरा का पूरा कहीं ना कहीं किसान के इनकम को
2: आय का जरिया, आय का जरिया बन सकता है
5: आने वाला दिन में। ये पूरा जो प्रकल्प है ये बहुत ही सुंदर तरीके से इस प्रकल्प को किया गया
2: जी,
5: यहाँ पे हम लोग एक गांव में सभी कुछ पूरे सेंटर को देख रहे हैं आने वाले दिन में
2: जी,
5: पैकेजिंग सेंटर, प्रोसेसिंग सेंटर, और वहीं हमारा लॉजिस्टिक गाड़ी चली गई और हम लोग ले के। लेकिन अब जैसे हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट है, अब उसका डिमांड, कोई सब्जी अगर मान लीजिए पश्चिम बंगाल में है और उसका डिमांड आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में सूखा पड़ा
2: जी,
5: तो हम सब्जी अगर बंगाल से महाराष्ट्र में दे सकें और सूखा पड़ गया, कभी कभार होता ही है, तो ये सब्जी को कैसे लेके कैरी करें ट्रेन में या रोड में? अगर ट्रेन में हमें रेफ्रिजरेटेड जगह मिलता है तो हम लोग उसमें कैरी करें तो इसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा रहेगी
2: जी,
5: तो जितना जल्दी जल्दी पहुंचे
2: उत्पाद है वो खराब नहीं होगा,
5: खराब नहीं।
2: लेकिन अगर उत्पादों की हम बात करते हैं मनोज जी, कौन कौन से उत्पाद हैं जो तैयार किए जा रहे हैं या क्या क्या विकल्प हम ये कह सकते हैं किसानों के सामने है अगर वो इसमें अपने उत्पाद तैयार करना चाहते हैं तो?
5: देखिए उत्पाद में तो मैं अपने पश्चिम बंगाल क्षेत्र की बात कर रहा हूँ और जो हम लोग अपने सेक्टर में काम कर रहे हैं उस सेक्टर पे ही बात करते हैं
2: जी।
5: तो जहाँ सबसे ज्यादा राइस का प्रोडक्शन है और सब्जियों का प्रोडक्शन है तो इसी का सबसे ज्यादा उत्पाद होता है। जो किसान जो उत्पाद कर रहा है जिसमें वो बेहतर है उसी वही वो कर रहे हैं, हम लोग ये नहीं बोलते कुछ अलग करो
2: जी,
5: क्योंकि उन वो पीढ़ी दर पीढ़ी वही खेती करते आए हैं
2: बिल्कुल,
5: और जिसमें वो एक्सपर्ट है तो वही वो कर पाए जो वो करते हैं, क्योंकि उनको क्रॉपिंग पैटर्न पता है उस प्रोडक्ट के बारे में, और हमें बाजार में वही प्रोडक्ट को बेचना है जो वो खेती कर रहे हैं, बस उसमें बेहतर इनपुट दे, जैविक इनपुट,
2: कैसे उसकी जो गुणवत्ता है उसको और बढ़ाया जाए, मूल्य संवर्धन जो है उसमें किया जा सके। कृष्णचंद्र जी आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसा कि यहाँ मनोज जी ने हमें बताया और हम ये भी मान सकते हैं कि वो किसान जो मतलब ग्रामीण हम कह सकते हैं उनको जिनके पास शायद भूमि नहीं है कृषि के लिए, वो भी अगर इस तरह की इकाइयां लगती हैं, प्रसंस्करण की इकाई है, इसके जरिए उनको भी आय का जरिया मिल सकता है?
4: बिल्कुल मिल रहा है, और जैसा इन्होंने बताया वेस्ट बंगाल इस तरह से आपके साउथ में जाए, केरला है, तमिलनाडु है, वहां पर जो स्पाइसेस वगैरह हो रहा है वहां का जो प्रोडक्ट है, नॉर्थ ईस्ट में जो प्रोडक्ट है वो उन्होंने इंटरलिंक कर दिया है
2: जी।
4: तो ये जितने हमारे रीजनल काउंसिल्स हैं एक दूसरे से जुड़ गए हैं, तो जो इनके पास डिमांड है इनके पास से दूसरे को बेचते हैं, दूसरे का इनके पास आता है, तो एक इस तरह से आदान प्रदान चालू हुआ है। तो अभी तक क्या है कि उत्पाद नहीं था, अब ये इस साल से अभी नवंबर से इन्होंने चालू किया, तो आप देखेंगे अक्रॉस द इंडिया हर प्रोडक्ट आपको मिलेगा, स्पाइसेस वहां हो रहा है तो वहां से यहाँ आएगा, वो आपको वहां केरला का भी मटेरियल दिखाई देगा, तमिलनाडु भी दिखाई देगा, नॉर्थ ईस्ट का भी दिखाई देगा, तो सारे के सारे एक साथ आपको हर शॉप पे दिखाई देंगे
2: बिल्कुल।
4: तो ये ऑलरेडी चालू हो चुका है और वो बहुत जल्दी आपको मार्केट में इसके उपलब्धि
2: उपलब्धता हो सकेगी। साथ साथ यहाँ राणा जी आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसे कि आप जैविक खेती कर रहे हैं, उत्पाद आपने बताया, डिकम्पोजर की भी आपने बात की, इससे क्या फायदे हुए, और लेकिन अगर हम बात करते हैं आने वाले समय में अगर एक किसान की हम बात करते हैं किस तरह का बदलाव वो चाहता है कि जैविक खेती जो है वो तो कर रहे हैं लेकिन बदलाव कैसा है जिससे और आसानी उसको हो सके और ज्यादा से ज्यादा किसान जैविक खेती करें और उसके बाद अपने उत्पाद को बेच सकें?
8: आज की तारीख में मुकुल जी किसान के सामने एक समस्या रहती है कि उसको आमदनी का जरिया उसका घटता जा रहा है
2: जी,
8: और उसके खर्चे खेती पर बढ़ते जा रहे हैं। तो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र के द्वारा जो हमको खेती से संबंधित जो भी वेस्ट डिकम्पोजर है और दूसरे सॉइल हेल्थ रिवाइवल, और डॉक्टर साहब से आप बीच में पूछ भी सकते हैं कि और भी इस पर ये काम कर रहे हैं, तो इन चीजों को लेकर के जब हम खेती करना शुरू करते हैं तो हमारी खेती में जो फर्टिलाइजर का और पेस्टिसाइड का और दूसरी चीजों का खर्चा है ये ऑलमोस्ट जीरो पर आ जाता है
2: जी,
8: तो ये हमारी एक बचत हो जाती है
2: बिल्कुल।
8: दूसरी चीज किसान सोचता है कि मेरा प्रोडक्शन घट जाएगा, मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम से जब हम खेती कर रहे हैं हम देखते हैं कि कहीं पर भी प्रोडक्शन घटता नहीं है
2: जी,
8: कहीं पर भी प्रोडक्शन नहीं घटता है, और बल्कि और ज्यादा बड़ी बात नहीं होती है कहने के लिए, कई गुना प्रोडक्शन उसका बढ़ रहा है
2: जी। ये आपका निजी अनुभव है यानी?
8: मेरा अपना अनुभव है। दूसरे जो भी प्रोडक्शन आ रहा है वो ऑर्गेनिक आ रहा है, और समाज को भी चाहिए, जो लोग मेट्रो सिटीज में रहते हैं उनको कंज्यूमर के रूप में ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिल जाता है, किसान को उसका अच्छा दाम मिल जाएगा, तो इससे अच्छा ये सरकार की बहुत अच्छी योजना है परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत जो काम चल रहा है
2: जी।
8: इसमें आजकल आप देखते हो कि पराली को जलाना बहुत एक समस्या के रूप में खड़ा हो रहा है
2: जी।
8: तो ये जो वेस्ट डिकम्पोजर है
2: जी,
8: अपने आप में जो भी आपका रेसिड्यू बचता है उसको बहुत 15-20 दिन में ही गला करके उसको मैन्योर में कन्वर्ट कर देता है।
2: फसल अवशेष जो है उसके लिए भी ये काफी लाभदायक
8: जी हाँ, उसको कन्वर्ट कर देता है
2: जी।
8: और जो आप बाहर से फर्टिलाइजर खरीदते हो उस सब की पूर्ति इसी के अंदर हो जाती है, जमीन सॉफ्ट हो जाती है, आपको प्रोडक्शन अच्छा आता है
2: जी।
8: आलू की फसल में देखें कि भाई पोटाश डाल दो और दूसरी चीजें डाल दो या इस पे अर्ली ब्लाइट आएगा, लेट ब्लाइट आएगा, कई बार किसान इन चीजों को समझ नहीं पाता है। ये सिंपल फंडा है, फसल अगर पानी देना है तो इसको एक एकड़ में 200 लीटर का ड्रम बनता है, उसे पानी के साथ चलाइए। दूसरे आपको स्प्रे करना है तो 10% 20% से लेकर के इसका स्प्रे कीजिए
2: जी।
8: तीसरे आपका जो काव डंग्स है, दूसरा वेस्ट है, उसका मैन्यूर बनाना है तो 40 दिन में पूरी तरह से इसको मैन्यूर बना के कन्वर्ट करके आपके हाथ में देता है, और आपकी सारी समस्याओं का समाधान एकमात्र इस बोतल से होता है
2: जी।
8: और आप इससे कितना ही आप खेती कर सकते हो, वह 1000 बीघे तक खेती आप कर सकते हो।
2: बिल्कुल, ये तमाम फायदे इसके हम मान सकते हैं, और इसका लाभ देखिए जो किसान है उनको सीधे तौर पर मिल भी रहा है। डॉक्टर कृष्णचंद्र, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि अगर हम बात करते हैं बदलाव की, तो आने वाले समय की अगर बात की जाए तो क्या स्थिति हमें नजर आएगी जैविक खेती की, और उसके बाद जैविक बाजार की भी हम बात करते हैं, सिक्किम के बाद और कितने राज्य हैं जो इस श्रेणी में आने वाले हैं?
4: देखिए, इसमें मूवमेंट तो हर जगह, सारे स्टेट्स ने कुछ न कुछ ऑर्गेनिक को शुरू कर दिया
2: जी।
4: तालुकाज हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, वो कन्वर्ट होने शुरू हो गए हैं, और उन्होंने इस पे काम चालू हो गया। और जहाँ तक ये राणा जी बता रहे हैं, तो ये आपको इस समय शायद देखने में लग रहा हो कि एक बोतल में क्या क्या गुण है
2: जी।
4: तो ये बिल्कुल जो बोल रहे हैं, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बोल रहे हैं
2: जी।
4: और इसमें ऐड करना चाहेंगे कि कोई भी किसान, कोई भी साइंटिस्ट इसको लेके यूज करके देख ले
2: जी,
4: उसको रिजल्ट बहुत मिलेगा। और इसके साथ साथ जो जिन्होंने बताया ना सॉइल रिवाइवल की बात, तो इसके ऊपर उन्होंने काम किया है। तो मेन क्या समस्या आपको मालूम है कि इंटरनेशनली भी, अपना नेशनली भी जमीन के लिए काफी काम चल रहा है, जमीन हमारी खराब हो चुकी है, तो उसके लिए उन्होंने रिवाइवल बनाया। तो रिवाइवल इसने नाम रखा है कि जमीन जो खराब हो गई है, अगर आप 6 महीने उसको आप पानी के साथ डालते रहें, 6 महीने बाद आपकी पूरी जमीन चेंज हो जाएगी। अब ये मतलब अभी आपको लग रहा है थ्योरेटिकल, लेकिन इसको प्रैक्टिकल हम दिखाएंगे
2: जी।
4: आपके
2: प्रयोगात्मक रूप से अगर हम माने तो हो सकता
4: दिखाएंगे
2: है।
4: या है
2: जी।
4: और वो हम लोग चालू कर दिए काम, और कुछ किसानों के खेत में ऑलरेडी हमने किया हुआ, पूरी जमीन चेंज हो गई। इसके साथ साथ हम और एक प्रोडक्ट ला रहे हैं जो कि प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है, उसको जब स्प्रे करेंगे तो प्लांट की सारी जो न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी हो जाएगी। ये सब आने वाले, इनमें सब में खूबी यही है कि ये सब चीजें आप एक बॉटल लेंगे, फिर आप सालों साल उसको आप बनाते रहिए, आप 10,000 लीटर, 20,000 लीटर, 1,000,000 1,00,000 लीटर तक बनाइए, दोबारा आपको पास हमारे पास आने जरूरत नहीं है, आप खुद प्रोडक्शन कीजिए। तो टेक्निक ऐसी डेवलप की जाएगी कि किसान अपने आप बनाए। तो ये आने वाले दिनों में एक रिवोल्यूशन होगा, और ये कहना मतलब हम अत्युक्ति नहीं समझते हैं कि किसानों को जो आगे बेनिफिट मिलने वाला है, एक तो ये इनपुट के जरिए, दूसरा मार्केट के जरिए, और तीसरा जो उनको आगे इनकम होने वाली, वो मुझे लगता है कि जो हमारे प्रधानमंत्री का विजन है 2022 तक डबल की है, तो हमें लगता है 3-4 गुने हम लोग जैविक के जरिए कर सकते हैं
2: जी।
4: और उसका लॉजिक भी है, क्योंकि आपको मालूम है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया हमारी जो है 60% जो लैंड है
2: जी
4: स्ट्रेस में है, आपकी रेन फेड एरिया, तो रेन फेड एरिया अगर हम देखते हैं तो 80 मिलियन हेक्टेयर लैंड हमारी इसके अंदर में है, जहां की उत्पादन आपका 30% कम है। अगर आप जैविक अडॉप्ट करते हैं तो 22% आपका उत्पादन बढ़ जाता है, तो उससे आपकी जो फूड सिक्योरिटी की बात होती है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी।
2: बिल्कुल, खाद्य सुरक्षा की बात जो है उसकी भी सार्थकता
4: और क्वालिटी, आप जो लेते हैं इतनी बड़ी थाली ले रहे हैं उसके अंदर सारे के सारे आपके केमिकल्स पड़े हुए हैं, आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू कुछ नहीं है। जब आप ऑर्गेनिक लेंगे छोटी थाली लेंगे, लेकिन उसमें हर चीज आपकी है, कार्बोहाइड्रेट एलिमेंट सब कुछ आपको प्रेजेंट है जो आपकी बॉडी के लिए सही है। और ये भी तय है कि अगर आप जैविक उत्पाद को खाली प्योर उत्पाद खाएं, छह महीने आप अपने बॉडी में चेंज देखेंगे
2: जी।
4: जो आपको शुगर की बीमारी हो रही है, बीपी हाई है, लो है, आपका जो तरह तरह की बीमारियां हो रही है, ये सब इससे निवारण है।
2: बिल्कुल डॉक्टर चंद्रा, जो किसान है वो तो आपने बताया कैसे जुड़ेंगे, लेकिन उपभोक्ता भी है,
4: उपभोक्ता के लिए भी, मतलब किसानों के लिए भी है, उपभोक्ता के लिए। और सबसे बड़ी बात, अपनी जमीन को बचाना है तो आपको जैविक के ही तरफ जाना है
2: जी।
4: अगर आगे फ्यूचर में एनवायरमेंट के लिए, आपके सॉइल के लिए, हर चीज के लिए सोल्यूशन आपका जैविक है। और इससे साथ साथ एक और ऐड करना चाहेंगे, जैसे मनु जी वगैरह भूल गए, इसमें थोड़ा सा एक काम ये लोग और भी कर रहे हैं कि किसानों के इन्होंने दे रहा है कि जो भी किसान काम कर रहे हैं उनको आपका जो सीड है, सीड भी वो लोग वहां पर उत्पाद कर रहे हैं, आपस में सीड बांट रहे हैं, तो सीड उत्पादन भी वहां पर,
2: यानी बीज उत्पादन भी, बीज उत्पादन मुनाफा
4: शुरू हो रहा है। और जिसके पास जानवर नहीं है, तो जानवर जिसके पास नहीं तो उसको भी डिकम्पोज करके वो अपना मटेरियल आसपास में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये सब धीरे धीरे धीरे धीरे उद्योगीकरण की तरफ आपका अग्रसर हो रहा है, कृषि जो है आपकी पूरी साइड जा रही है,
2: बिल्कुल एक पूरी कड़ी है। लेकिन जो किसान इसमें जुड़ना चाहते हैं, यानी जो जानना चाहते हैं कि अगर वो बाजार में आना चाहें तो कैसे वो इस बाजार तक पहुंच पाएंगे?
4: बाजार के लिए हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया, देखिए हमने करीब 250 रीजनल काउंसिल गवर्नमेंट के बना रखा है, जो कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सारे हमारे इसमें जुड़े हुए हैं, साथ में हमारे ट्रेडर्स जुड़े हुए हैं, प्राइवेट्स वाले जुड़े हुए हैं, करीब 44 ट्रेडर्स हैं ऑल ओवर इंडिया। तो गवर्नमेंट से भी आप हेल्प ले सकते हैं, ट्रेडर्स से भी ले सकते हैं। ट्रेडर्स से लेने में फायदा ये है कि आपको डायरेक्ट मार्केट मिल जाती है, ये लोग एश्योर कर देते हैं कि डायरेक्ट मार्केट है, और आपको बाकी जो सर्विसेज हैं इनके थ्रू मिल सकती है। तो हर एक स्टेट में आपके पास रीजनल काउंसिल जुड़ा हुआ है, पोर्टल पे जाइए, आपका pgsindia.gov.in, उसमें आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी,
2: इस पर सारी जानकारी जो है,
4: सारी जानकारी है, और उसको उनको आप किसी से कांटेक्ट कर सकते हैं, सभी आपको प्रोवाइड करेंगे।
2: बिल्कुल तमाम जानकारी देखिए आपको यहाँ पर मिल जाएगी, और कोशिश यही कि हमारे ज्यादा से ज्यादा जो किसान है वो इससे जुड़ सकें। साथ ही बाजार की जब बात कही जाती है तो ये जरूरी हो जाता है किसान उस बाजार को समझे, साथ ही साथ उस बाजार के पीछे जो अर्थशास्त्र, यानी कैसे उनको मुनाफा मिल सकता है, उसकी भी जानकारी किसानों तक पहुंचाई जा सके। और वही जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से लगातार हम भी आप तक पहुंचा रहे हैं, और आज भी हम उम्मीद यही करते हैं कि जो हमारे किसान हैं उन्होंने इस बात को और बेहतर ढंग से जाना होगा कि अगर आप जैविक खेती कर रहे हैं उससे उत्पाद जो आपका तैयार होता है कैसे आप उसको बाजार में पहुंचाएंगे। और यही जानकारी जो हमारे आज विशेषज्ञ स्टूडियो में आए मेहमान हमारे आप तीनों ने दी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ जब बात कही जाती है कि जैविक बाजार और संभावनाएं अपार, यानी एक ऐसा बाजार जिसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं, मुनाफा है, लाभ है सिर्फ किसानों को, और वही जानकारी आज आपने यहां पर इस कार्यक्रम के जरिए उस जानकारी को जाना। लेकिन सिर्फ जानने से काम नहीं होगा, आपको थोड़ा सा और कदम जो है एक कदम आगे बढ़ाना होगा, और उस जो किसान हमारे जो जैविक खेती कर रहे हैं उनकी श्रेणी में आना होगा, जिससे ना सिर्फ हमारे किसानों की जो आय है वो दोगुनी हो सके, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो सकती है, दोगुनी हमें करनी होगी। तो ये एक विकल्प है, साथ ही विकल्प है हमारी जो मृदा है उसके स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए, यानी हमारी जो मृदा है उसकी सेहत का सुधार हम करेंगे, किसानों की आय भी होगी और उसके साथ साथ हमारी सेहत का भी, यानी हमारे स्वास्थ्य की भी रक्षा हो सकेगी अगर हम जैविक उत्पाद का सेवन करते हैं।
1: जी हाँ किसान साथियों, यहाँ पर हमें रुख करने की आवश्यकता है जैविक कृषि की ओर। किसान साथियों, आपने आज के इस कार्यक्रम में विस्तार से जाना कैसे और किसे कहते हैं जैविक खेती। किसान साथियों, जैविक खेती के माध्यम से ना केवल हम हमारी मृदा का स्वास्थ्य सुधारते हैं, बल्कि हमारा जो स्वास्थ्य है उन्हें भी हम सुधारते हैं। साथ ही जो जैविक कृषि के जो उत्पाद है उसे हमें अधिक से अधिक लाभ मिल सकता है, इससे हमारे किसान भाइयों की जो आमदनी है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। तो किसान साथियों, आशा करते हैं आज के इस कार्यक्रम में आपने बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को लिया होगा। इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांटिया भील 90.8 FM के साथ।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, बोला बारिश हो गया था तो एक साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। डीबीटी के माध्यम से 1,44,667 रुपया हमको मिला है। अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसे मुझे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
6: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
5: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो पीएम सूर्य घर .gov.in पर।
7: हर घर

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, ओला बारिश हो गया था तो एक साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। डीबीटी के माध्यम से 1,44,667 रुपया हमको मिला है। तुम अपना बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसे मुझे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: रेडियो स्टेशन 90.8 FM, टैंटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे, आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपू रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमरता रेजो टांटिया भिलनो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM। किसान साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, छावा की आवाज। स्वागत करते हैं आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। किसान साथियों, जैसा कि रेडियो टांटिया भील 90.8 FM छावा की आवाज आपके लिए खेती बाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से आप तक खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक पहुंचाने के प्रयासों में लगी हुई है। किसान साथियों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM का यही उद्देश्य है कि वह अपने किसानों तक महत्वपूर्ण जानकारियों को पहुंचाए, कृषि की नई तकनीकों को पहुंचाए, जिससे हमारे किसान की जो आजीविका है वो सशक्त बन सके और कृषि के नए से नए उपकरणों का उपयोग कैसे करना है आदि जानकारियों से हमारा किसान जो है वह अवगत हो सके। इसी के साथ किसान साथियों, आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए आज के इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे और आज हम जानेंगे कि मोटे मोटे धान की खेती से जुड़े हुए, उसका उपयोग से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बातों को आज हम जानेंगे, सीखेंगे और अपने खेतों में इसका प्रयोग करके हम जानेंगे।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
6: से पहले मैं आपसे मोटे अनाजों के बारे में जानना चाहूंगी। अक्सर हम इस समय सुन रहे हैं और काफी जोर दिया जा रहा है मोटे अनाजों को लेकर, तो क्या अहमियत है इनकी, हमारे आहार का हिस्सा ये बने, ये क्यों जरूरी है?
7: देखिए, अगर हम बात करें आज से मतलब 30 साल पहले की
6: जी,
7: तो हमारे देश में जो खेती होती थी मोटे अनाज की खेती होती थी। मोटे अनाज बताना चाहूंगी क्या क्या हमारे हैं। मक्का है, आपका जौ है, रागी, ज्वार है, बाजरा है, रागी है, कोदो है, और भी छोटे अनाज है जो इनकी
6: श्रेणी
7: में आते हैं।
6: बिल्कुल,
7: तो इन्हीं की खेती हमारे यहाँ पे होती थी। पर 60 के दशक के बाद क्या हुआ कि हम जैसे चावल और गेहूं की खेती करने लगे और इनको हम भूल गए एक तरीके से
6: जी।
7: तो अब इसका दोबारा से चलन, क्योंकि विश्व इसकी वैश्विक मांग इतनी ज्यादा हो रही है कि मोटे अनाज का हमें अपने भोजन में शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये पोषणता की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है
6: जी।
7: तो इसीलिए अब इन पे इतना ध्यान दिया जा रहा है कि मोटे अनाजों को भी अपने हम भोजन में शामिल करें, गेहूं चावल के साथ साथ। हमें ये नहीं कि एक ले लिया तो दूसरे को हटा दिया, हमें इन सबको सम्मिलित करके चलना है। तो हम एक अपना कहते हैं ना, जो बात करते हैं कि अगर हमें, क्योंकि विविधीकरण ही एक तरीके का ये है, और विविधीकरण से ही आपकी जो दुगनी आय की जो हमारा सपना है वो भी पूरा हो सकता है। तो इसलिए इसकी महत्वता और बढ़ जाती है मोटे अनाज का हमारे भोजन में और हमारी खेती में इस्तेमाल होना।
6: बिल्कुल, तो काफी महत्ता है मोटे अनाजों की और इसके प्रसंस्करण से किसान किस तरह से दोहरा लाभ ले सकते हैं, इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर।
8: पोषक तत्वों से भरपूर मोटे अनाज न सिर्फ आपकी सेहत को दुरुस्त करते हैं, बल्कि किसानों की आमदनी को दोगुना करने में भी मददगार साबित होते हैं। हमारे यहाँ मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में मोटे अनाजों की खेती की जाती है। इनके अलावा ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी मोटे अनाज उगाए जाते हैं। सरकार मोटे अनाजों की खेती और इसके प्रसंस्करण को बढ़ावा दे रही है। मोटे अनाजों में बाजरा, ज्वार, रागी, कांगनी, कोदो, कुटकी, चीना, सावा, ब्राउन टॉप मिलेट, टेफ्र मिलेट और फोनियो मिलेट आते हैं। लोगों के खान पान की आदतों में आए बदलाव और स्वास्थ्य कारणों से मोटे अनाजों से बनाए जा रहे खाद्य उत्पादों की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में मोटे अनाजों का प्रसंस्करण कर कई तरह के उत्पाद बनाए जा सकते हैं। जौ, बाजरा और रागी से बिस्किट, चिप्स और नमकीन बना सकते हैं। मोटे अनाज से छोटे बच्चों के लिए भी भोजन बनाया जा सकता है। मोटे अनाज में मूल्य संवर्धन करके इनसे रोटियां भी बनाई जा सकती हैं और इन रोटियों को करीब 6 महीने तक इस्तेमाल किया जा सकता है। ज्वार से चॉकलेट, मफिन्स, पानीपुरी, बर्फी और समोसा बना सकते हैं तो बाजरे से मुठिया, लड्डू और रागी से बालूशाही और पकौड़ी बनाई जा सकती है। इस तरह मोटे अनाज का प्रसंस्करण करके आप कई तरह के उत्पाद बनाकर अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं।
6: जी हाँ, तो ये रिपोर्ट आपने देखी। आइए अब आगे बढ़ते हैं बातचीत को आगे बढ़ाते हुए, अगले मेहमान का रुख करते हैं। डॉक्टर श्रीवास्तव, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज हम लाभकारी कीटों की बात करने जा रहे हैं, तो ये कौन से लाभकारी कीट हैं, इनके बारे में बताएं, क्योंकि कीट का जिक्र आते ही किसानों को एक दहशत सी हो जाती है, क्योंकि फसलों को काफी नुकसान होता है कीटों से, लेकिन कुछ कीट लाभकारी भी होते हैं, तो वो कौन से कीट होते हैं बताएं।
9: अच्छी, बिल्कुल, हमेशा ये सोचते हैं कि किसान कि अगर खेती बाड़ी करनी है तो हमेशा एक हानिकारक कीटों की बात करते हैं
6: जी।
9: लेकिन दूसरी बात ये है कि अगर हम हमेशा खेती बाड़ी में कीड़ों की समस्या की बात करते हैं तो कीड़ा इकोसिस्टम है, एक पर्यावरण है, जैसे हर जगह पर हर तरह के प्राणी होते हैं, हर पेड़ पर कई तरह के जीव रहते हैं, उसी तरह से हर इकोसिस्टम में, हर खेत में हर तरह के कीड़े रहते हैं। उनमें कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो कि परभक्षी कीट होते हैं, कुछ ऐसे कीट होते हैं जो कि परागण क्रिया में बहुत मददगार होते हैं। अगर हम उन सभी कीटों को हटा देंगे तो क्या होगा कि जिनको हम हानिकारक कीट समझ रहे हैं वो मर जाएंगे, तो उनकी अनुपस्थिति में जो हमारे उपयोगी कीट है वो भी मर जाएंगे और हमारी जो आमदनी है उस पर असर पड़ेगा, क्योंकि हम लगातार जहर वाले जो पेस्टिसाइड है वो डालते जा रहे हैं, जहर बढ़ा रहे हैं, यानी आमदनी की दुगना करने की बात करें, लेकिन अगर हमारे खर्चे बढ़ते रहेंगे क्योंकि पेस्टिसाइड बहुत महंगे आते हैं, और दूसरा हमारा जो पर्यावरण है वो भी दूषित होता जाएगा, और जो भी प्रोड्यूस हम पैदा कर रहे हैं वो भी हमें खाने में जहरीला होगा, यानी कि हम मानव शरीर के स्वास्थ्य के प्रति भी लापरवाही बरत रहे हैं। और दूसरा, जब हम बात करते हैं कि हमें आमदनी दुगनी करनी है, दुगनी कैसे करेंगे, तो हमारे पास बहुत सारे लाभकारी कीट है, जैसे अभी आप बता रहे थे कि खेती करनी चाहिए, मंडुए की और जितने भी हमारे फॉर्मुलेट्स है ना
6: जी।
9: अभी हम खेती के साथ में मधुमक्खी पालन करते हैं तो हमारे साथ एक साथ दो इनकम के जरिए होंगे। और दूसरा, अगर हम रेशम कीट पालन करते हैं तो हम रेशम उद्योग आगे बढ़ा सकते हैं
6: जी।
9: परागण कीटों की हम जो बात करें, अगर फूलों वाली कोई भी फसल है, चाहे वो सरसों है यानी कि तिलहन है, दालें हैं, फल हैं, सब्जी है, अगर परागणकर्ता कीट वहां भ्रमण नहीं करेंगे तो फूलों में नहीं क्रिया नहीं होगी और परागण क्रिया नहीं होगी,
6: उसकी
9: अनुपस्थिति में कोई भी फल पैदा नहीं होगा, तो समझिए डायरेक्ट लॉस हो गया
6: जी। बिल्कुल डॉक्टर श्रीवास्तव, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि जो कीट है वो हानिकारक ही नहीं होते हैं बल्कि कई कीट लाभकारी भी होते हैं, ये उत्पादकता के लिए भी अहम है और इसके साथ ही किसानों की आमदनी को भी बढ़ा सकते हैं, तो इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर।
8: कीटों का नाम सुनकर अक्सर हमारे दिमाग में फसलों के नुकसान की बात ही आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी कीट फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले नहीं होते, कुछ कीट फसलों के दोस्त भी होते हैं जिन्हें मित्र कीट कहा जा सकता है, और खेती में इनका अपना एक अलग महत्व होता है। बता दें कि विश्व की लगभग 90% जंगली फूलों वाली पौधों की प्रजातियां परागण के लिए कीट पतंगों और जानवरों पर निर्भर करती हैं। विश्व की करीब 75% से ज्यादा खाद्य फसलों और वैश्विक कृषि भूमि का 35% परागण इनसे जुड़ा हुआ है। इस तरह से ये कीट पतंगे जैव विविधता में अहम भूमिका निभा रहे हैं। मधुमक्खी की बात करें तो मधुमक्खियों का परागण फसल उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण कारक होता है। मधुमक्खियां काफी फसलों में पराग कण के रूप में काम करती हैं, जिससे बीज उत्पादन में वृद्धि होती है। बीज बड़े हो जाते हैं, बीजों के कारण बीजों की सुगंध, फलों में सुगंध और पोषक तत्व, विभिन्न फसल के पौधों में वृद्धि, हरे चारे का उत्पादन, फूलों में नॉक्टर्स और तेल बीज फसलों में तेल की मात्रा बढ़ जाती है। करीब 80% फसलें क्रॉस परागण पर निर्भर हैं, जिनमें अन्य कीटों के साथ साथ मधुमक्खियों का योगदान सबसे ज्यादा रहता है। बता दें कि चेरी, बादाम, अंगूर, लीची, मूली, खीरा, प्याज, सरसों और कपास फसलों का उत्पादन केवल मधुमक्खी परागण के कारण 50% से ज्यादा बढ़ जाता है। मधुमक्खियों के अलावा पतंगे भी फूलों के बीच पराग को ढोने का काम करते हैं। अन्य कीट परागणकों में ओवलेट मॉथ, अंडरविंग मॉथ और जियोमीटर मॉथ शामिल है।
6: तो ये रिपोर्ट आपने देखी। आइए एक बार फिर से डॉक्टर श्रीवास्तव का रुख करते हैं और इन मित्र कीटों के बारे में जानते हैं। डॉक्टर पूनम श्रीवास्तव, हमें मित्र कीटों के बारे में और भी जानकारी दें कि कौन कौन से होते हैं ये मित्र कीट और किस तरह से इनके लिए एक अनुकूल वातावरण बनाया जा सकता है।
9: देखिए, मित्र कीटों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जरूरी ये बात है कि हम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कम करें
6: जी।
9: हम हमेशा खेती बाड़ी की उपज को बढ़ाने की बात करते हैं, बहुत सारे फर्टिलाइजर, बहुत सारे पेस्टिसाइड हानिकारक कीटों के लिए करते हैं, पर उन हानिकारक कीटों के साथ साथ हमारे जितने भी परभक्षक कीट वो भी बढ़ जाते हैं
6: जी।
9: अगर परभक्षक कीट खत्म हो जाएंगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमें जहर डालना ही पड़ेगा। तो हमें जब भी हम किसी भी फूलों वाली कोई भी फसल या सब्जी उगा रहे हैं और वो फूलों की अवस्था में है तो कोई भी कीटनाशी को नहीं डालना चाहिए
6: जी।
9: दूसरा, बॉर्डर लाइन जितनी भी होती है वहां पर जो घास होती है वो मित्र कीटों को बढ़ावा देती है। तो अगर हम कहें संरक्षण हमें करना चाहिए तो हमें उन कीटों का संरक्षण आसानी से कर सकते हैं
6: जी।
9: साथ ही में बहुत से लोग मधुमक्खी पालते हैं, तो अगर वो अगर मान लीजिए आपकी सरसों लगी, जैसे अभी आने वाले समय में सरसों का सीजन आने वाला है, जो अर्जी वैरायटीज है उत्तरा वो अभी शुरू हो जाएंगी, अक्टूबर में आना शुरू हो जाएंगी, तो जहां भी ये खेती बाड़ी और मधुमक्खी के बक्से रखे हैं तो किसानों को उसको बढ़ावा देना चाहिए
6: जी,
9: ताकि उनकी पैदावार बढ़े। आपको आश्चर्य होगा कि अगर हम परागणकर्ता कीटों को अपने खेतों में आने देंगे या हमारे खेत के 3 किलोमीटर के दायरे में कोई भी परागणकर्ता कीट है तो उससे उपज 2 से 4 गुना बढ़ सकती है।
6: बिल्कुल,
9: तो ये
6: महत्व है परागणकर्ता कीटों की। इसके बारे में और भी विस्तार से जानेंगे आपसे आगे डॉक्टर श्रीवास्तव।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।

0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: किसान साथियों, आइए जानते हैं, अगर कोई किसान है वो थोड़ा सा सक्षम नहीं है, अगर वो मुर्गी पालन या कुकुड़ पालन हो गया, उसके अलावा बकरी पालन, भैंस पालन, कुछ भी स्टार्ट करना चाहता है, तो अगर इसमें क्या सरकार द्वारा कुछ अनुदान मिलेगा या अन्य किसी भी चीज में अनुदान कैसे ले सकते हैं और क्या इसकी क्या प्रोसेस होती है, आइए लेते हैं यहाँ पर एक्सपर्ट की राय।
2: बहुत, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए पूंजी की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है
3: जी।
2: तो इसमें हाँ, सरकार की तरफ से अनुदान की है आपका, जैसे

0: हमारा खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ही बनाया हुआ है, उनकी तरफ से अनुदान आपको मिल सकता है, पर आपका अनुदान का आपका राशि देखने की, अगर आपका आप एक छोटी इकाई लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी अनुदान की अलग सुविधा है। जैसे खादी ग्राम उद्योग है, वहां से आपको छोटी इकाई के लिए मिल सकता है, बड़े उद्योग के लिए जाते हैं तो हमें खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के उद्योग से ये जो है मदद मिल सकती है। और यही नहीं, आपके नजदीकी जो भी बैंक हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, वहां पे भी आपकी कई योजनाएं हैं बैंक की, आपको 50,000 रुपए से लेके 10 लाख तक का वो लोग ऋण देते हैं और कम मतलब ब्याज दरों पे, खासकर किसानों के लिए, हमारी किसान महिलाओं के लिए, ताकि वो अपना कोई काम शुरू कर सके। तो आप किसी भी योजना से इसके जो आपका जो आपने ऋण लेना है, आप इकाई शुरू करनी है, तो आप लाभ उठा सकते हैं।
1: बिल्कुल। और इस योजना का लाभ उठाने के लिए प्रक्रिया क्या है डॉक्टर रितु?
0: ये सबका थोड़ा सा अलग अलग है। जैसे मंत्रालय की बात करें तो आपको वहां पे जो भी आप काम एक शुरू कर रहे हैं उस पे आपने काम शुरू करना, एक तो वो भी मंत्रालय ने किया है कि एक जिला एक उत्पाद,
1: जी बिल्कुल,
0: तो उस योजना के तहत भी आप कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। तो उसमें आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, मतलब पंजीकृत करना पड़ेगा उस वेबसाइट पे, और फिर वहां पे आप उनको एक प्रोजेक्ट बना के देना होगा, और फिर आपको जो भी जरूरत होगी उसके हिसाब से आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और आपको अनुदान मिल जाएगा। ऐसे ही बैंक में, अगर आपके पास में बैंक है तो आप बैंक में भी जाके भी अपना, आपको कार्य रूप तो देना पड़ेगा कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या क्या उसमें मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी और मशीनों से आप क्या क्या फायदा ले सकते हैं, तो ये आपको उनके कार्य रूप एक देना पड़ेगा ताकि वो उसके हिसाब से आपको ऋण दे सके।
1: बिल्कुल। खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। और डॉक्टर रितु, आपने बताया जैसे मोटे अनाज जो है वो बहुत ज्यादा पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, पौष्टिक होते हैं, ऐसे में जबकि हम इस देश में कुपोषण की समस्या से भी जूझ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि कुपोषण से जंग में ये एक अहम हथियार की जो भूमिका है वो निभा सकता है?
0: बिल्कुल निभा सकते हैं। कभी अगर पिछले साल 2021 के अगर आंकड़ों की बात करें कुपोषण की, तो लगभग हमारे देश में 33 लाख बच्चे जो है कुपोषण से ग्रसित है, और इसका जैसे जस्ट हाफ आधे बच्चे मतलब गंभीर रूप से कुपोषण से ग्रसित हैं। तो एक ये बहुत बड़ी ढाल का काम आपका कर रहा है मोटे अनाज, क्योंकि इनमें ऐसे कई पौष्टिक तत्व हैं जो कि हमारे और अनाज में नहीं मिलते। जैसे अगर हम बात करें खनिज की, तो खनिज आपके कैल्शियम की, जो कि हड्डियों के लिए बच्चों के बढ़वा रहे बहुत आवश्यक होता है, गर्भवती महिला को आवश्यक होता है क्योंकि उसको अपने लिए और अपने बच्चे के लिए देना होता है, अगर वो उसको नहीं मिलता है भोजन से तो वो उसको खुद कमजोर होगी, आगे जो उसका आने वाला बच्चा होगा वो कमजोर होगा। तो ऐसे हमारे मोटे अनाज जैसे आपका रागी है, रागी कैल्शियम से भरपूर है, मतलब 100 ग्राम रागी में आपका 344 मिलीग्राम कैल्शियम पाया जाता है। तो अगर इसका इस्तेमाल हमारे भोजन में, महिलाओं के भोजन में, बच्चों के भोजन में कर दिया जाए तो ये समस्या हमारी कम हो जाएगी। ऐसे ही हमारा एक खनिज है आयरन, यानी कि लौह तत्व, जिसकी और लौह तत्व से अनीमिया होता है, और ये हमारी आज भी अगर हम बात करें 15 से 45 वर्ष की जो महिलाएं हैं, 70% महिलाएं अनीमिया से ग्रसित हैं। तो इसको दूर करने के लिए हमारे मोटे अनाज, और ये जो आपका लौह तत्व है, आपका ज्वार, बाजरा, जौ, मक्का, इन सब में बहुत अच्छे से पाया जाता है। ज्वार और बाजरा, इनमें तो बहुत अच्छी मात्राएं पाया जाता है
1: जी।
0: तो अगर इनका इस्तेमाल होगा तो ये जो कुपोषण की समस्या है ये हमारी काफी हद तक इसे निजात पा सकते हैं। बस जरूरत है इनको अपने भोजन में, हमें अपने भोजन में शामिल करने की।
1: जी बिल्कुल। और धारणा ये है कि जो मोटे अनाज है स्वाद में शायद आपको इतने अच्छे ना लगे, तो ऐसे में खाद्य प्रसंस्करण की भूमिका और बढ़ जाती है, क्योंकि इससे जो उत्पाद है वो और ज्यादा स्वादिष्ट बन जाते हैं। तो कैसे बनते हैं, किस किस तरह के उत्पाद है, इसके बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। साथ
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
3: किसान साथियों, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आइए जानते हैं ये मोटा अनाज क्यों कहा जाता है और इससे क्या फायदा हो सकता है और किसानों को कैसा इसमें लाभ मिल सकता है। आइए जानते हैं और लेते हैं यहाँ पर एक्सपर्ट की राय।
0: मोटा अनाज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी खेती में हमें ज्यादा मेहनत या मशक्कत नहीं करनी पड़ती।
1: अच्छा,
0: ये आपके बड़े कहेंगे कठोर फसलें हैं, आपके विषम परिस्थितियों में भी उग जाते हैं, यानी कि इनको पानी की आवश्यकता कम होती है, यानी जहाँ सूखा
4: है लेना पड़ेगा,
0: जहाँ सूखा आपका क्षेत्र होता है वहाँ पे आप इसकी खेती कर सकते हैं, तो इसीलिए इनको मोटा अनाज कहा जाता है, मतलब रफ एंड टफ।
1: जी,
0: तो
1: कम पानी वाली जो जगह है वहाँ क्षेत्र है वहाँ पर भी इसकी खेती की जा सकती है।
0: बिल्कुल, वर्षा आधारित जहाँ पे वर्षा निर्भर रहते हैं वहाँ पे भी कर सकते हैं। तो और तो जलवायु के हमारे उस पे आधार पे मतलब बहुत अच्छे, जो हम बात करते हैं अपने क्लाइमेट रेजिलेंट की, तो उसमें ये बहुत फिट बैठते हैं, मतलब हमारे लिए कहेंगे कि सुटेबल है, तो इसलिए इनको मोटा अनाज कहा जाता है।
1: जी,
0: और जैसे बात करें कि किसानों के लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है, जैसे किसान भाई बात करें आपके गेहूं और चावल की, इनकी पैदावार में हमें मतलब 120 से 150 दिन लग जाते हैं, जबकि आप मोटे अनाज की आप खेती करते हैं तो ये 70 से 100 दिन में तैयार हो जाता है।
1: अच्छा,
0: तो और साथ ही साथ जैसे आपने गेहूं अनाज से सिर्फ फसल को लेके बेचा, पर आपने मोटे अनाज में आपको एक तो खाद्य के रूप में आप जो मिल रहा है आपको उपज खाद्य में ले सकते हैं, दूसरा जो आपका बचत बचता है वो चारे में जाता है, तीसरा आप ईंधन में, अच्छा। और फिर इसके औद्योगिक इस्तेमाल भी हैं, स्टार्च बनाने में, जैसे मक्का है स्टार्च इंडस्ट्री के लिए बहुत उपयोगी है,
1: अच्छा।
0: वहां सबसे मेन आपका मक्का ही मांग की जाती है, आपका और भी चीजें हैं, इंडस्ट्रियल उत्पाद है जो कि हमारे जैसे जौ है, इसका अल्कोहल में काम आता है, उसमें भी इस्तेमाल होता है, तो ये काफी औद्योगिक दृष्टि से देखा जाए तो एक विविधीकरण के लिए रास्ता खोलते हैं मोटे अनाज हमारी खेती में, तो इसीलिए किसानों के लिए इनकी खेती महत्वता और अनाज के साथ महत्व रखती है।
1: बिल्कुल डॉक्टर, तो आप बता रही थी कि किस तरह से जो किसान हैं उनके लिए मोटे अनाजों की खेती बेहद लाभकारी हो सकती है, एक तो कठोर परिस्थितियों में भी इनकी खेती की जा सकती है और इसके कई तरह के उत्पाद भी बनाए जा सकते हैं और इसके इस्तेमाल कई जगहों पर है, तो आमदनी का जो जरिया है किसानों के लिए वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अब इनके खाद्य प्रसंस्करण पर आते हैं, जैसा कि मैंने कहा था कि जो मोटे अनाज है लोगों की धारणा है कि खाने में इसके उतना स्वाद नहीं है, तो ऐसे में बताएं कि प्रसंस्करण की महत्ता कितनी है, खासतौर पे बच्चों के लिए आपने बताया कि बहुत ये महत्वपूर्ण है, तो कैसे उनके लिए दिलचस्प बनाया जाए।
0: जी, तो जैसे पहले जैसे मोटे अनाज का हमारे खाने में खिचड़ी रोटी दलिया इनके रूप में होता था, पर अब जैसे क्योंकि पौष्टिकता की दृष्टि से ये काफी अच्छे हैं और सभी को सभी वर्ग के लिए बहुत अच्छे मतलब हैं, और खासकर बच्चों और महिलाओं के लिए बहुत जरूरी, तो बच्चों में इसका खान पान कैसे मतलब इसका बढ़ाया जाए कि बच्चे इसको पसंद करें, तो कई प्रकार के इसके उत्पाद अब बनने लग गए हैं, मतलब नाश्ते के रूप में आपका उपमा के रूप में सूजी इनकी बन जाती है और आपका इनका बिस्किट जो कि बच्चे बहुत पसंद करते हैं, बिस्किट भी नहीं, हम जैसे बाजरे का हमारा ये उत्तरी भारत का जो क्षेत्र है बाजरे का क्षेत्र है, तो यहाँ पे बाजरे का प्रसंस्करण में हमने बाजरे के बिस्किट पे प्रशिक्षण आयोजित किया था, तो एक महिला ने ये उद्योग शुरू किया तो 15 प्रकार के उन्होंने बिस्किट बनाए, तो उसमें बच्चों के लिए भी बिस्किट बनाए और वो खासकर बच्चों के लिए बच्चों द्वारा बहुत पसंद किया, उसमें थोड़ा सा चॉकलेट डाल दिया गया,
1: अच्छा।
0: तो बच्चों का स्वाद भी बहुत अच्छा आया, तो यही इन मोटे अनाज का ब्रेड आपका केक इस तरीके से उत्पाद है, और यही नहीं है जैसे हमारा नूडल्स वगैरह आते हैं वो भी इनसे बन जाते हैं, पास्ता जो अगर हम विदेशी खाने पे जाएं तो पास्ता भी बनता है इस मोटे अनाज से, तो इसकी मशीन भी आ गई है और हमारा एक संस्थान है हैदराबाद में इसी का, कदन्य फसलों, इनको मोटे अनाज को हम कदन्य फसलें ही बोलते हैं, तो हैदराबाद में इसका संस्थान है जो इन्हीं सभी फसलों पे काम करता है और उसके प्रसंस्करण पे भी काम करता है, क्योंकि जैसे बात हम कर रहे हैं प्रसंस्करण की कि खेती में आपको तभी फायदा होगा कि अगर आपने जब उसको कोई नया रूप दे दिया, खाली अनाज को निकाल के बेचने से ज्यादा फायदा नहीं है, आपने अगर अनाज का मूल्य संवर्धन कर दिया, वैल्यू एडिशन कर दिया, तभी आपको फायदा मिलेगा। बाजरा का दाम जैसे देख रहे थे कि 1500 से 2000 के रूप में जाता है क्विंटल, पर वही अगर बाजरा बिस्किट जाएंगे तो वो आपको 4 गुना तक ज्यादा चला जाएगा, तो ये मूल्य संवर्धन भी हो जाएगा, एक कुपोषण की जो हमारी समस्या है वो भी कम हो जाएगी और हमारे जो स्वास्थ्य है वो भी उसमें भी लोगों में सुधार आएगा।
1: बिल्कुल,
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: करना चाहूंगी और रेशम कीट पालन के बारे में आपसे जानना चाहूंगी।
4: जी,
5: अगर हम लाभकारी कीटों की बात करें तो पहला आता है मधुमक्खी पालन और दूसरा है रेशम कीट पालन
6: जी।
5: बहुत सारे जितने भी हमारे दक्षिण भारत के राज्य हैं वहाँ सभी लोग ज्यादातर लोग रेशम कीट पालन करते हैं और सरकार की विभिन्न योजनाएं भी हैं इस बारे में कि किस तरह हम आमदनी को बढ़ावा दें। तो हमारे सेंट्रल सिल्क बोर्ड बैंगलोर में स्थित है, ये हेडक्वार्टर है और उसकी कई सारी रीजनल स्टेशन है जो हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में उपस्थित है। तो जो भी कोई अगर रेशम कीट पालन करना चाहता है तो अपने निकटवर्ती जो भी हमारा रेशम कीट पालन केंद्र है वहां से संपर्क करके अंडे ले सकता है, अंडे या फिर लार्वा ले सकता है और हर जगह उनको आसानी से पाला जा सकता है। इसमें बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होता, मतलब बहुत से लोग तो एक छोटे से कमरे में रेशम कीट पालन कर सकते हैं और ये काम बहुत आसान है और महिलाएं इसे बहुत अच्छे से कर सकती हैं। तो अगर कोई भी किसान अगर चाहता है कि खेती बाड़ी के साथ में हम आमदनी का एक और जरिया रखें तो रेशम कीट पालन एक बहुत अच्छा जरिया हो सकता है, इसको सब अपनाना चाहिए और इसमें बहुत सारी स्कीमें भी वर्तमान में चल रही हैं।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आप रेडियो आपकी बातें।
1: तो ऋतु आपसे जानना चाहूंगी कि आपने बताया कि किस तरह से कई तरह के उत्पाद मूल्य संवर्धन करके मोटे अनाजों के बनाए जा सकते हैं, तो इसको बनाने के लिए या फिर इसको एक व्यवसाय का रूप देने के लिए क्या किसानों को इससे पहले प्रशिक्षण ले लेना चाहिए और इससे उन्हें कितना लाभ होगा?
0: जी बिल्कुल, क्योंकि जैसे मोटा अनाज हम अभी तक पारंपरिक खाने में इस्तेमाल करते थे, पर अगर हम और जो नए उत्पाद है जैसे हम बात कर रहे हैं कि बेकरी के जैसे बिस्किट है, ब्रेड है या पास्ता है, नूडल्स है, ये सब बनाना है तो ये नई चीजें हैं, तो इनकी मशीनें भी हैं, तो इसके लिए बहुत आवश्यक है प्रशिक्षण लेना। और प्रशिक्षण के लिए आपके पास कृषि विश्वविद्यालय हैं या हमारे जैसे मैंने बताया कि हैदराबाद में संस्थान है वहां, या नजदीकी है तो कृषि विज्ञान केंद्र, आप यहां पे संपर्क करके प्रशिक्षण कार्यक्रम ले सकते हैं, या अगर वो वहां पे नहीं होता फला कृषि विज्ञान केंद्र में तो वो आपको संस्थान में भी नॉमिनेट करके भेज सकते हैं ताकि आप प्रशिक्षण ले लें, क्योंकि इसकी मशीनी कैसी है। और सबसे बड़ी बड़ी आती है कि मोटे अनाज को आप सीधा, जैसे कुछ अनाज जैसे बाजरा है इसको हम सीधा इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये आपको पचने में थोड़ा भारी होता है, क्योंकि इसकी जो ऊपरी परत होती है उस पे मतलब कहेंगे कि पोषक तत्व विरोधी एक परत होती है तो उसको हटाना पड़ता है। तो उसके लिए कई चीजें, छोटी छोटी चीजें जैसे आप अंकुरण कर लें, उसको भिगो के रख लें, या पॉपिंग यानी कि जैसे पॉपकॉर्न बनते हैं पॉपिंग कर लें, या उसको चपटा करके फ्लेकिंग बोलते हैं वो कर लें, तो उससे वो जो पोषक विरोधी तत्व है वो हट जाते हैं। तो ये कुछ क्रियाएं हैं जो कि करनी पड़ती हैं इस्तेमाल करने से पहले, ऐसे ही मक्का में भी करना पड़ता है। तो ये इन सब चीजों के लिए आपको प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता होती है, क्योंकि आप सीधे ही उत्पाद बनाएंगे और कुछ मतलब उत्पाद ठीक नहीं निकले तो उससे पहले जरूरी है कि एक जानकारी ले लें और ताकि फिर उसको हम उद्यम में आए।
1: बिल्कुल, आपने बताया कि कई तरह के मशीनों का भी उपयोग होता है इसमें, इसके बारे में कुछ और हमें जानकारी दें।
0: जैसे आपका प्रोसेसिंग की जो प्रसंस्करण की मशीन है, जैसे आपकी इनकी ग्रेडिंग, क्योंकि दाने बहुत छोटे होते हैं इनके, आप हाथ से नहीं कर सकते, तो इनकी ग्रेडिंग की मशीन आती है जिसमें दानों की छटाई हो जाती है, फिर इनकी मिलिंग जैसे आटे के रूप में करना है तो वो मशीन आती है, फिर पॉपिंग की मशीन आती है जिसमें ये पॉपकॉर्न की तरह फूल जाते हैं।
1: अच्छा,
0: और फिर एक आपका एक अच्छा हेल्दी कहेंगे स्वस्थ नाश्ता या एक अच्छा एक स्नैक के रूप में उभर के आता है, तो इस तरीके से ये इनकी मशीन भी आ गई है। तो ये और जो इन मशीनों का इस्तेमाल जो है और जो हमारी हैदराबाद की संस्था उन्होंने बनाई है मशीनें, तो उनके संपर्क करके ली जा सकती हैं हमारे, और जैसे बताया कि ऋण लेकर हम सारी मशीनें नहीं खरीद सकते तो इसमें अनुदान की आवश्यकता होती है, तो ये ऋण लेकर इन मशीनों का इस्तेमाल करके अब पर यहाँ ये चीज तब करें जिस क्षेत्र में जो अनाज आपका मोटा अनाज हो रहा है
1: जी।
0: जैसे ज्वार का क्षेत्र है तो ज्वार के संबंधित मशीन ही लें, बाजरे का क्षेत्र बाजरा प्रसंस्करण संबंधित मशीन ही ले, मक्का का है तो मक्का प्रसंस्करण संबंधित मशीन ही ले, तभी उसका इस्तेमाल सही से हो पाएगा।
1: बिल्कुल, आइए अब आगे बढ़ते हैं और जाना आपने कि किस तरह से जो मोटे अनाज है उनका आप प्रसंस्करण कर सकते हैं और उसके लिए बेहतर होगा कि आप पहले प्रशिक्षण ले लें और तमाम जानकारियां हासिल कर लें और उसके बाद इस व्यवसाय की शुरुआत करें।
3: किसान साथियों, मोटे अनाज से जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को हम जानेंगे, उससे पहले यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांटा भील 90.8 FM के साथ खेती बाड़ी कार्यक्रम में।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आप रेडियो आपकी बातें।

0: झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: ब्रेक के बाद एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है किसान साथियों आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आप सुन रहे हैं मोटे अनाज की खेती और मित्र कीटों को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियों को। तो किसान साथियों यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां अभी तक हमने ली है, साथ ही और जानकारियां हम लेंगे एक्सपर्ट के माध्यम से। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को मोटे अनाज और मित्र कीट से संबंधित।
2: में रेशम कीट पालन के बारे में आपने हमें जानकारी दी, अगर इसके बारे में किसान कुछ और जानना चाहते हैं या प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो उन्हें कहां संपर्क करना चाहिए?
3: देखिए, हर ब्लॉक में हर डिस्ट्रिक्ट में CRC यानी चौकी रेयरिंग सेंटर, सेंट्रल सिल्क बोर्ड ने अपनी संस्थाएं अपने केंद्र स्थापित कर रखे हैं। तो आप अपने किसी भी नजदीकी संस्था में जाके संपर्क कर सकते हैं, वो आपको अंडे भी दे देंगे और बच्चे भी दे देंगे और पूरा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाता है और आप आसानी से उसको शुरुआत कर सकते हैं। कहाँ करना चाहते हैं ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे अगर किसी भी राज्य में करना चाहते हैं तो वहां पे कौन सी फसल आप लेंगे। जैसे अगर हम असम की बात करें तो वहां का मूंगा सिल्क, आपने सुना होगा कि मूंगा सिल्क की साड़ियां मेखला चादर वगैरह बनती है। तो अगर असम या हमारे जितने भी नॉर्थ ईस्ट यानी झारखंड हुआ, उड़ीसा हुआ, वेस्ट बंगाल हुआ, यहाँ करना चाहते हैं तो इरी सिल्क वॉर्म यानी कि जो कैस्टर पर रहता है और मूगा सिल्क वॉर्म जो सोमन स्वल, क्योंकि जहां पर भी उसके पेड़ होंगे होस्ट जिस पर हम पालेंगे कीड़ों को यानी जो रेशम कीट के कीड़े होंगे उनको पालने वाले पेड़ों का होना भी आवश्यक है। तो पहले तो आप हम ये देखेंगे कि हमें कहाँ पे करना है और किस रेशम कीट को करना है। एक्चुअली दो तरह के रेशम कीट हैं, एक तो होता है जंगली और दूसरा होता है पालतू वाला।
1: चलिए इसी के साथ हम काफी समय से मोटे अनाज की खेती को लेकर काफी बातें कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम अपने एक्सपर्ट से जानना चाहेंगे कि हमें मोटे अनाज की कौन कौन सी फसलें लेनी चाहिए, इससे कौन सी फसलों में हमें अधिक लाभ हो सकता है।
2: बिल्कुल डॉक्टर ऋतु।
4: हाँ, मोटे अनाज में आपका ज्वार है, बाजरा है, रागी है, मक्का है, जौ है, कोदो है, सवा है, ये आपके सब मोटे अनाज में आती हैं।
2: जी,
4: तो आपके यहाँ पे ये जैसे ज्वार और बाजरा की खेती आप कर सकते हैं, मक्के की भी खेती आपके यहाँ पे हो सकती है, तो आप इसमें प्रसंस्करण की संभावनाएं दे सकते हैं अपने क्षेत्र में।
2: जी जी बिल्कुल। मक्के की बात की आपने, मक्के में किस तरह से प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन के विकल्प है किसानों के पास, बताएं।
4: जी, जैसे मक्का है, जैसे बात करें अगर इसमें पोषणता की दृष्टि से, तो मक्का आपका जो आता है प्रोटीन से भरपूर होता है।
2: जी
4: ठीक है, और खासकर अगर पीली मक्का की बात करें तो उसमें विटामिन ए काफी मात्रा में होता है जो कि हमारी आंखों की रोशनी के लिए बहुत जरूरी होता है। तो पोषण के साथ साथ इसमें रेशा बहुत होता है हमारे, जो कि हमारे खाने में जरूरत है। तो अगर इस बात करें इसके प्रसंस्करण की, तो मक्की का आटा बनता है, पर मक्की के आटे में थोड़ा सा ये ऐसी दिक्कत की वो थोड़े दिन के लिए ही रह पाता है, पर प्रसंस्करण तकनीक आ गई है, बहुत छोटी सी तकनीक है जिसका इस्तेमाल करके इस आटे की अवधि हम जो है लंबे समय तक, जैसे हम गेहूं का आटा रखते हैं वैसे ही हम इसको रख सकते हैं। फिर इसी आटे से, मक्की के आटे से आप कई प्रकार के उत्पाद बना सकते हैं, जैसे हम रोटी तो हो ही गई, पर आपका इसी मक्की के आटे से सूजी आपका बन जाता है, इसी मक्के से आप दलिया बना सकते हैं, उस दलिया से आप अन्य जो बच्चों के शिशु आहार जो हम कहते हैं वो बना सकते हैं, और इसके अलावा आपका मक्की का कई उत्पाद, लड्डू है आपका, फिर केक है, बिस्किट है, ये सब उत्पाद भी इससे मक्के से आपके बन सकते हैं और बन रहे हैं। अभी सरकार ने ये भी किया है कि कई राज्यों में मिड डे मील जैसे बच्चों के लिए जाता है तो उनमें भी इन अनाजों का इस्तेमाल करवाना शुरू कर दिया है ताकि बच्चों को पोषण से सुरक्षित रखा जा सके।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
4: जैसे बाजरे के बिस्किट के लिए आपको जो हमारी बेकिंग सिकाई की मशीन आती है जिसमें हमारे केक वगैरह बनते हैं वो आपको लेना होगा। मशीन आपके अलग अलग प्रकार की आती है, मतलब कहेंगे क्षमता के आधार पे आती है देखिए आपने 30 किलो बेक करना है, 40 किलो बेक करना है, 20 किलो बेक करना है, तो उसके आधार पे ये मशीनें आती हैं और ये बिजली से भी चलती हैं, ईंधन से भी चलती हैं।
2: अच्छा,
4: तो आपको अगर ये जैसे बाजरे के मशीन आप कह रहे हैं कि कहाँ से आप ले सकते हैं शायद, है ना?
2: जी जी।
4: तो आपने जैसे प्रशिक्षण सबसे पहले आप इसमें दीजिएगा, किसी भी आप कृषि विश्वविद्यालय या कृषि विज्ञान केंद्र या कोई संस्था ऐसी हो तो वहां से आप लें। और आपको खादी विलेज, जो खादी ग्राम उद्योग है, उनका एक योजना है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, उसमें आप इसमें इस योजना के तहत आप अप्लाई करें कि आप इस यूनिट को लगाना चाहते हैं। उन मशीनों के आपको नाम लिखने हैं, क्योंकि इसमें आपका सिर्फ मशीन बेकिंग के नहीं, आपको इसमें बिस्किट जो है हमारा आटा गूंद के बनता है, तो उसकी गूंदने की मशीन आती है, वो गूंदने के लिए मशीन चाहिए होती है। फिर थोड़ा आपको सामान टेबल है, कटिंग के लिए आपको चाहिए कटर चाहिए होते हैं, और आकार देने के लिए अलग नाप वो आते हैं, ये आपको सब लेने पड़ेंगे। फिर पैकिंग आती है, तो ये सारा इकाई लगाने के लिए आपको खादी ग्राम उद्योग से भी ऋण मिल सकता है। पर आप पहले प्रशिक्षण ले लें, और उसी प्रशिक्षण में आपको मशीनों की जानकारी और उनके एड्रेस या पता वो वहीं पे आपको पता लग जाएंगे।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
1: किसान साथियों, चलिए रुक करते हैं रेशम कीट के ऊपर। कैसे ये रेशम कीट रेशम को बनाता है, क्या उसमें क्या खासियत होती है जो रेशम बना देता है, और कैसे बनाता है, हम इसका पालन कैसे करते हैं, और क्या क्या किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए आदि जानकारियों को लेते हैं इसमें। आइए लेते हैं इसमें एक्सपर्ट की राय।
3: देखिए, सबसे पहले तो बात अगर हम करेंगे तो कौन सी वैरायटी और कौन सी ब्रीड, अगर हम रेशम कीट पालन की बात करें तो आपने ली कहाँ से है और आपके जगह के अनुकूल होनी चाहिए। दूसरा, लेते समय हमें ध्यान रखना है कि जो भी स्ट्रेन या वैरायटी हम ले रहे हैं, जो भी जिस भी प्रजाति का ले रहे हैं, उसमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता होनी चाहिए। क्योंकि सेरिकल्चर यानी कि सिल्क फॉर्म रेयरिंग यानी रेशम कीट पालन में जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो बीमारी की, और वो होती है कि हम साफ सफाई का अच्छे से ख्याल नहीं रखते हैं, तो उसमें कई बार बैक्टीरिया वायरस की बीमारी आ जाती है। तो जब भी CRC जो भी हमारे चौकी रेयरिंग सेंटर्स होते हैं, हम उनसे बच्चे लेते हैं और उनको लेकर आकर हम उन्हें पालना शुरू करते हैं। फीडिंग ट्रेज होती है, उसमें हम मलबरी यानी शहतूत की पत्तियों को देते हैं उन्हें खाने के लिए, तो उनके अकॉर्डिंगली हमें चलना पड़ता है। और एक बार में, अगर एक दिन में जब हम रेशम कीट पालन करते हैं तो जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है उसके खाने की रिक्वायरमेंट भी उसी के अनुसार बढ़ती है, तो एक दिन में हमें लगभग 3 से 4 बार खाना उनको देना पड़ता है। तो जब हम पत्तियां खिला रहे होते हैं, तो जैसे अगर नया बच्चा है तो उनको जो ऊपर की पत्तियां होती है, कोमल पत्तियां होती है, वो खिलानी होती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो उसको हम बड़ी पत्तियां देते हैं जो कि मैच्योर लीव्स होती हैं। पर हर बार इस बात का ख्याल रखना होता है, क्योंकि हम फीडिंग ट्रेस में जो खाने वाली प्लेट्स होती है उसमें हम बच्चा और खाना दोनों रख रहे होते हैं, और उनका एक्सकीटा भी, मल भी उसी में होता है, तो हमें साफ सफाई का समुचित प्रबंधन करना होता है। और जब रेशम कीट का बड़ा बच्चा हो जाता है, यानी सूरी बड़ी हो जाती है, और वो कोया यानी कि जो कुकून होता है सिल्क का, रेशम का बनाना शुरू करती है, तो उसको हम अलग लेकर जो माउंटेज होते हैं, जिसे वुडन में अगर कहें लकड़ी के बने तो चंद्रिका जिसे कहते हैं, उसके अनुसार हम उस बच्चे को वहां शिफ्ट करते हैं ताकि वो गोल गोल घूमकर एट के आकार का घूमकर रेशम बनाना शुरू करता है। रेशम कहाँ से आता है? जो लार्वा होता है उसके मुंह में एक तरह की ग्रंथियां होती है जिसे हम सिल्क ग्लैंड कहते हैं, वो सिल्क अपने मुंह से निकालकर अपने पूरे शरीर के चारों तरफ लपेटना शुरू करता है और एक तरह से फाइनली कुकून बन जाता है। अब उस कुकून को हम मार्केट में लेके आते हैं, अगर आपने अच्छा खाना खिलाया है रेशम कीट को तो अच्छा कुकून बनेगा। और दो तरह के कुकून होते हैं, या यूनिवोल्टिन, बाइवोल्टिन और मल्टीवोल्टिन। तो मार्केट में उसके जो कुकून का मार्केट लगता है, पूरी मंडियां लगती है, और अगर अच्छा कुकून है तो अच्छी मार्केट की प्राइस आपको मिलेगी।
2: बिल्कुल।
1: किसान साथियों, अभी आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को यहाँ पर हासिल किया। आपने जाना कैसे एक पालतू रेशम की कीट होती है और जंगली भी रेशम की कीट पाई जाती है, तो इसका हमें कैसे देख रेख करना चाहिए, कैसे हम इसका पालन कर सकते हैं और कैसे इसकी ट्रेनिंग दी जाती है आदि महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना। साथ ही यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांडिया भील 90.8 FM में।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।

0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: ब्रेक के बाद एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं किसान साथियों आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आप सुन रहे हैं मोटे अनाज से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को, साथ ही रेशम पालन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को। किसान साथियों, जानकारियों को आगे बढ़ाते हुए आइए लेते हैं कुछ और एक्सपर्ट की राय। यहाँ पर हमारे किसान का सवाल है कि जो हमारी बाजरे की फसल है वो कौन से समय में लेना ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। इसको बारिश के समय में लेना ज्यादा फायदेमंद हो सकती है या इसे हम गर्मी के समय में ले सकते हैं, तो यहाँ पर हम जानना चाहेंगे एक्सपर्ट की राय।
2: इसकी फसल के बाजरे की बात करें तो बरसात के समय, इस समय ये बिजाई का समय बहुत उपयुक्त है आपका बाजरे के लिए। इस हफ्ते तक भी अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, और इसकी क्योंकि अक्टूबर तक आप इसकी कटाई कर लेंगे तो इसमें उपज आपकी ज्यादा अच्छी होगी। क्षेत्र है तो वहां के लिए जो किस्म है बाजरा की वो ही आप लगाएं। वैसे आप बाजरा की ऐसी किस्में भी आ गई जिसको हम बायो फोर्टिफाइड किस्में कहते हैं, तो वो भी काफी आ रही। बायो फोर्टिफाइड का मतलब इनमें कुछ ऐसे पोषक तत्व और डाल दिए गए हैं जिनकी इससे गुणवत्ता और बढ़ जाए। तो ऐसी ही कई किस्में आ रही हैं, बाजरा में भी ऐसी कई किस्में आई हैं, तो आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ये आपके क्षेत्र में आप ये लगा सकते हैं। बायो फोर्टिफाइड किस्म है 1200 AHB 1200 FE। आप ये महाराष्ट्र की निकली हुई किस्म है विश्वविद्यालय की, कृषि विद्यापीठ की, तो वहाँ आप ये किस्म भी ले सकते हैं, लगा सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
2: मक्के की खेती आप दो बार कर सकते हैं, एक अभी जो अभी फसल आ गई और फिर एक सर्दियों में भी आप कर सकते हैं। दो समय में ले सकते हैं, जैसे मध्य प्रदेश से हैं तो आप दो बार कर सकते हैं। और मक्का जैसे आपका इस क्षेत्र के आधार पे ही आप किस्म लेंगे। एक मक्का में हमारे वैज्ञानिकों ने यह भी जात किया क्वालिटी प्रोटीन मक्का, यानी कि जो प्रोटीन की जो गुणवत्ता है उस मक्के में बहुत अच्छी है, जो क्योंकि हमें प्रोटीन सभी खाद्यों में मिल जाता है पर अच्छा क्वालिटी का गुणवत्ता वाला प्रोटीन है वो हमें इस क्वालिटी प्रोटीन मक्का के किस्म मिल जाता है। तो वहाँ उस क्षेत्र के लिए भी इसके किस्में होंगे, उनको लगाएंगे तो और आपको फायदा होगा। इसी में आपका प्रसंस्करण से अगर आप जुड़ जाएंगे मक्के के प्रसंस्करण से तो आपको कहेंगे डबल, यानी कि दुगना आपको हो सकता है। तो आप उसी के प्रसंस्करण में भी आ सकते हैं। कई उत्पाद जैसे हमने पहले ही बताए, तो बेकरी के अगर उद्योग में जाते हैं तो आपको ब्रेड बिस्किट केक वगैरह लेके जा सकते हैं। अगर आप नाश्ते वाले उसमें चाहते हैं तो आप बढ़ियां भी है आपके हैं, नमकीन वाले स्नैक्स हैं, मिक्सचर हैं, चिड़वा भी इसका बनता है मक्की का, मतलब चपटा जैसे कॉर्नफ्लेक्स जैसे आते हैं वही आपका है। और चिड़वा आपका कच्ची मक्का को मशीन से प्रेस कर दिया जाता है और हल्का भून लिया जाता है, तो एक चिड़वा का स्नैक, एक नमकीन स्नैक बन सकता है।
3: मतलब अगर आप कई तरह के जो उत्पाद है वो किसान बना सकते हैं, मूल्य संवर्धन की जो संभावनाएं हैं इसमें बहुत ज्यादा है। आइए आगे बढ़ते हैं और बातचीत को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर पूनम श्रीवास्तव, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि लाभकारी कीटों में एक अहम कीट लाख कीट भी है, इसके बारे में हमें कुछ जानकारियां दें।
4: जी बिल्कुल, लाख हमने बात की थी मधुमक्खी की क्योंकि शहद मिलता है जी, रेशम की थी क्योंकि रेशम के कपड़े हम सिल्क की साड़ियां पहनते हैं
3: बिल्कुल,
4: और आपने कई बार देखा होगा कि पंजाबी में चूड़ा और बंगाली लोग एक स्पेशली कड़ा पहनते हैं, तो लाख वो लाख का बना होता है। और हमारी जितनी भी गोल्ड की ज्वेलरी होती है ज्वेलरी उसमें लाख का प्रयोग किया जाता है। तो लाख जो है वो कहाँ से मिलता है, वो एक कीड़े की से मिलता है, एक ऐसा कीड़ा जो पेड़ के ऊपर रहता है और अपने ऊपर एक कवर बना के चलता है। उस कवर, वो जो कवर होता है उस कवर को हम जो ट्विक्स होती है हम छीलते हैं फिर उसे पीसते हैं और छान के हम लाख बनाते हैं। और लाख के कीड़े जंगलों में बहुत सारे पेड़ों पर रहते हैं, और लाख के लिए एक विशेष संस्थान है हमारा रेजिन का जो कि झारखंड रांची में उपस्थित है नमकुन नामक जगह पर। तो जो लोग लाख में करते हैं, जो लोग रूरल हैं, जो ग्रामीण हैं, जंगलों के आसपास रहते हैं, वो ऐसी शाखाओं को कलेक्ट कर सकते हैं जिनपे की लाख कीड़ा रहता है और उसे आसानी से प्रोसेस करके हम लाख को बेच सकते हैं। कई तरह के लाख बिकता है मार्केट में, जैसे कच्चा लाख हुआ, प्रोसेस लाख हुआ, और उसकी आसान प्रक्रिया है और इसको भी एक रोजगार का बहुत ही उत्तम साधन अपनाया जा सकता है।
3: बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मोटे अनाज का मनाने जा रहे हैं और भारत के ऊपर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है इसकी अगुवाई करने की, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे?
2: जी, ये बहुत अच्छा हमारी सरकार ने पहल लिया कि हम पहले तो हमने 2018 में देश का बताइए मिलेट का साल मनाया था, पर 2023 में हमारी सरकार ने विश्व में इसको प्रचार करने के लिए, ताकि इसकी मांग जैसे लोगों में बढ़े, जानकारी मिले कि हाँ इसका इस्तेमाल जो हमारे पोषण के लिए बहुत जरूरी है, सिर्फ यही नहीं कि कुपोषण के लिए, हमारे अच्छे बच्चे हमारे शहरीकरण के वजह से हमारी कई बीमारियां, आपके कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने की क्षमता है इन मोटे अनाजों में
3: जी।
2: कैंसर आपका आपका हृदय के संबंधित रोगियों में आजकल आप देख रहे हो कि दिमागी जो मेंटल डिप्रेशन की बात कर रहे हैं उसको भी कम करने की क्षमता है इन अनाजों में, इसलिए इस पे जोर देने के लिए हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया 2023 को, और ये बहुत अच्छी पहल है और इससे लगता है कि हमारे देश में लोग विश्व में जानेंगे कि मोटे अनाज की खेती करने वाला देश क्या क्या मतलब कर सकता है इस क्षेत्र में।
3: जी डॉक्टर ऋतु, आपने लगातार हमें मोटे अनाजों के बारे में बहुत ही अहम जानकारियां दी, आपका बहुत बहुत जी।
1: किसान भाइयों, आज के खेती बाड़ी कार्यक्रम में आपने बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना, आपने जाना मोटे अनाज से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को, कैसे अभी मोटा अनाज जो है बहुत ही पौष्टिक आहार बन चुका है और साथ ही इसमें कैंसर से लड़ने तक की ताकत है। तो किसान साथियों, यहाँ पर मोटे अनाज और जो हमारा कीट पालन है इससे भी हमें कहीं ना कहीं बहुत ही मुनाफा हो सकता है, तो जो भी किसान भाई इसकी तरफ अपना रुख करना चाहते हैं वो अपना रुख कर सकते हैं, साथ ही केवीकी के माध्यम से जो भी अनुदान मिल रहा है उसे भी आप ले सकते हैं। इसी के साथ किसान साथियों, यहाँ पर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त पर, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांडा भील 90.8 FM के साथ।

नमस्कार दोस्तों, कला सिर्फ रंगों, सुरों या शब्दों का नाम नहीं है, बल्कि ये उन भावनाओं की भाषा है जो सीधे दिल तक पहुंचती है। और जब एक कलाकार अपनी कला के माध्यम से दुनिया से संवाद करता है, तो वो सिर्फ मनोरंजन नहीं करता, बल्कि प्रेरणा भी देता है। इसी प्रेरणा और रचनात्मकता के सफर में आपका स्वागत है आज के कलाकार के इस प्रोग्राम में। आइए ना, मिलते हैं उन प्रतिभाओं से जो अपने हुनर, मेहनत और सपनों से आज की दुनिया को और खूबसूरत बना रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप सुन रहे हैं आज के कलाकार।

0: आइए दोस्तों, आज के कलाकार के इस बहुत ही सौंधे से बहुत ही प्यारे से प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। मैं एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों, इस प्रोग्राम में आपको एक अलग तरह की खुशबू आएगी। ये प्रोग्राम है खास करके गजलों का, और आज हमारे साथ जो गजल गायक मौजूद हैं वो हैं राजीव पांडे साहब। राजीव पांडे साहब हमारे साथ पहले भी हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर चुके हैं, लेकिन हमें मौका मिला है उनसे दोबारा बात करने का, उनकी गायकी को दोबारा सुनने का एक अलग अंदाज में। तो फिर राजीव भाई का मैं स्वागत करते हुए उनका आभार प्रकट करता हूं, उनको शुक्रिया कहता हूं, और उनसे
1: थैंक यू
0: एक बार फिर से गुजारिश करूंगा कि हमारे सुनने वालों को एक बार फिर से जरा उनकी याददाश्त तरोताजा हो जाए कि भला आप कौन हैं, कहाँ हैं, बताइए ना जरा।
1: सर मैं राजीव पांडे, मेरा नाम राजीव पांडे है। हाँ। मैं जबलपुर का रहने वाला हूँ। जबलपुर मध्य प्रदेश में आता है, एंड जबलपुर बहुत फेमस है भेड़ाघाट के लिए, भेड़ाघाट फॉर मार्बल रॉक्स। जबलपुर फेमस है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की फैक्ट्रीज के लिए, अराउंड 6-7 फैक्ट्रीज हैं जबलपुर में। एंड मैंने अपना एजुकेशन जबलपुर से ही किया, मैंने BSc विथ मैथ्स किया, उसके बाद मैं फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज में काम किया हूँ, फ्रॉम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव टू रीजनल मैनेजर, कुछ 18-19 साल। उसके बाद सर मैं फार्मास्यूटिकल से इंश्योरेंस कंपनीज में काम किया, मैं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में था कुछ 10 साल।
0: ओके।
1: और उसके बाद मेरी वाइफ रत्ना पांडे जी का एक अपना स्कूल है, एक किंडरगार्टन स्कूल है, जो वो कि 23-24 साल से चला रहे हैं। तो पिछले 10 सालों से मैं उनके साथ ही उनके काम में सम्मिलित हुआ, उन्हीं के काम को साथ में मिलके हम आगे बढ़ा रहे हैं। सो शी इज माई बॉस इन दिस न्यू बिजनेस, न्यू वर्क। हमारे स्कूल के काम में वो मेरी बॉस हैं, बिकॉज मैं तो फार्मास्यूटिकल और इंश्योरेंस वाला आदमी था, फिर एजुकेशन फील्ड में आ गया। वैसे एजुकेशन में मेरे मदर फादर भी हुआ करते थे। मेरे फादर रिटायर्ड हुए थे एज अ प्रिंसिपल, मेरी मदर भी टीचर थी, तो हमारी फैमिली में एजुकेशन का ही बहुत वो था। से मेरी वाइफ ने फॉलो किया उसको, और अब मैं उनके साथ कर रहा हूँ।
0: बहुत खूब।
1: मेरे जी मेरे दो बच्चे हैं, मेरी डॉटर मोक्षदा एंड मानस माय सन, बोथ आर इन IT इंडस्ट्री। तो ऐसा है सर।
0: बहुत खूब। तो दोस्तों एक बार फिर से हमारी याददाश्त वापस से तरोताजा हुई कि राजीव पांडे जी कौन है। तो राजीव भाई चलिए इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं ये पूछूंगा कि गजलों की तरफ आपका झुकाव कैसे हो गया?
1: जी सर, जैसे कि पिछली बार भी मैंने जिक्र किया था, मेरे फादर बहुत अच्छे सिंगर थे, इज नो मोर नाउ, अब है नहीं वो। तो मैंने मुकेश गाना सीखा उनसे, और उन्होंने मुझे कुछ, मैं जब 18 साल का था उस समय उन्होंने मुझे एक टेप रिकॉर्डर ला के दिया, और वो टेप रिकॉर्डर के साथ एक कैसेट था, वो कैसेट था अनफॉरगेटेबल्स का।
0: अच्छा जी
1: जगजीत जी का कैसेट था अनफॉरगेटेबल्स का। गायन का शौक तो था, फादर को सुनते सुनते मैंने सीखा हुआ था
0: जी,
1: बट जब मैंने वो कैसेट सुना तो मेरी म्यूजिक के प्रति एक टोटल, जो कहना चाहिए, लगाव इतना ज्यादा बढ़ गया, तो वहां से ही मेरा गजलों की तरफ झुकाव हुआ। फिर जगजीत सिंह के जितने एल्बम हुआ करते थे सभी एक एक लाके हम सुना करते थे। फिर मेरी जब शादी हुई तो मेरी वाइफ रत्ना को भी सेम शौक था जगजीत सिंह को सुनने का, तो हम दोनों एक से हो गए म्यूजिक के शौकीन, और वो भी जगजीत सिंह के। तो फिर हर प्रकार के उनके, जब भी उनका कोई एल्बम आने को होता था तो हम लोग पहले से रेडी होते थे कि एल्बम लॉन्च हुआ है, उसी दिन हमको वो एल्बम लाके फिर सुनना है। और ऐसे सर म्यूजिक के प्रति, गजल के प्रति इतना लगाव हुआ कि एक लंबा समय गजलें सुनते सुनते निकाला। फिर जगजीत सिंह जी के साथ फिर गुलाम अली साहब को भी सुनने लगे, मेहंदी हसन खान साहब को भी बहुत सुना, और फिर गाने का जुनून तो था ही, पहले हिंदी का मतलब फिल्मी गाने गाया करते थे, साथ में गजलों को भी गाना स्टार्ट कर दिया। पिछले कुछ 4-5 साल से, जब से सर मैं स्टार मेकर से जुड़ा और बहुत नई फील्ड के, इस म्यूजिक फील्ड के बहुत लोग मिले, तो मैं गजलें और ज्यादा गाने लगा।
0: बात खूब। बहुत खूब
1: खासकर जगजीत सिंह साहब को।
0: जी। तो चलिए दोस्तों, हमने ये जाना कि गजलों की तरफ राजीव पांडे जी का झुकाव कैसे हुआ। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस प्यारे से प्रोग्राम की और इन गजलों को सुनते हैं जो राजीव जी ने हमारे लिए तैयार की। आइए, पेश खिदमत है।

0: तो राजीव भाई, बहुत ही खूबसूरत गायकी और गजलों का एक अलग माहौल होता है, एक अलग तरीका होता है। हमें थोड़ा सा बताइए, आपने बताया मेहंदी हसन साहब को सुना आपने, जगजीत सिंह साहब की आवाज़ की वजह से आप गजलों के मुरीद हो गए, गुलाम अली ऑफ कोर्स कहने की ही कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा समझाइए, खास करके मैं जानना चाहूँगा गजलों के कितने तरीके की गजलें होती हैं, मतलब कुछ टाइप्स होते हैं क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स कह लीजिए, या मतलब जैसे कि अगर हम हिंदी के गानों की बात करें तो एक रोमांटिक होता है, मतलब कोई उदासी वाला गाना होता है, कोई जॉली नेचर का गाना होता है, कोई मौसम पर होता है, तो क्या गजलों में भी इस तरीके के कुछ प्रकार होते हैं, कुछ टाइप्स होते हैं?
1: सर वैसे मैं बहुत ज्यादा ये चीज समझने में डीप में नहीं गया, बट हाँ जहां तक गजल रोमांस को लेके ही गजल है
0: जी,
1: और गजल का रूप ही जो बना वो प्यार मोहब्बत से रिलेटेड है। फिर साथ में जगजीत सिंह साहब ने कुछ गजलें गाई जिसको कि हमारे रोजमर्रा के जीवन से रिलेटेड भी, जो बहुत अच्छे शायरों ने जो गजल लिखी उनको भी गाया उन्होंने। पर जहां तक मेरा मानना है गजल में एक संजीदगी होती है, एक बड़ा ठहराव होता है, एक बड़ा सुकून मिलता है। रही बात तो ये मेन तो रोमांस और प्यार से रिलेटेड ही है जहां तक मैं समझता हूं
0: जी, लेकिन कई बार राजीव भाई मुझे ऐसा महसूस हुआ गजलें सुनते हुए कि ज्यादातर, मतलब ऑफ कोर्स प्यार मोहब्बत रोमांस ही है उसमें, बट ज्यादातर मुझे लगा कि बहुत पेनफुल हैं गजलें, ज्यादातर दिल टूटे हुए लोगों की, दारू का एक ग्लास हाथ में लेकर बैठे हुए रोते हुए गजलों को गाना
1: जी जी जी,
0: तो
1: जी,
0: वो
1: जी,
0: बात मुझे कुछ समझ में नहीं आई, इसीलिए मैंने सोचा कि क्या मतलब गजलें क्या सिर्फ कुछ दुखी इंसान होते हैं उन्हीं की पसंद है, या वही गाते हैं, या वो शायर भी दिल टूटे हुए होते हैं वही लिखते हैं, मतलब व्हाई गजल इतनी हमेशा दुखी क्यों होती है?
1: पर ये बात तो कहना बिल्कुल सही, क्योंकि गजल हर व्यक्ति के जो म्यूजिक पसंद करने वाले होते हैं, जरूरी नहीं कि सभी के पसंद की चीज हो गजल
0: जी,
1: क्योंकि ये बात तो पक्की है कि गजल, जैसा आपने बोला कि हाँ जैसे शराब के पे बहुत गजल बनी है, पीने वालों पर, पिलाने वालों पर बहुत गजल बनी है
0: जी,
1: है टूटे हुए दिल की बहुत गजल बनी है। तो जहां तक मुझे भी ऐसा लगता है जब गजल सुनते हैं और गजल गाते हैं कि गजल कोई वो वाला गायन नहीं है जिसको कि सेलिब्रेशन वाली चीज उसमें आए है, या एक वैसा माहौल हो कि बहुत हंसी खुशी वाला माहौल हो वहां गजल चल रही हो। गजल थोड़ा सा जैसे हम बोलते हैं मुकेश साहब के गाने जो थे वो थोड़ा दर्द भरे हुआ करते थे
0: जी,
1: हैं, तो वैसा ही यहाँ पर गजल में भी वो दर्द तो है, जिंदगी का जो दर्द है वो उभर के निकल के आता है गजलों में, शब्दों में, धुनों में, उसकी गायकी में, सभी जगह
0: जी। तो ये सवाल दरअसल मेरे दिमाग में लगातार उठता रहा है दोस्तों, आप सभी लोग सुन रहे हैं, राजीव पांडे साहब ने अपनी बात रखी है, बिल्कुल सही है, आपके क्या विचार हैं जरा मैसेज करके हम सब लोगों को बताइए ना, चलिए तब तक आगे

0: बहुत खूब, बहुत ही बहुत खूब। दरअसल राजीव भाई, पिछली ही बात जो चल रही थी उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा, बहुत ज्यादा नहीं लूंगा उसको, क्योंकि ठीक है हर एक का मिजाज अलग अलग होता है। कोई दरअसल कुछ दिनों पहले मैं एक फ्रेंड के यहाँ गया था और उनके बेटे का बर्थडे था और बालकनी पर बैठ के उन्होंने केक वेक किया हुआ था, अरेंज किया हुआ था, बारबेक्यू वगैरह किया हुआ था। तो वहाँ पर बैठे और उनके बर्थडे, उनके बेटे के बर्थडे को सेलिब्रेट करना था और उन्होंने अपने टैबलेट के ऊपर गजलें लगा दी। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, बड़ा अटपटा सा लगा कि ये मतलब क्या, मतलब ये ओकेजन क्या है और वो सुना क्या रहे हैं। तो कुछ और वो बड़े, उनको बहुत ही अच्छा लग रहा था साहब की, क्या माहौल बना दिया मैंने। मुझे बहुत ही अटपटा लगा, उनको टोकना नहीं चाहता था, उन्हीं के घर पे उन्हीं के यहाँ इन्वाइटेड था मैं, तो मैंने उनसे बहुत प्यार से रिक्वेस्ट करी। मैंने कहा यार भाई डिस्टर्ब हो रहा है, मजा नहीं आ रहा, इसको बंद कर दो यार। लेकिन बहुत अटपटा सा लगा कि लोगों को समझ में नहीं आती है बात की, कि किस ओकेजन पे क्या करना चाहिए। चलिए ये उनकी अपनी सोच होगी, कोई बात नहीं। आप यह बात आपकी गजलों की हो रही है, तो अगर स्पेसिफिक बात करें, आपने कहा आप मेहदी हसन, गुलाम अली साहब, जगजीत जी, है ना, इनको आपने ज्यादा सुना, इसके अलावा भी कोई और कोई गजल गायक हो जिनकी गायकी ने आपको बहुत बहुत इन्फ्लुएंस किया हो, मोटिवेट किया हो?
1: सर जैसे कि मुकेश जी की भी जो प्राइवेट गजल्स थी,
0: जी हाँ,
1: जिक्र होता है जब कयामत का तेरे जलवों की बात होती है, मैं अपने फादर से सुना करता था, चांद आहें भरेगा फूर दिल थाम लेंगे, हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे। तो मुकेश साहब की बहुत सी प्राइवेट गजल्स थी
0: जी,
1: वो भी वो मैं सुना करता था अपने फादर से, फिर मैं खुद भी गाता था, अभी भी गाता हूँ। तो हमारे इवन रफी साहब ने भी प्राइवेट गजल्स गाई हुई है। अनूप जलोटा साहब जब शुरू में अपनी गायकी स्टार्ट किया उन्होंने, तो उनका एक गजल का एल्बम निकला था, चांद अगड़ाइया ले रहा है, चांदनी मुस्कुराने लगी है। फिर इवन तलत अजीत साहब की गजल्स बहुत अच्छी हैं, फिल्मों में उनने गजल्स बहुत अच्छी गाई हुई है। हरिहरन साहब बहुत अच्छे गजल के सिंगर हैं। तो ऐसा तो सभी गायकों ने गजल्स गाई हैं, बट ये जगजीत सिंह जी हुए जिनने की गजल को स्पेशली हमारे हिंदुस्तान में आम लोगों तक पहुंचाया। अदरवाइज गजल जो उर्दू पोएट्री है वो सबके समझ की बात नहीं हुआ करती थी
0: जी।
1: हम खान साहब को पहले सुनते थे तो बहुत से अल्फाज उनके हमें इस समझ से परे होते थे
0: जी हाँ,
1: बट हम उनको गाने के समय उच्चारण करने की कोशिश करते थे। फिर जगजीत जी जब गजलों को लेके आए तो उनने इसको थोड़ा सा काफी कुछ हमारे लिए इजी किया
0: जी।
1: पहले गायकी भी गजल की बड़ी टफ हुआ करती थी, मोस्टली क्लासिकल हुआ करता था, 8-8, 9-9 मिनट की गजल हुआ करती थी और बहुत ज्यादा आपको आपकी गायकी, आपके सुर पक्के होने चाहिए थे, क्योंकि बहुत बीच बीच में आलाप लेना पड़ता था, बहुत सरगम की जरूरत पड़ती थी। फिर जब जगजीत जी इसको लेके आए तो गजल्स की टाइमिंग भी कम हुई, कुछ 5-6 मिनट्स की गजल होने लगी, थोड़ा इजी गोइंग हो गई उनको गाने में। तो देखा जाए गजल का प्रॉपर उसका प्रचार जो हुआ, जो हम आप सब समझ पाए, वो जगजीत जी के थ्रू मुझे समझ में आता है।
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने साहब, बिल्कुल सही कहा। जब आपने सही फरमाया, जिस वक्त मैंने गजलों में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लिया था उस वक्त जगजीत साहब तो ऑफकोर्स आ ही चुके थे, बट मेरा झुकाव थोड़ा सा पंकज उदास की तरफ ज्यादा था, क्योंकि कुछ ऐसा लगा कि पंकज उदास फिल्मों के गानों की तरह गजल को गा रहे हैं। जो खास करके वो चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है का जो शुरू हुआ था, तो उससे थोड़ा सा इंटरेस्ट आया था। उसके बाद ऑफकोर्स चंदन दास वॉज देयर, तो वो फिल्मों के, है ना, तो वो फिल्मों के गानों की तरह गजलों को गाया, जगजीत जी ने भी वैसे ही गाया, तो वो आम आदमी की पहुंच में गजलें पहुंची।
1: एक कपल और था, राजेंद्र मेहता, नीना मेहता, वो भी गजल ही गाया करते थे।
0: जी जी जी जी जी जी, बहुत बढ़िया। तो चलिए दोस्तों, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कौन कौन गजल गायक हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर गजल गायकी को एक रूप दिया, एक शक्ल दी। चलिए अभी तो राजीव जी के गाए हुए इन प्यारी सी गजलों का लुत्फ उठाएं, और फिर वापस आए राजीव जी से बात करने के लिए।

0: बहुत खूब, अमेजिंग सिंगिंग, क्या बात है राजीव भाई। ठीक है, आपने बात करी गुलाम अली साहब की, मेहंदी हसन साहब की, जगजीत द गजल किंग, गजल सम्राट उनको कहा जाता है, हो गया। आज की डेट में जो गजल गायकी है, आप अगर गजल गायक हैं तो जाहिर सी बात है आज की डेट की भी कुछ गजल गायकी कहीं ना कहीं आपको सुनाई पड़ जाती होगी, और उस जमाने की जिस जमाने में जगजीत जी थे, क्या फर्क महसूस करते हैं आप?
1: सर सच अभी तो बहुत ज्यादा गजल गायक है नहीं है, ऐसे समझ में नहीं आता, दिखते नहीं है, और जो भी है तो थोड़ा सा वो एक जो सोज या संजीदगी जो गजल गायकी में हुआ करती थी पहले, वो अभी ऐसी नहीं दिखती है। और शायद मैंने नए गजल गायकों पे बहुत ध्यान भी नहीं दिया, और टू बी फ्रैंक की उनको ज्यादा कुछ गाने की कोशिश नहीं की। जगजीत सिंह में ही उलझे रहे हैं जब से हमने गजल गाना सीखा, और अभी भी उनके साथ ही, वो तो नहीं रहे बट उनकी गजलें हमेशा हमारे साथ रहेंगी, और हम अभी भी रोज एक दो गजल उनकी गाते हैं, कोशिश करते हैं कुछ रिकॉर्डिंग की।

0: जाए, बहुत बार रिपीटिशन हो जाता है, तो यही है।
1: बात
0: तो नए गजल गायकों के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है जी।
1: बात खूब। तो चलिए दोस्तों, अभी हम वापस आते हैं राजीव जी के पास इसी बात को जरा सा और बढ़ा आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन तब तक गजलों का भी लुत्फ साथ साथ उठाते चलें।

0: बहुत खूब। तो राजीव भाई, जैसे बॉलीवुड सिंगिंग या गीतों की बात कर लें तो किशोर कुमार साहब, लता मंगेशकर जी, और गजलों में बात कर लें तो जगजीत, बस खत्म। इसके अलावा मतलब हम इन तीन चार लोगों से कभी ऊपर उठ ही नहीं पाएंगे, तो क्या ऐसा कह सकते हैं? वैसे मुझे ऐसा कहने के लिए मैं बहुत बहुत माफी चाहूंगा, सभी लोगों से माफी चाहूंगा कि बस संगीत खत्म हो गया, अब और न तो कोई गायक है, न तो कोई लेखक है, ना कोई गाने वाले हैं, कोई जगजीत नहीं, कोई मन्ना डे नहीं, कोई गुलाम अली नहीं, बस। आपको क्या लगता है, क्या हो रहा है सर?
1: सर, कहना तो आपका एक प्रकार से सही है, बट अभी कुछ कुछ नए नाम सुनने में आ रहे हैं जिनको बहुत ज्यादा सुना नहीं है, एग्जैक्टली नाम भी याद नहीं है, बट हाँ, जहां तक गजल का एक दौर वो वाला था वो डेफिनेटली कम हुआ है, क्योंकि अभी भी हम गजल सुनने की बात करें या जो गजल के सुनने वाले और शौकीन लोग हैं वो भी उसी दौर की बात करते हैं।
0: जी जी,
1: अभी भी जिस घर में या जहां भी यदि गजल सुनने वाले हैं तो आपको गजल इन्हीं लोगों की सुनाई पड़ेगी। आप देखिए, गुलजार साहब ने बहुत गजलें लिखी और उनने और इवन फिल्मों में भी बहुत गजलें हुई
0: जी।
1: लता आशा जी ने बहुत गजलें गाई, इवन सभी सभी फिल्मी गायकों ने गजलें गाई, सभी लेखकों ने जो लिरिक्स राइटर थे उनने गजलें लिखी। गुलजार साहब हिंदी फिल्मों में गीत लिखते थे और शायद जगजीत सिंह साहब के साथ उनके गजल एल्बम बहुत हिट हुए।
0: जी हाँ, बिल्कुल सही।
1: ये बात आपका कहना बिल्कुल सही है कि अभी के दौर में नए गजल गायक हरिहरन साहब हैं जो कि अभी भी गजल गाते हैं।
0: जी
1: हैं, बाकी ऐसे नए लोगों का तो कुछ ऐसा समझ में नहीं आता अभी।
0: बिल्कुल सही फरमाया, ये विचार करने की जरूरत है, गौर करने की जरूरत है दोस्तों, क्या गजलों का दौर बस हो गया, चला गया, या हम इसमें कुछ नई जान फूंक सकते हैं? कुछ विचार करने की जरूरत है दोस्तों, क्या फ्यूचर है गजलों का? चलिए आगे बढ़ते हुए ये गजल पेश करता हूं राजीव जी की आवाज में।

0: बहुत खूब, बिल्कुल दिल से दिल की बातें हुई हैं गज़लों के बारे में, गज़लों के जो गज़लें हो के गईं, जो गज़ल गायक रहे, जगजीत साहब, आपने अनूप जलोटा साहब का भी नाम लिया, मेहंदी हसन साहब का, पंकज उदास, चंदन दास, कई सारे गज़ल गायकों के बारे में बात हुई, और आज की डेट में गज़लों का क्या भविष्य है वो भी। तो जितने भी सुनने वाले हैं राजीव जी, इस वक्त आपको जो सुन रहे हैं, आपकी गज़लें सुन रहे हैं, आप उनसे क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या बात करना चाहेंगे उनसे, थोड़ा सा बात कीजिए ना उनसे।
1: हाँ जी, मैं अपने सुनने वालों को, हमारे साथियों को जो जिनको म्यूजिक का इंटरेस्ट है, और तो गज़ल एक ऐसी विधा है, एक ऐसा अलग प्रारूप है सिंगिंग का, म्यूजिक का, जो कि एक बहुत सुकून देता है हमको, एक बहुत भाव प्रवणता देता है हमको। शायद हम बहुत बार यदि कभी बहुत विचलित होते हैं मानसिक रूप से कुछ, तो यदि हम को गज़ल पसंद है और हम यदि गज़ल सुनते हैं तो हमको बहुत सुकून मिलता है। तो गज़ल एक ऐसा संगीत है, ऐसी उसके बोल ऐसे होते हैं, उसकी लिरिक्स ऐसे होते हैं कि जो हमको एक बहुत चेहरा और बहुत सुकून देते हैं। तो जो गज़ल सुनने वाले हैं वो अपना ये गज़ल को सुनना जारी रखें, और मैं तो चाहूँगा कि नए गज़ल सिंगर आए जो कि हमारे गज़ल के इंटरेस्ट को कंटिन्यू बना रहे, हमारा हमारे नए गज़ल गायकों के साथ तो बहुत अच्छा होगा।
0: बिल्कुल सही फरमाया सर आपने, इसके ऊपर गौर फरमाने की ज़रूरत है, हमें कुछ नए गज़ल गायकों को ढूंढना होगा, कुछ नए गज़ल लेखकों को भी ढूंढना होगा। बहुत खूब। तो दोस्तों, आपने आज राजीव पांडे जी से गाई हुई ये प्यारी सी गज़लें सुनी, और उनके दिल की बातें भी हमने सुनी, क्या वो महसूस करते हैं गज़लों के बारे में। राजीव पांडे साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने शिरकत करी हमारे।
1: थैंक यू वेरी मच समीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: थैंक यू सो मच, प्लीज़ टेक केयर, थैंक यू।

चल। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के कलाकार, जिनके गीत हमें ये सिखाते हैं कि सच्चा हुनर कभी सीमाओं का मोहताज नहीं होता। हर कला के पीछे छुपा होता है समर्पण, संघर्ष और एक ऐसा सपना जो दुनिया को कुछ नया देने की चाह रखता है। उम्मीद है आज की ये मुलाकात आपको भी अपने सपनों की ओर एक कदम और बढ़ने की तो प्रेरणा देगी। इसी तरह नए कलाकारों और उनके प्रेरणादायक गीतों के साथ हम फिर मिलेंगे आज के कलाकार में। नमस्कार।

शुभ प्रभात दोस्तों, एक नई सुबह, नई रोशनी और नए विचारों के साथ आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम दिव्य दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सकारात्मक सोच, मन की स्थिरता और दिन की शुरुआत शांति और ऊर्जा के साथ करने की। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, मन को हल्का कीजिए और हमारे साथ इस सुंदर सुबह की यात्रा शुरू कीजिए। और आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध मेहमान मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्य दर्शन।